ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की छठी तिथि, तदनुसार 28 अगस्त सन 2026। सुबह के 8:55 होने को हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे

0: 9:40 पर आज आप सुनेंगे कार्यक्रम इनसे मिलिए के अंतर्गत हमारी संस्कृति की संवाहक संस्कृत भाषा विषय पर डॉक्टर हेमंत कृष्ण शर्मा से अशोक कुमार गोयल की बातचीत। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे गाने पुराने जमाने के और उसके बाद में गाने नए तराने नए। शाम 5 बजे आप सुनेंगे युववाणी कार्यक्रम। महिला जगत कार्यक्रम आप सुनेंगे 5:30 पर। 6:20 पर आप सुनेंगे माटी के स्वर। खेती बाड़ी शाम 7 बजे। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम होगा 7:30 पर। ये थे कुछ खास कार्यक्रम हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले सुबह के 9 बजे हैं। आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय मानक ब्यूरो ने चांदी की हॉलमार्किंग व्यवस्था का देश भर के 102 जिलों में विस्तार किया। 25,000 से अधिक कारोबारी पंजीकृत। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा 31 अगस्त तक स्थगित की। देश प्रदेश में रक्षाबंधन पर्व को लेकर हर्षोल्लास। बाड़मेर में पेड़ों को राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। और प्रसिद्ध गोगा मेड़ी मेले की शुरुआत आज से। विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं मेले में भाग लेने के लिए। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चांदी की गुणवत्ता की जांच के लिए देश भर के 102 जिलों में 341 सिल्वर एसेइंग और हॉल मार्किंग सेंटर्स के साथ हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन HUID आधारित चांदी के हॉल मार्किंग तंत्र का विस्तार किया है। ब्यूरो त्योहारी सीजन में 25,000 से ज्यादा चांदी के कारोबारी

0: यात्रियों को पंजीकृत कर चुका है। पिछले साल 1 सितंबर को HUID पोर्टल शुरू हुआ था। इसके बाद से 77 लाख से ज्यादा चांदी के आभूषणों पर HUID के साथ हॉलमार्किंग की जा चुकी है। हॉलमार्किंग प्रणाली के तहत 6 अंकों वाला HUID चांदी के आभूषणों और कलाकृतियों की गुणवत्ता तय करता है। नेपाल में प्राकृतिक आपदा को देखते हुए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा 31 अगस्त तक स्थगित कर दी है। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि नेपाल में मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग नेपाल के हालात, मौसम और सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर रख रहा है। परिस्थितियां सामान्य होने के बाद यात्रा को दोबारा शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार ने तीर्थ यात्रियों और उनके परिजनों से इस दौरान सहयोग की अपील की है। फर्जी और बैकडेटेड BPED डिग्री मामले में राजस्थान पुलिस ने मध्य प्रदेश के सीहोर स्थित श्री सत्य साई विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी एंड मेडिकल साइंसेज के कुलपति मुकेश तिवारी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें परीक्षा नियंत्रक संजय राठौड़ और कंप्यूटर ऑपरेटर आनंद शर्मा शामिल हैं। SOG के अनुसार मामला शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 से जुड़ा है। जांच में एक अभ्यर्थी द्वारा फर्जी BPED डिग्री के आधार पर परीक्षा पास कर सरकारी नौकरी हासिल करने का मामला सामने आया था। जांच के दौरान विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड और कंप्यूटर डेटा की पड़ताल में फीस संबंधी अभिलेखों में गंभीर अनियमितताएं मिली। वहीं शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में इस विश्वविद्यालय की BPED डिग्री प्रस्तुत करने वाले 66 अभ्यर्थी भी जांच के दायरे में आए हैं। SOG के महानिरीक्षक अजय पाल लांबा ने बताया कि SOG द्वारा इनके दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है।
1: ये विश्वविद्यालय था सत्य साई यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी एंड मेडिकल यूनिवर्सिटी दोनों की ये यूनिवर्सिटी है सीहोर मध्य प्रदेश में। उसकी ये डिग्री उसके द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान दी गई, जिससे प्राइमा फेसाई ये जाहिर हुआ कि जब कैंडिडेट ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस समय डिग्री किसी अन्य विश्वविद्यालय की थी, तो सिलेक्शन के समय अन्य विश्वविद्यालय की लेके आया का मतलब ये कहीं कोई डिग्री में कोई फर्जीवाड़ा हुआ है। इसके पश्चात उन दस्तावेजों का जब अवलोकन किया गया तो ये तथ्य सामने आया, अनेक ऐसे कैंडिडेट थे जिनके द्वारा एडमिशन लेने की डेट कुछ और है, फीस जमा कराने की डेट कुछ और है और डिग्री प्राप्त करने की डेट कुछ और है।
0: प्रदेश में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है। राज्य में जनवरी से अब तक इन्फ्लुएंजा H1N1 के 146 मामले सामने आए हैं। इनमें अगस्त में सबसे अधिक 55 मामले दर्ज किए गए हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि विभाग की ओर से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और सभी चिकित्सा संस्थानों को आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि वर्तमान में H1N1 के किसी नए अधिक घातक स्ट्रेन के प्रसार की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने आमजन से सावधानी बरतने और फ्लू जैसे लक्षण होने पर चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की है। उन्होंने बिना चिकित्सकीय परामर्श के दवा नहीं लेने की सलाह भी दी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधकर उनकी खुशहाली, सेहत और समृद्धि के लिए प्रार्थना कर रही हैं। इसके बदले में भाई अपनी बहनों की रक्षा और मदद करने का वादा कर उपहार दे रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में अपने संदेश में राष्ट्रपति ने हर नागरिक से परिवार और समुदायों के बीच रिश्तों को मजबूत करने का संकल्प लेने और इसी भावना के साथ विकसित भारत की ओर बढ़ने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन के पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश भर में रक्षाबंधन का उल्लास है। कई स्थानों पर विविध और अनूठे अंदाज में राखी मनाई

0: में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है। वहीं त्योहार के लिए जयपुर से बयाना तक चलने वाली यात्री गाड़ी को भरतपुर तक चलाया जा रहा है। हनुमानगढ़ जिले का प्रसिद्ध गोगा मेड़ी मेला आज से शुरू हो गया है। भादरा तहसील स्थित गोगा मेड़ी में एक महीने तक भरने वाले इस मेले में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित अनेक राज्य से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया कि जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
1: सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। एक माह तक चलने वाले इस धार्मिक महाकुंभ में श्रद्धालु नाच गाकर मेले का आनंद ले रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस व प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। संपूर्ण मेला परिसर और बैरिकेडिंग मार्गों पर पल पल की निगरानी के लिए 255 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़।
0: इस बीच हनुमानगढ़ के टाउन स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह मेहताब सिंह ने में 10 सितंबर से सालाना जोड़ मेला शुरू होगा। मेले को लेकर गुरुद्वारा साहिब में तैयारियां की जा रही हैं। गुरुद्वारे के मुख्य सेवादार बाबा योगा सिंह ने बताया कि मेले में एक दिन पहले 9 सितंबर को खुले दीवान सजाए जाएंगे। भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने कल जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक में अन्य सैन्य अधिकारी मौजूद रहे। जनरल धीरज सेठ ने पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा से भी मुलाकात की। दोनों अधिकारियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, खुफिया जानकारी के आदान प्रदान और संवेदनशील परिस्थितियों में सेना तथा पुलिस के बीच बेहतर समन्वय को लेकर चर्चा हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय मानक ब्यूरो ने चांदी की हॉलमार्किंग व्यवस्था का देश भर के 102 जिलों में विस्तार किया। 25,000 से अधिक कारोबारी पंजीकृत। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा 31 अगस्त तक स्थगित की। देश प्रदेश में रक्षाबंधन पर्व को लेकर हर्षोल्लास। बाड़मेर में पेड़ों को राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। और प्रसिद्ध गोगा मेड़ी मेले की शुरुआत आज से, विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM 103.7 MHz पर

0: हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 103.7 MHz पर

के सहते हैं। इसी दुख से भरत की छाती फटती है, न भूख लगती है न नींद आती है। इस दुख का निदान उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता। निदान मात्र एक है, श्री राम को अयोध्या लौटा लाना।

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमे चैनल है FM बैंड 103.7 MHz पर। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये है पहली पेशकश, आवाज़ अजीज़ नाज़ा की है।

नमस्कार। संस्कार, संस्कृति और आधुनिक शिक्षा का अनूठा संगम, सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़, छात्र एवं छात्राओं दोनों के लिए वैदिक पढ़ाई का एकमात्र संस्थान, राजस्थान का पहला बालिका वेद विद्यालय भी यहीं संचालित होता है। छात्र छात्राओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित पृथक पृथक छात्रावास की उत्तम सुविधा है। प्रवेश प्रारंभ है, संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

0: सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: लीजिए सुनिए वंदना में ये आखिरी पेशकश, आवाज़ जफर हुसैन खान की है।

0: इसी के साथ कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमे चैनल है FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए के अंतर्गत हमारी संस्कृति की संवाहक संस्कृत भाषा विषय पर डॉक्टर हेमंत कृष्ण शर्मा से अशोक कुमार गोयल की बातचीत।
1: और बहुत ही सार्थक चर्चा।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर हेमंत कृष्ण शर्मा, जो कि संस्कृत के विद्वान हैं, और सेठ श्री सूरजमल तापड़िया, आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ में प्राचार्य के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में आपको पाकर हमें हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियोज में। नमस्कार।
1: नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
0: तो डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे हमारी संस्कृति की संवाहक संस्कृत। तो जो संस्कृत भाषा है, जो कि जिसमें कि हमारे भारतीय जो ज्ञान की परंपरा है, भारतीय साहित्य रचना हुई है आदिकाल से, हमारे जो भी ऋषि मुनि हैं उन्होंने अपने ज्ञान को इसमें समेटा है, और भी जो विद्वान विदुषियां जो हुई हैं प्राचीन काल में, तो एक समय था जबकि संस्कृत ही भाषा थी हमारे देश में, तो और उसी से कई भाषाओं की और उत्पत्ति भी हुई। लेकिन आज हम देखते हैं कि संस्कृत जो भाषा है वो थोड़ा उपेक्षित हो गई है, और जो उसकी लोकप्रियता है वो उतनी नहीं है। उसका कारण ये हो रहा है, और उसकी वजह से ये हो रहा है कि जो हमारी संस्कृति है वो हमारी युवा पीढ़ी तक नहीं पहुँच पा रही है, और हम बहुत तरक्की कर रहे हैं भौतिक रूप से, लेकिन फिर भी जो एक हमारा आध्यात्मिक एक स्वरूप था भारत का, एक जो हमारा एक सुख शांति और सुकून की जिंदगी थी, चाहे भौतिक सुख सुविधाएं कम थी, लेकिन आज भौतिक सुख सुविधाएं बहुत होने के बावजूद भी सुख शांति चैन नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं संस्कृत और हमारी संस्कृति की। तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से संस्कृत के पराभव के साथ ही हमारी संस्कृति का भी क्षरण शुरू हो गया है।
1: धन्यवाद गोयल साहब। सच्चाई तो यह है कि पहले जो हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति है, वो संस्कृत में निहित है।

0: सारा का सारा ज्ञान, सारे का सारा वैभव संस्कृत भाषा में ही निहित है। आज हम देखना चाहें तो हमें ये प्राप्त होता है, ये जानकारियां मिलती हैं कि प्रत्येक लोग, प्रत्येक व्यक्ति समाज से कटा हुआ है, समाज से दूरियां बनाई रखी हैं। उसका मुख्य कारण है वो अपनी जन भाषा, देव भाषा संस्कृत से दूरी बना चुका है। संस्कृत भाषा आध्यात्मिकता की भाषा है, देवताओं की भाषा है, और अतिशयोक्ति नहीं होगा, सभी भाषाओं की जननी भी संस्कृत भाषा ही है। आज संस्कृत भाषा से लोग दूर हो रहे हैं, विमुख हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि आज संस्कृत भाषा को जानने वाले जो लोग हैं वो इसको सही ढंग से सभी लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाए। यदि वो लोग सही समय पर सही डिसीजन लेकर संस्कृत भाषा के सरलीकरण को करके जन सामान्य तक पहुंचाते, लोगों को जोड़ने का काम करते, तो आज वही दिन रहता जो आदिकाल में था। संस्कृत भाषा मुख्य भाषा थी, व्यवहार भाषा थी, वो आज भी रहता, लेकिन मुख्य कारण क्या रहा? संस्कृत के जानकार जो लोग थे वो इस भाषा के लिए इतना काम नहीं कर पाए। धीरे धीरे दूसरी भाषाएं विकसित होती गई और वो एक व्यापार की भाषा के रूप में डेवलप हो गई। आज सब लोग व्यापार को चाहते हैं, आर्थिक उन्नति को चाहते हैं, जबकि संस्कृत भाषा में सारा का सारा ज्ञान निहित है, आर्थिक उन्नति निहित है। मुख्य कारण यही रहा कि दूसरी भाषाएं धीरे धीरे डेवलप हो गई। दूसरे लोगों का उद्देश्य भी यही रहा कि किस प्रकार से हम संस्कृत भाषा को पराभव करके, संस्कृत भाषा को तिरस्कृत करके हम अपने आप को आगे बढ़ाएं, हम अपनी भाषा के वर्चस्व को आगे बढ़ाएं। रही बात सांस्कृतिक मूल्यों का, आज
1: जी
0: मूल्यों
1: क्षरण हो
0: का,
1: रहा है,
0: मूल्यों
1: जो
0: का आज
1: नैतिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है, हमारे जो सामाजिक मूल्यों का क्षरण
0: जी
1: हो रहा
0: जी
1: है,
0: जी जी
1: तो उसको अगर हम हमारी संस्कृति के क्षरण से जोड़ते हैं
0: जी
1: और संस्कृत भाषा के क्षरण से जोड़ते हैं, तो किस
0: हाँ
1: प्रकार
0: जी
1: से आप
0: जी
1: देखते
0: जी
1: हैं सब चीजों को?
0: बड़ा अच्छा ये है साहब,
1: जी
0: संस्कृत भाषा का और नैतिक मूल्यों का बहुत आपस में जुड़ाव है। संस्कृत में ही सारे के सारे नैतिक मूल्य निहित हैं। देखिए, नैतिकता की बात जहाँ आती है वहाँ संस्कृत भाषा जरूर आती है। आज हम देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति संसार में देखते हैं, प्रत्येक घर, उसमें वातावरण दूषित हो रहा है। उसका मुख्य कारण यह है कि हम नैतिक शिक्षा की ओर जाते ही नहीं है, नैतिक शिक्षा पढ़ते ही नहीं है। आप देखिएगा डॉक्टर साहब, जब आप पहले पढ़ाई करते थे तो एक नैतिक शिक्षा का कालांश आया करता था। उसमें हमें साधु संतों के बारे में जीवनियां बताया करते थे, कुछ हमारी जो विरासत है उनके बारे में बताया करते थे, हमारी संस्कृति के बारे में बताया करते थे, हमारे पर्व के बारे में जानकारी दिया करते थे। लेकिन आज वो हो ही नहीं रहा है। आज केवल सूचनाएं इकट्ठी कर रहे हैं। जिसके पास ज्यादा सूचना है उसको सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। इस शक्तिशाली सूचना तंत्र के आगे नैतिक पक्ष कमजोर होता गया और वहीं से हमारी नैतिकता धीरे धीरे डाउन होती गई। आज समय यह है कि परिवार में 5 सदस्य हैं तो पांचों का आपस में संवाद नहीं है। संवाद नहीं होने के कारण नैतिकता धीरे धीरे कम होती जा रही है।
1: जी
0: यदि
1: जी
0: परस्पर संवाद होता तो एक पिता को यह पता होता है कि मेरा पुत्र किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। संवादहीनता के कारण धीरे धीरे इतना दूरियां बन जाती हैं इतनी कि वो लोग नैतिक पतनता की ओर जा रहे हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कि जो आर्थिक उन्नति की भी आपने बात की है कि समय तो बदल रहा है तेजी से, समय को हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन समय के साथ हमें चलना है, हमारी भाषा को चलना है, हमारी संस्कृति को भी चलना है, तो उसको समय अनुकूल बनाने के लिए ये भी जरूरी है कि भाई उसकी भाषा अगर थोड़ी क्लिष्ट है, ऐसा कहा जाता है, मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में नहीं जानता, लेकिन ऐसा कहते हैं कि भाई संस्कृत थोड़ी क्लिष्ट है, मतलब समझने में थोड़ी मुश्किल है, याद करने में मुश्किल होती है, तो एक तो इसका सरलीकरण हो, और जब तक ये जन जन की भाषा नहीं होगी, लोकप्रिय नहीं होगी, इसको व्यवहार में नहीं लाया जाएगा, तब तक इसके माध्यम से जो भी ज्ञान विज्ञान हमारे भंडार पड़ा है वो ऐसे ही रहेगा बगैर किसी काम के, तो उसको काम में लिया जाए। उसके लिए जरूरी है कि आप क्या मानते हैं, इसमें किन लोगों को काम करना चाहिए, क्या काम होना चाहिए जिससे कि संस्कृत भाषा को हम न केवल अपनाएं बल्कि उस भाषा में जो भी ज्ञान विज्ञान का हमारे पास संकलन है उसका भी हम हमारे जीवन में उपयोग कर सकें। और भारत की संस्कृति, भारत तो विश्व गुरु रहा हुआ है, और वो विश्व गुरु अपनी इसी आध्यात्मिक उन्नति की वजह से और जो भी उसकी ज्ञान विज्ञान का भंडार है और जो चीजें आज हम देखते हैं दूसरे रूप में वो आ रही हैं, वो सब चीजें किसी न किसी रूप में हमारी प्राचीन साहित्य संस्कृति और

0: ग्रंथों में
1: विद्यमान है।
0: मौजूद है। तो वो चीज़ें वापस से आएं और लोग स्वेच्छा से इसको अपनाएं, क्योंकि केवल सरकारी प्रयासों से तो कोई काम होना संभव नहीं है। तो इसके साथ साथ सामाजिक, मतलब जो सपोर्ट है, सामाजिक जो उसको एक संबल मिले, और जो संस्थाएं हैं उसको लेकर, जो समाज सेवी हैं, संस्कृत सेवी हैं, वो भी इसको ले। अभी हमारी सरकार ने कुछ प्रयास तो कर रहे हैं, अभी हम देखते हैं कि जो मन की बात होती है, हमारे प्रधानमंत्री जी हर महीने की आखिरी रविवार को जो मन की बात करते हैं, उसके बाद उसके संस्कृत भाषा का अनुवाद का भी प्रसारण, एक नई परंपरा शुरू हुई है, एक नई चीज हम ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी से भी करते हैं। तो सरकार का प्रयास तो है, लेकिन केवल सरकारी प्रयास नाकाफी है जहां तक हम सोचते हैं। तो आप चूंकि संस्कृत से जुड़े हुए, संस्कृत के विद्वान हैं और संस्कृत पठन पाठन का काम आप कर रहे हैं, तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि क्या होना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, किसकी क्या जिम्मेदारी है, किस प्रकार से इस भाषा को आगे बढ़ाकर हम अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ाएं।
1: धन्यवाद। देखिए साहब, आपने प्रारंभ में ही कहा कि संस्कृत भाषा कठिन है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, संस्कृत भाषा नेव क्लिष्टा नेच कठिना। संस्कृत भाषा कठिन है ही नहीं, बहुत सरल भाषा है। बस प्रयास करना चाहिए, जो प्रयास करता है वह इस भाषा को साध लेता है। सच्चाई तो यह है कि इसका व्याकरण इतना पुष्ट है कि जैसे गणित में 1+1=2 होता, ठीक उसी प्रकार से हमारे व्याकरण के सूत्र हैं, उन सूत्रों के हिसाब से उच्चारण में शुद्धता आती है, शब्द विन्यास, वाक्य विन्यास किस प्रकार से शुद्धता है, सारा का सारा सटीक है
0: जी।
1: तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि संस्कृत भाषा बहुत सरल है, इसको कठिनता की ओर लोगों ने धकेल दिया।
0: मैं आपको टोकना चाहूंगा कि वैज्ञानिक भाषा है, इसमें कोई शक नहीं है, और शुद्ध है, व्याकरण सम्मत भाषा है, वो सब बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्यों नहीं लोकप्रिय हो रही है, ये थोड़ा सा हमारा विचारणीय विषय। क्योंकि हम ये कह दें कि संस्कृत भाषा क्लिष्ट नहीं है, बहुत सरल है, उससे काम नहीं चलेगा।
1: मैं बताना चाहूंगा, पाणिनीय, महर्षि पाणिनीय से लेकर संस्कृत भाषा को सरलता के लिए काम किया गया। इससे पहले ये वैदिक भाषा थी, उसको सरल भाषा में लाने का काम सबसे पहले महर्षि पाणिनी को जाता है। महर्षि पाणिनी ने सूत्रबद्ध काम किया, सरलता की ओर लेके गई। जहां तक आपका प्रश्न है कि लोग जुड़ नहीं रहे हैं, जुड़ने के मुख्य कई कारण हैं। आज आर्थिक युग है, इस भाषा में आर्थिकता लाने के लिए वैदेशिक जो वैश्विक मंच है उसके ऊपर संस्कृत भाषा पनपी हुई नहीं है, वहां पर अंग्रेजी या अन्य दूसरी भाषाओं का बोलबाला है। लोग शॉर्टकट चाहते हैं, शॉर्टकट में विचार जो अपने स्थापित कर सकते हैं, इसलिए क्या वैदेशिक जो मंच है उसके ऊपर संस्कृत भाषा का वो प्रभाव नहीं रहा, इसलिए लोग इससे जुड़ नहीं रहे। लोगों की इच्छा रहती है कि मैं किस प्रकार से आगे बढ़ूं, तो जो समुदाय है, व्यापारिक समुदाय है, दूसरे जो समुदाय हैं, वो लोग संस्कृत के जानकार नहीं हैं, वो दूसरी भाषा को जानते हैं। लोग आगे बढ़ने के लिए उन लोगों से संपर्क करते हैं, इसलिए संस्कृत भाषा को अपना नहीं पाए। दूसरा मुख्य कारण क्या है कि संस्कृत भाषा स्वांतः सुखाय की भाषा है, संस्कृत भाषा आत्म शांति की भाषा है, अपने आप को साक्षात करने की भाषा है। यदि संस्कृत भाषा भाषी जो व्यक्ति है वो कहीं पर भी जाता है तो आप देखिएगा उसकी विचारधारा में उसके सोचने की शक्ति, समझने की सारी अलग मिलेगी। तो निश्चित रूप से मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि संस्कृत पढ़ा लिखा व्यक्ति और एक जो दूसरी भाषा पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसके संस्कारों में, उसकी संस्कृति में निश्चित रूप से आपको अंतर मिलेगा। अब रही बात ये कि लोग अपना नहीं रहे हैं, अपनाने का मुख्य कारण क्या है कि संस्कृत भाषा वालों के लिए रोजगार नहीं है। रोजगार के कई कारण हो सकते हैं, तो रोजगार अपने को खुद को डेवलप करने पड़ेंगे। अब संस्कृत भाषा क्लिष्ट भाषा आप कहते हैं, उसका कारण यह है कि संस्कृत धीरे धीरे व्यापार के कारण उसमें टिक नहीं पाए हम लोग, धीरे धीरे दूसरी भाषाएं पनप गई। अब संस्कृत भाषा वाले लोग हैं, उनको संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए काम करना चाहिए। जो लोग संस्कृत के जानकार हैं उनको संस्कृत के सरलता की ओर काम करना चाहिए। एक संगठन है संस्कृत भारती
0: जी।
1: संस्कृत भारती पिछले कई वर्षों से, लगभग 50 वर्षों के आसपास हो गए, वो संस्कृत के प्रचार प्रसार का काम कर रही है। संस्कृत भारती के प्रचार प्रसार से मथुर एक गांव है जहां पर सारे के सारे लोग ग्रामीण संस्कृत

0: भाषा बोलते हैं। अपने राजस्थान में बांसवाड़ा के आसपास के कई जो गांव हैं वो भी संस्कृत भाषी हो गए हैं। संस्कृत भारती एक आंदोलन के रूप में काम कर रही है, लोगों को संस्कृत के प्रति जोड़ रही है, और वो एक विशेष शिविर लगाते हैं संस्कृत भारती वाले, तो उसमें केवल 7 दिन में संस्कृत बोलनी सिखा देते हैं। आज पहले वाली बात नहीं रही, जैसे आप कह रहे हैं कि लोग संस्कृत से दूर जा रहे हैं। मैं भी संस्कृत भारती के शिविरों में जाता रहता हूँ,
1: जी
0: लोग बड़े उत्साह से संस्कृत सीखने के लिए आते हैं और संस्कृत सीखकर गीता पाठ करते हैं या ईश्वर आराधना करते हैं, बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मैं संस्कृत बोलनी सीख गया।
1: जी तो डॉक्टर साहब, आप काफी लंबे समय से संस्कृत साधना कर रहे हैं और संस्कृत महाविद्यालय में प्राचार्य आप हैं, तो मैं संस्कृत भारती की आपने अभी उल्लेख किया है उसका, तो वो उसके द्वारा भी आपको हाल फिलहाल में बहुत जल्दी ही सम्मानित किया जाएगा ऐसा हमें ज्ञात हुआ है, तो थोड़ा जानना चाहेंगे आपकी साहित्य साधना और संस्कृत साधना के बारे में और थोड़ी आपकी इस क्षेत्र में जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में संक्षेप में, कि जिसके वजह से जिसके लिए आपको कि सम्मानित किया जाएगा संस्कृत भारती द्वारा।
0: मैं आपको निवेदन करना चाहूँ, इससे पहले का जो टॉपिक है थोड़ा सा पूरा नहीं हो पाया था, वो पूरा
1: जी
0: करूँ।
1: जी
0: संस्कृत के क्षेत्र में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं। एक राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है, उसके वर्तमान में कुलपति माननीय बरखेड़ी महोदय हैं। बरखेड़ी महोदय को लगभग 5 वर्ष हुए हैं कुलपति के रूप में काम करते हुए। वो जब से आए हैं संस्कृत भाषा को जन भाषा के रूप में, कंप्यूटर की भाषा के रूप में जोड़ने के लिए कई नवीन प्रयोग किए हैं। जैसे उन्होंने बीटेक पाठ्यक्रम प्रारंभ कर दिया संस्कृत में।
1: जी
0: उनका उद्देश्य है कि ये जो कंप्यूटर की भाषा है, कोडिंग की जो भाषा, वो संस्कृत है। नया पाठ्यक्रम कर दिया, नवाचार हुआ है।
1: जी
0: आप ताजुब करेंगे कि वहां भी लोग बीटेक संस्कृत के माध्यम से कर रहे हैं, ये नवाचार है हमारा।
1: जी
0: इसी प्रकार से न्यायालय की जो पढ़ाई होती है, जिसे हम LLB बोलते हैं,
1: कानून की
0: वो
1: पढ़ाई।
0: जी
1: जी
0: कानून की पढ़ाई,
1: जी
0: उसको भी हमने क्या किया, संस्कृत माध्यम से पढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। तो एक नवाचार किया है। अभी राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के द्वारा कई इस प्रकार के पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, ग्रंथों का अनुवाद करना, छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा जन सामान्य तक पहुंचना। एक नई योजना है कि ये पांडुलिपि मिशन है, जो
1: जी
0: हमारा पूरा का पूरा ज्ञान है वो पांडुलिपियों में निहित है। बहुत सारी पांडुलिपियां ऐसी हैं जो अभी भी सुरक्षित हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है, पता ही नहीं कहाँ है। केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई, पांडुलिपि मिशन ज्ञान भारतम, इसके द्वारा पांडुलिपियों का सर्वे हो रहा है। और मैं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को सूचना देना चाहूंगा, पांडुलिपि सर्वेक्षण के क्षेत्र में राजस्थान प्रथम स्थान पर आया है। वो
1: जी
0: तभी आ पाया है जब बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं, सुप्रीम फाउंडेशन जैसे संगठन इसमें सहयोग कर रहे हैं। राजस्थान जयपुर में अपने कई प्रकार के NGO जैसे हैं जो कि इस पांडुलिपि मिशन में सहयोग कर रहे हैं। पांडुलिपियों में अपना जो पुराना ज्ञान वैभव है वो सुरक्षित है। पहला काम उसको सुरक्षित करना है, दूसरा स्टेप उनमें जो ज्ञान है उसको प्रकाशित करना रहेगा, तीसरे नंबर पर जनसामान्य को पहुंचाना रहेगा। इसी प्रकार से कुछ संगठन ऐसे हैं जो कि संस्कृत विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दे रहे हैं, संस्कृत के विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रकार के और कार्यक्रम कर रहे हैं। एक सुप्रीम फाउंडेशन नाम की संस्था है, वो जितने भी राजस्थान में संस्कृत विद्यालय हैं वहां अध्यापक लगा रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य, संस्कृत पढ़ने वाला विद्यार्थी कोई बिना अध्यापक के नहीं रहे, अध्यापक के अभाव में उसकी शिक्षा में कोई कमी नहीं आए। तो ये एक संस्कृत के लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है, संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने के लिए। और भी कई, एक तोसनीवाल ट्रस्ट है, वो संस्कृत विद्यालयों में जहां भी भूमि नहीं है, भवन नहीं है, वहां बैठने के लिए व्यवस्था करते हैं, भूमि भवन की व्यवस्था करते हैं। विद्यार्थियों के लिए कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, वो सबसे पहले संस्कृत के विद्यार्थियों को। चिन्हित करते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं।
1: जी, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने।
0: एक
1: जी
0: बात, एक और निवेदन करना चाहूंगा मैं, ये जो पाठ्यक्रम है, जैसे कई वर्षों पहले जो ये आयुर्वेद की पढ़ाई होती थी
1: जी
0: वो संस्कृत वाले विद्यार्थियों के लिए एक स्वप्न
1: बिल्कुल
0: हो गया।

0: था, लेकिन माननीय वरखेड़ी महोदय ने एक ऐसी योजना चलाई आयुर्वेद गुरुकुलम। उसके तहत क्या है कि जो बच्चा 10वीं पास करता है उसके बाद वो आयुर्वेद की पढ़ाई में आ जाए, एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट में देकर वो 10-11वीं में ही आयुर्वेद BAMS की पढ़ाई चालू कर देगा। तो ये हमारे संस्कृत भाषा में नवाचार हैं, इन नवाचारों को हम कर रहे हैं। आप ताजुब करेंगे, वेटिंग लिस्ट निकलती है हमारी। पहले लोग कहते थे कि संस्कृत पढ़ने नहीं जाते हैं, लेकिन अब हमारे यहाँ वेटिंग लिस्ट निकलती है और
1: जी,
0: संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छा काम हो रहा है वर्तमान में।
1: तो बहुत ही सुंदर बात बताई
0: जी जी
1: आपने। और अब हम बात कर रहे थे कि संस्कृत, आपके संस्कृत साधना की,
0: जी
1: तो
0: जी
1: उसके बारे में थोड़ा बताइए।
0: संस्कृत साधना के क्षेत्र में मेरा ये है कि मैं तो संस्कृत का विद्यार्थी रहा ही हूँ और मेरे उत्साह से मैं संस्कृत का काम करता हूँ। मैंने संस्कृत के लगभग विभिन्न विषयों पर आज तक 10 कृतियाँ लिखी हैं और जो भी संस्कृत विद्यार्थी आता है मेरे पास, मैं सबसे पहले उसका मूल्यांकन करता हूँ कि ये कितना क्या कर सकता है। उसके बाद कई विद्यार्थियों की श्रेणियां अलग अलग बांटकर उनको उन्हीं क्षेत्रों में काम करने के लिए आगे बढ़ाता हूँ। कुछ विद्यार्थी पौरोहित्य कर्मकांड के लिए आते हैं, कुछ विद्यार्थी एक सेना में रिलीजियस टीचर होता है जिसे धर्म गुरु कहा जाता
1: जी
0: है,
1: जी
0: उस धर्म गुरु के लिए मेरे पास आते हैं, तो उनको धर्म गुरु के रूप में प्रशिक्षित करके आगे बढ़ाने का काम करता हूँ। संस्कृत शिक्षा में जहाँ पर अध्यापकों की कमी थी और कमी थी, सेठ जी ट्रस्ट से कई लोगों से मैंने निवेदन किया और उन संस्कृत स्कूलों को कॉलेजों को आगे बढ़ाने का काम किया। एक राजस्थान संस्कृत अकादमी है जो कि वेद विद्या का प्रचार प्रसार करती है, वहाँ मैं महासमिति सदस्य हूँ। वहाँ पर भी हमने एक योजना चलाई कि सभी वेद विद्यालयों में संस्कार शिविर लगाए जाएं। उन संस्कार शिविरों के द्वारा जो वेद विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको संस्कारित किया गया, उनको 21 दिन का प्रशिक्षण दिया गया और प्रशिक्षण के आधार पर हमने देखा कि अब वो जहां भी जा रहे हैं रोजगार के लिए एक अलग पहचान है। खास करके वो विद्यार्थी पौरोहित्य कर्मकांड ही करते हैं, लेकिन बिना प्रशिक्षण के और प्रशिक्षण लेने के बाद उनमें जो निखार आया है वो एक बहुत बड़ा अंतर है। इसी प्रकार से राजस्थान में जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर है, वहां पर हमने एक मंत्र प्रतिष्ठान है, उस मंत्र प्रतिष्ठान को विकास करने का ठाना। वो इसलिए विचार किया कि एक बार अखबार में समाचार छपा कि मंत्र प्रतिष्ठान में कोई काम नहीं हो रहा। मैंने माननीय महावीर प्रसाद जी तापड़िया महोदय से निवेदन किया कि अपने को मंत्रों के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। वास्तव में आज तंत्र मंत्र यंत्र के बारे में लोग जानते ही नहीं है, दूर होते जा रहे हैं। तो हमने वहां एक MOU किया और MOU करके वहां पर मंत्रों का प्रत्यक्षीकरण किया गया। अब आगे की हमारी योजना ऐसी है, उन मंत्रों को जैसे ये CD में गाने आते हैं, फिल्मों के गाने आते हैं, इसी प्रकार से उस मंत्रों के ज्ञान को छोटे छोटे CD बनाकर या फिर वो पेन ड्राइव में डालकर वो एक वितरण करेंगे। उससे ये संदेश जाएगा कि ये कितने उपयोगी हैं, जो लोग इनका प्रयोग करेंगे उनको महसूस कर पाएंगे कि मन शांति के लिए कितने अच्छे हैं।
1: जी, तो एक समय था जब मंत्र का जमाना था,
0: जी
1: यानी जब मंत्र काम करता था, फिर आया तंत्र, फिर आया यंत्र, और अब है षड्यंत्र।
0: जी जी
1: तो इन सारे जो षड्यंत्र हैं, चाहे वो हमारे देश की ताकतें हैं जो कि एंटी सोशल ताकतें हैं या विदेशी ताकतें हैं, तो वो हमारी संस्कृति को हड़प करके और जो हमारे बच्चों का दिमाग कैप्चर करके, और वो षड्यंत्र जो कर रही हैं, उस षड्यंत्र को हम किस प्रकार से असफल कर सकते हैं हमारी संस्कृति और संस्कृत भाषा की तरह। लोगों से आप क्या अपेक्षा करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा समय कम है, इसलिए हम संक्षेप में ही बात को आगे बढ़ा
0: बहुत
1: पाएंगे।
0: बहुत अच्छा डॉक्टर साहब,
1: जी
0: मेरा ये निवेदन है कि वर्तमान में सभी जगह षड्यंत्र तो हो ही रहे हैं,
1: जी
0: लेकिन फिर भी जो लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत में एक अकृत्य व्यूहा पाणिनीया, पाणिनीय की एक सूक्ति है, उस मंत्र है, उसका अर्थ यह होता है कि पाणिनीय संस्कृत पढ़ने वाले लोग भावी विनाश को पहले ही देख लेते हैं और उसी हिसाब से गुण वृद्धि का कार्य करते हैं। आज आवश्यकता ये उन षड्यंत्रों से बचने के लिए आवश्यकता ये है कि वेद की रक्षा की जाए, संस्कृत भाषा का अध्ययन किया जाए और हम सभी लोग ध्यान मेडिटेशन इत्यादि के द्वारा जो गुरुकुल पद्धति है उसको पुनः विकसित किया जाए। गुरुकुल पद्धति पुनः विकसित हो जाएगी तो अपने भारत देश में संस्कार और संस्कृति की कमी नहीं रहेगी, अपना भारत देश पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो पाएगा। पुनः वर्तमान में आवश्यकता यही है

0: संस्कारों की ओर लौटें, वेदों की ओर लौटें, हमारे भारतीय संस्कृति, ज्ञान, परंपरा, वैभव उसको अपनाएं और अपने आप को अपडेट करते हुए आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें।
1: तो बहुत ही अच्छी चर्चा आज हुई है डॉक्टर साहब आपसे। आज हम बात कर रहे थे डॉक्टर हेमंत कृष्ण शर्मा, जो कि प्राचार्य हैं जसवंतगढ़ में, जो संस्कृत कॉलेज है सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय। और बहुत ही सार्थक चर्चा हुई है, लेकिन अभी हम कहें कि चर्चा अधूरी है, क्योंकि और वैसे इस चर्चा का हम कहें कि जो समय जितना कम हो, वो जितना समय हो उतना ही कम है, लेकिन हम समय की सीमा को देखते हुए
0: जी जी
1: आज इतनी चर्चा कर पाएंगे। आज आप हमारे स्टूडियोज में आए और हमारे श्रोताओं को बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम में इनसे मिलिए के अंतर्गत हमारी संस्कृति की संवाहक संस्कृत भाषा विषय पर डॉक्टर हेमंत कृष्ण शर्मा से अशोक कुमार गोयल की बातचीत। FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। आइए सुनते हैं गाने पुराने जमाने के। आज है रक्षाबंधन, यानी प्यार की एक डोर, विश्वास की एक डोर और जीवन भर साथ निभाने का एक खूबसूरत वादा। इन्हीं लाइनों के साथ आकाशवाणी परिवार की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं ये पहला गाना फिल्म तिरंगा से।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आपने सुना ये गाना फिल्म काजल से आशा भोसले की आवाज़ में। रवि का संगीत और साहिर लुधियानवी के बोल थे। दीजिए सुनते हैं ये अगली पेशकश।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: यह है गाने पुराने जमाने की आखिरी पेशकश फिल्म का नाम नया दौर।

अभी आप सुन रहे थे गाने पुराने जमाने के। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं गाने नए तराने नए। यह पहली पेशकश आवाज दलेर मेहंदी गुरदीप मेहंदी की है। आनंद मिलित का संगीत है और समीर के बोल। पेश है ये गाना।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

ये गाना हमने लिया है फिल्म भूमि से। नेहा कक्कड़, बेनी दयाल और ब्रिजेश, संध्या और बादशाह की आवाज़ें हैं।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

अभी आपने सुना ये गाना फिल्म ब्लैकमेल से पवनी पांडे की आवाज़ में। लीजिए गाने नहीं तराने नहीं की ये अगली पेशकश सुनिए।

ये गाना हमने लिया है फिल्म ब्रदर्स से, चिन्मयी श्रीप्रदा की आवाज में। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं और अजय अतुल का संगीत है।

0: लीजिए सुनिए गाने नए तरह नए के आखिर में यह गाना फिल्म दबंग 2 से।
1: One, two, one.

इस गीत के साथ कार्यक्रम गाने नए तराने नए अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमे चैनल है FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं मुंबई से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

एक शबनम के बहे और खामोश रहे, हार फूलों के जो गुलशन से वो लेकर निकला, अपने फूलों से मचल

मोहम्मद रफ़ी और शमशाद बेगम और साथियों की आवाज़ में आपने सुनी अभी ये कव्वाली। इसके बोल लिखे थे शेवान रिजवी ने और संगीत तैयार किया था इकबाल कुरैशी ने।

0: सजदा एल्बम से अभी आवाज सुन रहे थे लता मंगेशकर की, कदील शिफाई के बोल और जगजीत सिंह की धुन थी।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: अभी आपको सुनवा रहे हैं हम मुकेश की गाई गजल, जिसे लिखा है जानिसार अख्तर ने और धुन तैयार की है खयाम ने।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
0: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर। अब जो रचना आपको हम सुनवाने जा रहे हैं इसमें स्वर है चित्रा सिंह का, संगीत तैयार किया है जगजीत सिंह ने और इसके बोल लिखे हैं सईद राही ने।

चित्रा सिंह की गाई इस गजल के बाद अब आपको सुनवा रहे हैं जान एल्बम से सोनू निगम की आवाज में फैज अनवर का लिखा गीत। इसकी धुन तैयार की है निखिल विनय ने।

मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिस

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक, तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा,
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: दलेर मेहंदी की आवाज में आपको सुनवा रहे हैं एल्बम तुनक तुनक तुमसे ये गीत, जिसे तैयार की, इसकी धुन तैयार की है रवि पवार और दलेर मेहंदी ने, और शब्द रचना भी दलेर मेहंदी की है।

चंदन दास के स्वर में अभी आपने ये गजल सुनी और अब आपको सुनवा रहे हैं मेड इन इंडिया इस एल्बम से आलिशा चिनॉय की आवाज में एक बहुत खूबसूरत सा गीत। गीत के बोल आलिशा चिनॉय और श्याम अनुरागी के हैं। संगीत की धुन तैयार की है बिद्दू ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं गजल जिसे हमने लिया है जिगर से जिगर तक इस एल्बम से। स्वर हैं महेश चंदर और कविता कृष्णमूर्ति के, शब्द रचना जिगर मुरादाबादी की और संगीत से धुन तैयार की है महेश चंदर ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत की खबर है। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता है। भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव के आने की आशंका बन गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति और सलामती का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें भारत की ओर से सहायता का आश्वासन दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल अमेरिका के उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों पक्षों ने राहत और बचाव कार्यों पर चर्चा की। अमेरिका ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 5 लाख अमरीकी डॉलर की सहायता की घोषणा की। श्रीलंका ने भी नेपाल को 10 लाख अमरीकी डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इस बीच नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि गंडक नदी के जलस्तर में कल से गिरावट आ रही है।
1: गंडक नदी के पूरे प्रवाह में अभी जल स्तर भी ऊंचा नहीं था, बल्कि सामान्य से भी थोड़ा कम था। इसलिए जो भी पानी संभावित था या जो आया, उससे बहुत ज्यादा भयावह स्थिति नहीं बनी।
0: एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत तथा अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को सुलभ बना रही है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने ISI समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिल्ली के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दंपति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था।

0: इसमें भारतीय सिम कार्ड खरीदना और उन्हें पाकिस्तान भेजना शामिल था। भारत में सिम कार्ड खरीदने के लिए दिल्ली के स्थानीय लोगों को भर्ती किया गया था। भारत में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार 9 अतिरिक्त रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। मौसम विभाग ने ओडिशा और बिहार में आंधी के साथ मूसलाधार वर्षा और बिजली का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तराखंड में भी तेज वर्षा की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 141 अंक बढ़कर 77,075 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है यादों की महफिल।

अभी आप सुन रहे थे शिरडी के साईं बाबा फिल्म का गीत, जिसमें स्वर थे मोहम्मद रफी, जानी बाबू, अनूप जरोटा, अनुराधा पौडवाल और साथियों के। शब्द रचना मनोज कुमार की और स्वर रचना

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
4: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
5: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
4: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
5: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
4: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

रिश्ता कागज का। इस फिल्म का गीत अभी आप लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे, बोल मजरूह सुल्तानपुरी के, संगीत राजेश रोशन का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सखी सहेली।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में आप सुन रहे थे ये गीत सबसे बड़ा रुपया फिल्म से। मजरूह सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में पिरोया था बासु मनोहारी ने। अब आपको सुनवाते हैं शैलेंद्र सिंह की आवाज में रंगीला रतन फिल्म का गीत, जिसे लिखा गुलशन बावरा ने और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।
1: अरे भाई मोहन, ये कौन है भाई?
2: नहीं, मैं नहीं जानता ये कौन है।
1: कौन है ये?
3: ये कौन है?
1: कौन है? कौन ये?
4: मैं हूँ रंगीला रतन।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है स्वामी फिल्म से। इस गीत को गाया लता मंगेशकर ने और अमित खन्ना के बोलों को शुरू में पिरोया है राजेश रोशन ने।

अगला फिल्म अगला गीत हमने लिया है बड़े दिल वाला फिल्म से। आर डी बर्मन के संगीत में इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने।

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है विजेता पंडित और किशोर कुमार के स्वर में जॉनी और जीनी फिल्म से, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल। संगीत है राजेश रोशन का।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत है चितचोर फिल्म से, यशुदास के स्वर में। ये है गीत और संगीत रचना रविंद्र जैन की।

0: जंजीर फिल्म के इस गीत को गाया था लता मंगेशकर ने, गुलशन बावरा के बोल और संगीत कल्याण जी आनंद जी का था।
1: गुड नाइट।
2: हाँ गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

वाले हैं। चरस फिल्म का एक गीत था जिसे गाया था लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। इस गीत के साथ ही यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण। यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल एफ एम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 1 बजे हैं, आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों में कुल जमा राशि 3,17,000 करोड़ रुपए है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की पहल है। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुंच को सुलभ बना रही है। इस योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी योजना के 12 वर्ष पूरे होने पर सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के कारण देश नारी सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास में समर्थ और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना ने देश के अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की है। राज्य में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, साथ ही मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी के तहत जयपुर में मतदाता जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये 17 रथ शहर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करेंगे। भरतपुर में स्वीप कार्यक्रम के तहत मानव श्रृंखला बनाकर मतदान का संदेश दिया गया। सवाई माधोपुर के खंडार, भौरी और बामनवास सहित कई जगहों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वोट डालने की अपील की गई। इस बीच चुनाव के लिए नाम दाखिल करने का सिलसिला जारी है। नामांकन केंद्रों पर उम्मीदवारों और समर्थकों की आवाजाही बढ़ने के साथ ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राज्य में माल परिवहन के दौरान ई वे बिल नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ वाणिज्यिक कर विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। विभाग की प्रवर्तन टीमों ने पिछले 10 दिनों में 16 ट्रांसपोर्टरों के 29 वाहन पकड़े हैं। इन वाहनों में बिना ई वे बिल का परिवहन करने और ई वे बिल में वास्तविक मात्रा और मूल्य से कम विवरण दर्ज करने के मामले सामने आए हैं। विभाग ने वाहनों को नियमानुसार जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। माल और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद देय कर, ब्याज और दंड निर्धारित किया जाएगा। विभाग ने व्यवसायियों, ट्रांसपोर्टरों को ई वे बिल में माल की वास्तविक मात्रा, मूल्य और परिवहन संबंधी सही विवरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। किसानों को सब्सिडी वाले उर्वरकों की पारदर्शी और मांग आधारित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सवाईमाधोपुर जिले में फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल FFS की शुरू की गई है। जिला कलेक्टर कानाराम ने करमोदा में इसका शुभारंभ किया। इस दौरान 150 से अधिक किसानों को FFS ऐप के माध्यम से फार्मर आईडी या आधार आईडी से उर्वरक की ऑनलाइन बुकिंग, उपलब्धता और विक्रेता के चयन की जानकारी दी गई। किसानों को बुकिंग के बाद अधिकृत विक्रेता की यहां POS मशीन से सत्यापन और बिल जारी करने की प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। करीब 50 किसानों को बुकिंग के अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराया गया। वहीं वजीरपुर में भी 100 से अधिक किसानों को ऑनलाइन उर्वरक बुकिंग प्रक्रिया की जानकारी दी गई। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व संस्कृत दिवस पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

0: दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि संस्कृत भाषा के ज्ञान दर्शन और सभ्यता की शाश्वत भाषा है। उन्होंने कहा कि संस्कृत ने देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और बौद्धिक परंपराओं को आकार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संस्कृत भाषा भारत के ज्ञान विचार और रचनात्मकता की एक निरंतर वाहक रही है और इसका सकारात्मक प्रभाव आज भी कई क्षेत्रों में देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सभी प्रदेशवासियों को गौरवशाली भाषा के संरक्षण संवर्धन और जन जन तक इसके प्रचार प्रसार का संकल्प लेकर अपनी सांस्कृतिक विरासत को और अधिक सशक्त बनाने का आह्वान किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। 1:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं मुंबई से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।

तो श्रोताओ, रक्षाबंधन का पर्व है तो सबसे पहला गीत आपको हम सुनवाने जा रहे हैं ये। बताइए किस फिल्म का गीत है।

से इस सफर की शुरुआत होना तो बनता ही है। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत था। सभी श्रोता हमसे जुड़ गए हैं और उनके प्यारे प्यारे कमेंट्स हमारे पास आ गए हैं। गीत के बाद पढ़ते हैं आपके कमेंट्स। श्रोतागण हमें कह रहे हैं कि रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, और हमने भी हमारी तरफ से विविध भारती के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को विविध भारती पर कह दिया है कि रक्षाबंधन पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं, आपका दिल बहुत मंगलमय हो। साथ ही सुरीला सफर में हमारे श्रोता कह रहे हैं कि कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है, ये इबारत से जुड़ी बात इन्होंने इस कमेंट में लिखी है। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है और इंतजार की हर आहट दिल में एक नई उम्मीद जगा जाती है। तन्हाई में बैठी रूह किसी अपने की तलाश करती है तो सरगोशी उसे मोहब्बत और लौट आने की आस दिलाती है। काली घटाओं से लेकर पुरवैया तक हर मौसम जैसे उसी अनकहे प्यार का पैगाम लेकर आता है। आंखें किसी की सूरत देखने को तरसती है और दिल किसी एक कदम की आहट सुनने को बेकरार है। यही तो मोहब्बत है, जहां दूरी में भी अपनापन और खामोशी में भी एक मीठा सा संवाद सुनाई देता है। फिलीपींस से हमारे श्रोता जुड़े हैं और साथ ही सूरत गुजरात से भी श्रोता जुड़े हैं। श्रोताओं का कहना है कि यह संवाद रूह की गहरी तन्हाई और सरगोशी की सांत्वनामयी धीरज के बीच बुना गया एक अत्यंत संवेदनशील और मर्म स्पर्शी आत्म संवाद है। इसमें विरह की टीस, अधूरे अफसाने का दर्द और प्रिय के लौट आने की व्याकुल प्रतीक्षा को बहुत ही खूबसूरत और रूहानी अंदाज में पिरोया गया है। जहां रूह अपने टूटे हुए मन और अंतहीन बेचैनी से जूझ रही है, वहीं सरगोशी मीरा मोहन जैसी निश्चल भक्ति और प्रेम का संबल देकर उस अंतहीन इंतजार को भी एक पवित्र सार्थकता दे देती है। यह इबारत खूबसूरती से बयां करती है कि सच्चा प्रेम दूरी और खामोशी में भी जीवंत रहता है। जहां दो बेकरार दिल भले ही जुदा हो, पर एक अनकहे अदृश्य रास्ते पर एक दूसरे की आहटों में धड़कते रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे श्रोता कह रही हैं कि कितने आश्चर्य की बात है कि इस दुनिया में हर इंसान का मन अलग अलग, सोच अलग अलग है। प्रेम से भरा एक स्पर्श न जाने कितनी कल्पना, कितनी भावनाओं को जगा देते हैं। मन की सरगोशियां कमाल है, यह रूह को छूकर रूह तक पहुंचती है। बिल्कुल सही। फिर ये मन बेचैन क्यों रहता है? जीवन की सुंदरता छोटे पलों में है, वे पल जब हम ट्यून करते हैं सुरीला सफर और चले जाते हैं एक अनजान सफर पर, जहां है मन को लुभाने वाले गीत आज। जी, ये हमारी श्रोता कह रही। हमारे अगले श्रोता कह रही हैं कि रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, और तन्हाई में दिल हमेशा ही सोचता रहता है कि कुछ ऐसा हो कि उदास मन को सुकून मिल जाए। हराहट खामोशी के टूटने का इंतजार करती है और यही इंतजार कभी अकेला नहीं छोड़ता। लगता है कि कुछ तो साथ साथ चल रहा है जो मन अपनापन और मिठास भर देता है। और उन्होंने कुछ गीत भी लिख भेजे हैं। चलिए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत। इस गीत को किसने लिखा है ये बताइए।

0: पाकीज़ा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत आपने सुना और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत को लिखा किसने है। जी हाँ, इसका जवाब आप दे रहे हैं कमाल अमरोही। और जी हाँ, बिल्कुल सही है ये जवाब। और संगीतकार हैं गुलाम मोहम्मद। विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर। अब लेते हैं एक संदेश।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक, तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये

0: क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हमारी एक श्रोता कहती है कि रूह यानी आत्मा एक अदृश्य आध्यात्मिक शक्ति जिससे जीवन चलता है, जिसका चुपके चुपके धीरे से कुछ कहना आज की इबारत में लिखा गया है। बिल्कुल, जब जुबान खामोश होती है तब रूह दिल के कोने में बैठकर सरगोशियां करती हैं, जिसे सिर्फ महसूस किया जाता है। आज के संभाषण में अकेलापन, प्रेम, प्रतीक्षा और व्याकुलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल आपने सही पहचाना है।

हमारे अगले श्रोता कहते हैं कि इस आलेख की सबसे बड़ी रचनात्मक विशेषता है हिंदी सिनेमा के सदाबहार गीतों के बोलों को बिना किसी झटके के गद्य में पिरोना। कालीघटा के साए, प्यार के बदले प्यार दिया, सूरत मीरा मोहन की पुरवैया बाण चलाए और उंगलियां किसके प्यार की जैसे काव्यात्मक वाक्यांश सिर्फ गानों के संकेत नहीं लगते बल्कि ये संवाद की स्वाभाविक भाषा बन जाते हैं। बिल्कुल, हमने गीतों से इन वाक्यांशों को उठाकर हमारी इबारत में शामिल कर लिया है ताकि आप पहचान सके कि कौन सा गीत है। हमारी अगली श्रोता कह रही हैं कि रूह और सरगोशी की आपसी संवाद है, मन में उठते विचार, प्यार, मोहब्बत, तन्हाई, बेचैनी, किसी के आने की आहट मिलने की उम्मीद के लिए इंतजार में, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, ऐसा वो गाना अंदाजा लगा रही है इस गाने का। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि कार्यक्रम सुरीला सफर है सुपर हिट। साथ ही दूसरे हमारे अगले जो श्रोता हैं वो कह रहे हैं कि रक्षाबंधन सिर्फ एक साधारण धागा नहीं बल्कि यह भाई बहन के बीच अटूट विश्वास, अगाध स्नेह और जीवन भर एक दूसरे की रक्षा करने का संकल्प और साथ निभाने का पवित्र बंधन है। राखी का भाई बहन के बीच पवित्र प्रेम और एक दूसरे पर अटूट विश्वास को दर्शाता है। जब बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है तो भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की भी कामना करती हैं और भाई उसकी रक्षा करने का वचन भी देता है। बिल्कुल सही।

जी हाँ श्रोताओं, ये तेरे घर के सामने फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफी की आवाज थी। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीतबद्ध किया है SD बर्मन ने। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि इश्क की मर्ज से त्रस्त और तरस बयां करती दो दिलों की स्पंदित तड़प को रूहानी सरगोशी में दर्शाया गया है। हमारी इबारत के बारे में ये बात कर रहे हैं और कहते हैं कि उनकी मोहब्बत भी कमाल की होती है, जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता। तन्हाई की तड़प भी इम्तिहान लेती है, हुस्नो इश्क की रूहानियत और खूबसूरती की बेजोड़ कानाफूसी फुसफुसाहट में सिमटी इबारत। संगीत में सफर का इंतजार इन्हें रहेगा, ऐसा इन्होंने कहा, जो कि अभी चल रहा है। बिल्कुल, इस इबारत में हम इसी तरह से हमने वाक्यांशों को पिरोया है, जो लगता है कि जैसे कोई प्रेम में त्रस्त व्यक्ति है जो बात कर रहा है, सरगोशी कर रहा है हवा के साथ, रूह के साथ। आपने बखूबी पहचाना है। हमारी एक श्रोता कहती है कि आज की इबारत तन्हाई, मोहब्बत, इंतजार और किसी अपने की आहट की उम्मीद के इर्द गिर्द घूमने का भाव है। रूह और सरगोशी के संवाद के माध्यम से उस मन की बेचैनी दिखाई गई है जो प्रेम की तलाश में है और हर आहट को किसी अपने के लौट आने का संकेत समझता है। एक और श्रोता कहते हैं कि सरगोशी ने जब भी हवाओं के रुख पर अपना नाम लिखना चाहा, रूह की खामोशी ने उसे एक अनकही गूंज की तरह थाम लिया। यह कैसा विरह है जहां दूरियां सिर्फ कदमों की हैं पर धड़कनें एक दूसरे में ही सांस लेती हैं। सदियों लंबा यह इंतजार अब कोई दर्द नहीं बल्कि एक मुकद्दर बन चुका है, एक ऐसा रास्ता जिस पर चलते हुए मंजिल की चाहत भी फीकी पड़ जाती है जब रात के सन्नाटे में यादों की कोई मध्यम लहर छूकर गुजरती है। तो ऐसा लगता है जैसे जिस्म की कोई हैसियत ही ना हो, बस दो अनंत वजूद हैं जो एक दूसरे में विलीन होने के लिए तड़प रहे हैं। यह मिलन की आस नहीं बल्कि उस अधूरी दास्तान की रूहानी मुकम्मलियत है जो सिर्फ महसूस की जा सकती है, लफ्जों में बयां नहीं की जा सकती, इसीलिए तो सरगोशी की जा रही है। हमारे अगली श्रोता कहते हैं कि इस जिंदगी के दूसरे मायने ही हैं इंतजार। यहाँ सबको मन मुताबिक कुछ नहीं मिलता, जो मिलता है उसी से समझौता करना होता है और फिर रह जाता है एक लंबा इंतजार। तुम खास ही नहीं हर सांस में हो, रूबरू नहीं हर एहसास में हो, मिलोगे पता नहीं मगर हर तलाश में हो, तलाश पूरी हो ना हो मगर हर आस में हो। क्या बात है, आपने तो शायरी भी कर दी है। और

फिर बहुत सारी जिंदगियां इंतजार में यूं ही बीत जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, प्रेम में इंतजार तो होता ही है। अगले श्रोता कह रहे हैं कि आज की रूह और सरगोशी की इस अनकहे संवाद ने मन के तारों को छू लिया है। इस भावुक और गहरी इबारत को पढ़कर जो मुख्य शब्द और उन आधारित जादुई गाने जहन में आए, उन्होंने वो गाने भी हमें बहुत सारे लिखकर भेजे हैं। क्या बात है, बहुत सारा काम आपने किया। अगले श्रोता कह रहे हैं कि सच्चा प्रेम केवल किसी एक व्यक्ति के प्रति कोमल नहीं होता, वह हमारे स्पर्श को ही करुणा में बदल देता है। प्रेम में जीने वाला स्पर्श कर सकता है, जकड़ता नहीं। वो आपको छू लेगा पर चोट नहीं पहुंचाएगा, आपको अपने पास रखेगा पर स्वतंत्रता नहीं छीन सकता। प्रेम की असली कसौटी यह नहीं कि हम अपने प्रियतम के प्रति कितने कोमल हैं, बल्कि यह कि हमारी कोमलता उससे आगे समूचे अस्तित्व तक पहुंचती है या नहीं। साथ ही हमारे श्रोता राखी के पर्व के लिए भी हमें बधाइयां दे रहे हैं और विशेष संदेश भेज रहे हैं। राखी पर्व एक त्योहार भाई बहन का बहुत ही पवित्र रिश्ता है, ये हमारे एक श्रोता कह रहे हैं, जो कि रेशम के धागे से बड़े ही प्यार से भाई की कलाई पर बांधती हैं और मिठाई खिलाकर ईश्वर से भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं, इसलिए भाई बहन की हमेशा रक्षा करता है। जी,

0: अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जोशीला से, बताइए किसने गाया है।
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
5: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
4: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
5: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
4: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई। मिला तुरंत पोजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

जी हाँ, इस गीत के माध्यम से भी हम सुन पा रहे हैं कि कितना दर्द है, इंतजार है और तन्हाई है। जोशीला फिल्म का गीत था, आवाज थी किशोर कुमार की, साहिल लुधियानवी के बोल और आर जी बर्मन का संगीत। और हमने आपसे पूछा था कि पर्दे पर किसने गाया है इस गीत को, तो इसका जवाब भी बिल्कुल सही दे रहे हैं आप, देवानंद ने। हमारे श्रोता कह रहे हैं कि इस तन्हा रात के सन्नाटे में जब चांदनी चुपके से आकर जमीन को गले लगाती है, तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी सरगोशी हवा के झोंके बनकर मेरे कानों में कुछ कह रही हो। विरह की इस खामोशी में यादों का एक हंसी कारवा चलता है, जहां आंखों में इंतजार के अश्क तो हैं पर दिल में एक रूहानी सुकून भी है। ऐसे ही हमारे अगले श्रोता कह रहे हैं कि सरगोशी, क्योंकि शायद दूर कोई और भी तुम्हारी तरह आप ही बेकरार है और दोनों के बीच बस एक खामोश रास्ता है जिस पर किसी एक कदम की आहट का इंतजार है। ये जो पंक्तियों के बारे में इन्होंने बात की है, ये भाव इन सुंदर लाइनों से मिलता जुलता इन्होंने कुछ गीत हमें लिखकर भेजा है कि खामोशी फिल्म का गीत है शायद, कि तुम पुकार लो तुम्हारा इंतजार है। आप अंदाजा तो लगा रहे हैं कम से कम, ये बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे ही हमारे अगले श्रोता कह रहे हैं कि आज इतने लंबे संवाद आलेख को कुछ पंक्तियों में पिरोने की कोशिश की है, शायद इस भाव को समझ सके। तन्हाई की दीवार पर उम्मीद की तस्वीर बनाते हैं, एक तेरी आहट के लिए हम खुद को सजाते हैं। इस खामोशी में छुपा है सदियों का इंतजार, हम आज भी हर सांस में सिर्फ प्यार जगाते हैं। क्या बात है? एक श्रोता कहते हैं कि प्रेम में जब किसी एक के साथ गहराई से जुड़ता है, तब उसके लिए संसार केवल एक बाहरी भीड़ नहीं रह जाता, वह कोमल अनुभूति के साथ आंतरिक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाता है। यहाँ उसकी चेतना और संवेदनाएं विस्तार से नहीं, गहराई से जीने लगती है। प्रेम दो में पूर्ण हो जाता है, या दो केवल शरीर का मिलन नहीं बल्कि दो अस्तित्वों के बीच सेतु है, जहाँ व्यक्ति पहली बार स्वयं को किसी और में प्रतिध्वनित होता हुआ अनुभव करता है। यह अनुभव होने लगता है कि जो रिक्तता संसार भर से नहीं भरी, वह किसी एक उपस्थिति से भर जाएगी शायद।

हमारे पूछे सारे सवालों के जवाब भी आपने बिल्कुल सही हम तक पहुंचाए हैं। सभी जवाब हमें मिल गए हैं। बहुत धन्यवाद आपका इन संदेशों के लिए।

एक श्रोता कह रही हैं कि रू के किसी खामोश कोने में आज भी तुम्हारी सरगोशी की वह धीमी सी आहट गूंजती है जो हवाओं में घुल मिलकर मेरे पूरे वजूद को भिगो जाती है। यह विरह और इंतजार का सफर अब थकाता नहीं है बल्कि हर सांस के साथ तुम्हारा एहसास और गहरा कर देता है। दूरियों के इस धुंधलके में भी सुकून का एक दिया जलता रहता है क्योंकि फासले सिर्फ जिस्मों के बीच होते हैं, रूहों के दरमियान नहीं।

एक श्रोता हैं जो अपनी बहन को याद कर रहे हैं। आज से 5 वर्ष पूर्व उनकी बहन का स्वर्गवास हो गया था, तो आज का त्यौहार वो कुछ उदासी में ही मना रहे हैं, ऐसा वो हमारे साथ साझा कर रहे हैं। और रक्षाबंधन का त्यौहार है, एक श्रोता कह रही हैं कि मैं दूर देश में बैठी हूँ, मेरे 3 भाई लोग लखनऊ में हैं, 2 बहनें हैं, वे सब आज मिलेंगे और राखी भी बांधी जाएगी त्यौहार पर, सब भाई बहन होंगे, मैं आज तन्हाई में इतनी दूर बैठी हूँ, बहुत बुरा लग रहा है। फ़ोन पर तो विश कर दिया है पर वो बात नहीं, बिल्कुल दूरी है तो त्यौहार की वो बात कैसे महसूस हो सकती है। हम समझ सकते हैं कि आपको कैसा महसूस होता होगा। फिलहाल लेकर चल रहे हैं आपको अगले गीत की ओर। ऐसा लगता है कि तन्हाई भरा सफर हो रहा है, कहीं दूर ही निकल जाएं तो कैसा रहेगा।

दूसरा आदमी इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की आवाजें थी, मजू सुल्तानपुरी के बोल और राजेश रोशन का संगीत। इस गीत के साथ हमने कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछा था, लेकिन क्या कोई जरूरी है कि हर गीत के साथ कोई प्रश्न पूछा जाए? क्यों ना उस गीत का ही आनंद उठाया जाए।

क्योंकि प्रोग्राम का नाम भी तो है सुरीला सफर। संदेश हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे अगले श्रोता का, जो कह रहे हैं कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त भी आपके सुरीले सफर के साथ चल रहा है। आपके हाथों की राखी पोती से बंधवा ली है, क्या बात है, और आपको बहुत बहुत बधाई। कई श्रोताओं ने कई गाने भी लिखकर भेजे हैं, तेरे घर के सामने, तू कहाँ, ये बता इस नशीली रात में, और कई सारे जवाब हमें लिखकर भेजे हैं, क्या बात है।

एक श्रोता कह रहे हैं कि आज सुरीला सफर प्रोग्राम की शुरुआत में आपने रक्षाबंधन का भाई बहन का गीत सुनवाया, हमें बहुत अच्छा लगा और खुशी हुई। आज छुट्टी का दिन और घर पर बच्चों ने भी सुना, आपका धन्यवाद। और आपका भी धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए। एक श्रोता कह रहे हैं कि मोहब्बत का सबसे गहरा रंग शायद इंतजार ही है, वह इंतजार जो आंखों को नम करता है मगर उम्मीद को जिंदा रखता है, और तब एहसास होता है कि सच्चा प्यार कभी दूर नहीं जाता, वह खामोशियों में सुनाई देता है और यादों में महकता है, दिल को यह यकीन दिलाता रहता है कि कहीं ना कहीं कोई और भी उसी मोहब्बत, उसी बेचैनी और उसी इंतजार को अपने सीने में संजोए बैठा है।

एक श्रोता कह रहे हैं कि इतने गीत तो संप्रति याद आ रहे हैं, और भी हो सकते हैं, यानी उन्होंने बहुत सारे गीतों की लिस्ट हमें बनाकर भेजी और इसीलिए वो हमें याद दिला रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि इनमें से कौन कौन से गीत इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, आप सुनते जाइए। तो अब अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं हम पत्थर के सनम फिल्म से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने और संगीत किया है इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और साथ ही संगीत किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। बताइए कि इस गीत में कौन है अभिनेत्री।

ये गीत भी था इंतजार के लिए। और एक श्रोता हमारी कह रही है कि आज तो थीम रक्षाबंधन पर होनी चाहिए थी क्योंकि आज बेहद खुशी का माहौल है, पर कोई बात नहीं, सुरीला सफर में सुरीले गाने बजेंगी तो वह भी माहौल खुशनुमा हो जाएगा। भाई बहनों की थीम रहती तो भाई बहन वाली बात, आज रक्षाबंधन की मिठाइयाँ मिलने वाले नेक उपहार की बात होती। आप बात तो बहुत अच्छी कह रही हैं, लेकिन ये प्रोग्राम थीम बेस्ड नहीं है तो गाने तो सुरीले हमने आपके लिए शामिल किए ही हैं, उन्हीं का आनंद लीजिए। हमारे एक श्रोता ने तो बहुत सारे गीत लिखकर भेजे हैं, हमें उम्मीद है कि आपके द्वारा लिखे गए उन गीतों में से कुछ गीत तो यहाँ हमारी इबारत के जरिए और हमारे गीतों में जरूर शामिल हुए होंगे। जी हाँ, आप हमारे प्रश्न का जवाब भी दे रहे हैं कि क्या था इसका उत्तर, कि हमने पूछा था आपसे प्रश्न कि कौन है अभिनेत्री जो भी गीत आपने सुना। जी हाँ, उसका जवाब आप दे रहे हैं, वहीदा रहमान, बिल्कुल सही जवाब है।

एक श्रोता कह रहे हैं कि फूलों की तरह महकता रहे तेरा जीवन, खुशियों से भरा रहे हर एक पल तेरा दिन। ठीक है, वो हमें दुआ दे रहे हैं और क्या बात है, बहुत अच्छी आपने लिखा है, धन्यवाद। रक्षाबंधन, अगले हमारे जो श्रोता कह रहे हैं कि रक्षाबंधन केवल राखी बांधने का पर्व नहीं है बल्कि प्रेम, सम्मान, सुरक्षा, जिम्मेदारी का संकल्प है, इसकी हार्दिक बधाइयां भी वो दे रहे हैं, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। और एक श्रोता कह रहे हैं कि जब मोहब्बत रूह में उतर जाती है तो वक्त, दूरियां और दूरियों की तन्हाई सब बेमानी हो जाते हैं। रूह की सरगोशी हमें सिखाती है कि सच्चा इश्क जिस्म की चाहत नहीं बल्कि दो आत्माओं का वह पाकीजा मिलाप है जहां शब्द खत्म होते हैं और सिर्फ बेपनाह एहसास बाकी रह जाता है। क्या बात है। और एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की इबारत अध्यात्म, प्रेम, मौसम, विरह, इंतजार को लिए हुए है। इसी तरह हमारी अगली श्रोता कह रही है कि सरगोशियां रूह और खामोशियां मन की गहरी अवस्था, आत्मा रूह आपका वह हिस्सा है जो दिखावे से दूर बिल्कुल सच्चा और पवित्र होता है। खामोशियां बंद जुबान की आवाज होती है, जब मन और रूह की आवाज से ज्यादा साफ सुनाई देने लगती है। अंतरात्मा, कई बार जब आप कोई फैसला लेते हैं तो अंदर से एक धीमी सी आवाज आती है कि क्या सही है और क्या गलत। बिल्कुल। अगला गीत, इबारत में जो वाक्यांश हमने लिया है, मीरा मोहन सी सूरत, वो इसी गीत से है।

समय बस समाप्त ही हो रहा है और इसी को देखते हुए हम ये गीत आपको पूरा नहीं सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम था हीरा, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें थी, इंदिवर की बोल और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। तो आज का सुरीला सफर आपने तय किया है पूजा नारायणिया के साथ, आपके खूबसूरत संदेशों के लिए और हर प्रश्न के उत्तर के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सभी यादों को आपने हमारे साथ साझा किया, उसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ये कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं पर संपन्न होता है।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। वंदे मातरम इस रचना की 150वें वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 43वीं कड़ी।

0: अक्टूबर 1937 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों संगठनों की कार्यकारिणी की बैठकें हुई और उनमें वंदे मातरम पर हुई चर्चा तूफानी रही। लखनऊ में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में बैरिस्टर जिन्ना ने कहा था कि वंदे मातरम ये राष्ट्रगीत, हिंदी ये राष्ट्रभाषा, वर्धा प्रणित विद्या मंदिर शिक्षा योजना, तिरंगा झंडा, ये सभी कांग्रेस के हिंदू राज्य की विशेषताएं हैं जो इस्लाम विरोधी हैं। जिन्ना के इस विवादास्पद बयान के कारण अक्टूबर के अंत में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में इस पर चर्चा हुई और कांग्रेस की महासमिति ने कविश्रेष्ठ रविंद्रनाथ ठाकुर से ही सलाह लेने का निश्चय किया।
1: रविंद्रनाथ ठाकुर बंकिम चंद्र के साहित्य के प्रशंसक थे। वंदे मातरम के प्रति भी उनका अत्यधिक प्रेम था। बंग भंग विरोधी आंदोलन के बाद कांग्रेस की राजनीति से अर्थात स्वतंत्रता संग्राम से भी रविंद्रनाथ कुछ दूर चले गए थे, फिर भी उनके जैसे विचारक देशभक्त व्यक्ति की राय निश्चित रूप से संतुलन बनाए रखने वाली होगी, ऐसा कांग्रेस के सभी गुटों के नेताओं को विश्वास था। जब रविंद्रनाथ ने वंदे मातरम के पहले दो अंतरों को मान्यता देने का विचार रखा, तब रविंद्रनाथ के प्रशंसकों सहित अनेक लोगों को ये आघातजनक लगा था। परंतु इसके लिए रविंद्रनाथ के उस पत्र के सभी विचारों को जानना आवश्यक है। दिनांक 2 नवंबर 1937 को रविंद्रनाथ ने एक वक्तव्य प्रकाशित किया। उन्होंने लिखा,
2: वंदे मातरम ये गीत हमारे देश के लिए राष्ट्रीय गीत हो सकेगा या नहीं, इस पर अब तक बहुत विवाद हुआ है। यह अत्यंत खेद की बात है। इस विषय में विचार करते हुए मुझे एक बात याद आती है कि इस गीत के कवि के जीवन काल में इसे सबसे पहले संगीतबद्ध करने का सौभाग्य मुझे मिला था और कलकत्ता में कांग्रेस के एक अधिवेशन में यह गीत मैंने स्वयं गाया था। इस गीत के पूर्वार्ध में अत्यंत कोमल भावना और श्रद्धा का संगम है, साथ ही हमारी मातृभूमि के सौंदर्य का प्रभाव है। इस कारण इसने मुझे अत्यधिक प्रभावित किया था। इसीलिए ये काव्य जिस पुस्तक आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था उससे इस गीत को अलग करने में मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। मेरे पिताजी के एकेश्वरवादी आदर्शों में समरस होकर भी मुझे इस संपूर्ण गीत के प्रति अत्यंत आदर है। शासकों ने जब हमारी इच्छा के विरुद्ध बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया, तब उस संग्राम की संकटपूर्ण परिस्थिति में इस गीत का रूपांतरण राष्ट्रीय गीत में हो गया। उसके बाद की जिन घटनाओं में वंदे मातरम विजय घोष के रूप में स्वयं स्फूर्त रूप से प्रकट हुआ, उसके पीछे हमारे अनेक युवकों का त्याग है। आज इन सभी घटनाओं का उल्लेख करने का समय आ गया है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है।

0: आनंद मठ के अतिरिक्त वंदे मातरम का स्वतंत्र अस्तित्व है, अपना एक स्थान है। इसकी स्पष्ट कल्पना रविंद्रनाथ ने इस पत्र के माध्यम से दी थी। उनके अनुसार वंदे मातरम के पहले अंतरे का आनंद मठ की कथा वस्तु से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए इस विवादास्पद पृष्ठभूमि में वंदे मातरम इस संपूर्ण गीत पर आपत्ति न लेते हुए उसकी पहली दो कड़ियों को बिना शर्त मान्य करना चाहिए, ऐसा रविंद्रनाथ ने सुझाव दिया था। इस पत्र के प्रभाव से तुरंत हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में वंदे मातरम के पहले दो अंतरों को तुरंत मान्यता दे दी गई। इस अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसका मसौदा स्वयं पंडित नेहरू ने तैयार किया था। पंडित नेहरू लिखते हैं,
1: सभी बातों पर विचार करके कार्यकारिणी ने ये तय किया है कि जब कुछ राष्ट्रीय स्तर की सभाएं और कांग्रेस के अधिवेशन होंगे तब वंदे मातरम इस गीत की पहली दो कड़ियां ही गाई जाएंगी या अन्य कोई आपत्ति रहित गीत यदि सभा के आयोजकों को स्वीकार हो तो वो भी गाया जाए।
0: इस प्रकार आगे से कांग्रेस के अधिवेशनों, सभाओं या बैठकों के समय वंदे मातरम की केवल दो ही कड़ियां गाने की अनुमति दी गई। वंदे मातरम के अतिरिक्त अन्य देशभक्तिपूर्ण गीतों का चयन कैसे किया जाए इसके लिए एक और उपसमिति नियुक्त की गई। उसमें आचार्य नरेंद्र देव, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस का समावेश था। आवश्यक लगे तो इस समिति ने रविंद्रनाथ की सलाह लेनी चाहिए, ऐसा भी तय हुआ।
1: फिर भी कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों में इन सिफारिशों के कारण फूट पड़ गई। प्रफुल्ल चंद्र घोष और राजकुमार चक्रवर्ती ने इसके विरोध में एक प्रस्ताव रखा, वो 20 के मुकाबले 60 मतों से खारिज कर दिया गया। उस पर चर्चा तो हो ही नहीं सकी। कांग्रेस कार्यकारिणी के इस प्रस्ताव पर चारों ओर से आलोचना होने के कारण पंडित नेहरू और अन्य सदस्यों को इस आलोचना का उत्तर देते हुए कठिनाई हो रही थी। कांग्रेस यानी मुस्लिम लीग की अनुनय विनय करने वाली संस्था है, ऐसी धारणा लोगों के मन में पक्की होने का डर तो था ही, परंतु इससे मुस्लिम लीग का भी समाधान कितना होगा इसका संदेह था, और यह संदेह सही भी साबित हुआ। मार्च 1938 में जिन्ना ने नेहरू को लिखे एक पत्र में स्पष्ट रूप से कहा कि वंदे मातरम का राष्ट्रीय सभा द्वारा मंजूर किया गया भाग भी राष्ट्रगीत के रूप में मुस्लिम धर्मावलंबियों को मान्य नहीं होगा, इसलिए कांग्रेस की कार्यकारिणी द्वारा लिए गए निर्णय से गीत का विरोध करने वाली मुस्लिम लीग का तो समाधान हुआ ही नहीं, परंतु आम लोगों के मन में वंदे मातरम के प्रति जो आदर भाव है उसे कांग्रेस द्वारा जरा भी महत्व नहीं दिया जाता, ऐसी आलोचना होने लगी। अब तो मुस्लिम लीग ने पूरे गीत को ही हटाने की मांग की थी।
0: इसी दौरान अप्रैल 1938 में महात्मा गांधी ने जिन्ना से 3 घंटे तक चर्चा की थी। पिछले वर्ष की 14 मांगों के अलावा जिन्ना ने जो 6 और मांगे रखी उनमें से 4 मांगे हिंदुओं की दृष्टि से तो भड़काऊ ही थीं। मुसलमानों को गोमांस खाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उर्दू को भारत की राष्ट्रभाषा बनाया जाए, तिरंगे झंडे को बदला जाए या मुस्लिम लीग के झंडे को तिरंगे झंडे के बराबर मान्यता दी जाए। इन 3 मांगों के साथ वंदे मातरम को जो राष्ट्रगीत का स्थान प्राप्त है उसे समाप्त किया जाए, ये 4th मांग थी। ऐसी परिस्थिति में मुस्लिम समाज के कुछ विचारक वंदे मातरम के विषय में सकारात्मक भूमिका लेकर जिन्ना के विरोध में अपने विचार रख रहे थे।

आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की 43वीं कड़ी। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचन स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग समृति नाइक और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक

0: लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर और भारत के वेलविन सेंथिल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को सुलभ बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है और सीमा के दोनों तरफ 1545 लोग लापता हैं। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने प्रभावित जिलों में 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। एक रिपोर्ट।
2: भोटेकोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है। इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है, इससे बचाव कार्यों में बाधा आ सकती है। इस बीच आज चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में बाढ़ की नई चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने त्रिशूली क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया है। नेपाल पुलिस ने बताया कि तिब्बत की ओर स्थित एक बांध फिर टूट गया है। वहां के निवासियों और सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में फंसे 290 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उनका पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं। खोज और बचाव कार्यों में सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात कर उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल अमेरिका की उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर से टेलीफोन पर बातचीत की। अमेरिका ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 5 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है। श्रीलंका ने भी नेपाल को 10 लाख अमेरिकी डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इस बीच नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार में गंडक नदी से बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। बुधवार रात गंडक नदी के जल प्रवाह में बढ़ोतरी के बाद अब इसमें लगातार कमी दर्ज की जा रही है। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि फिलहाल गंडक नदी में जल प्रवाह सामान्य है। उन्होंने कहा कि नेपाल की भोटेकोशी, त्रिशूली और नारायणी नदियों से होते हुए पानी के गंडक तक पहुंचने के दौरान जल प्रवाह की गति कम हुई है, जिससे बिहार में इसका प्रभाव भी कम हो गया है। श्री चौधरी ने बताया कि के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। जल संसाधन विभाग की टीमें तटबंधों की 2400 घंटे पेट्रोलिंग और निगरानी कर रही हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें भाखड़ा नांगल बांध की दीवार 1.77 इंच झुकने का दावा किया गया है। वीडियो में कहा गया है कि बांध में दरार आने से दिल्ली सहित कई शहरों में बाढ़ आ सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि बांध के तनाव, खिंचाव, छिद्र दाब और रिसाव के सभी मापदंड निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं और बांध पूरी तरह सुरक्षित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के

0: दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेफ के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
2: अपनी 2 दिनों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद में शास्त्री मेमोरियल जाने की उम्मीद है। ताशकंद शहर में शास्त्री स्ट्रीट पर भारत के तीसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के सम्मान में एक कांसे की प्रतिमा स्थापित की गई थी। 1976 में शुरू हुए इस मेमोरियल को स्थानीय उज्बेक मूर्तिकार याकोव शापिरो ने डिजाइन किया था। ताशकंद आने वाले भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर जाने की भी उम्मीद है। ये सेंटर भारतीय साहित्य, खासतौर पर हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के इतिहास और विकास पर एकेडमिक रिसर्च करता है और उज्बेकिस्तान और भारत के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने ISI समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिल्ली के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। दंपति पर 2024 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स के लिए काम करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार दंपति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। इसमें भारतीय सिम कार्ड खरीदना और उन्हें पाकिस्तान भेजना शामिल था। भारत में सिम कार्ड खरीदने के लिए दिल्ली के स्थानीय लोगों को भर्ती किया गया था। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू की है। चेन्नई, कोलकाता, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, वाराणसी, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, जम्मू और अमृतसर जैसे अन्य प्रमुख उपभोग केंद्रों तक भी प्याज की आपूर्ति की जा रही है। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। भारत में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार 9 अतिरिक्त रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। परमाणु ऊर्जा भारत के विकास पथ का एक महत्वपूर्ण घटक बनकर उभरी है, जो न केवल बिजली उत्पादन बल्कि स्वास्थ्य सेवा, कृषि और विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में भी योगदान देती है। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNewsHindi को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। रक्षाबंधन का त्योहार आज देश भर में मनाया जा रहा है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रक्षाबंधन का महत्व भाई बहन के रिश्ते से कहीं आगे है। उन्होंने कहा कि राखी का पवित्र धागा परिवार के सदस्यों, मित्रों और यहाँ तक कि पेड़ों को भी बांधा जा सकता है, जो प्रेम

0: और देखभाल के बंधन का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए बच्चों से पौधों और पेड़ों की देखभाल करने का भी आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि रक्षाबंधन प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के सुंदर बंधन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्योहार सभी के बीच स्नेह और सद्भाव के बंधन को मजबूत करने तथा खुशहाली और समृद्धि का पर्व है। पंजाब में जेल विभाग ने आज कैदियों को भाई बहनों के बीच प्रेम और सम्मान का त्यौहार रक्षाबंधन मनाने की अनुमति दी है। विभाग ने सुरक्षा संबंधी नियमों का ध्यान रखे जाने की पूरी व्यवस्था की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता महात्मा अयंकाली की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि महात्मा अयंकाली ने अपना जीवन शोषितों के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष करने में समर्पित कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी महात्मा अयंकाली और श्री नारायण गुरु की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि महात्मा अयंकाली को एक अग्रणी समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री नारायण गुरु की आध्यात्मिक समझ और समानता तथा मानवीय गरिमा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने लोगों को भेदभाव से ऊपर उठाया। मौसम विभाग ने उड़ीसा और बिहार में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज हवाओं के साथ आंधी की संभावना है। कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी कल तक ऐसे ही मौसम का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 1 सितंबर तक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी है। भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार आज रात पीएसए बुडापेस्ट स्क्वॉश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। कल रात सेमीफाइनल में सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 2026 डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। प्रतियोगिता अगले महीने ब्रसल्स में आयोजित होगी। नीरज ने रैंकिंग में 12 अंक हासिल किए। उन्होंने जून में दोहा मीट में 85.69 मीटर भाला फेंक कर चौथा स्थान हासिल किया था। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में लुसानी मीट में 88.05 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर एफआईएच विश्व कप में पांचवां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1974 में हुए पहले विश्व कप में टीम चौथे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार का पीएसए बुडापेस्ट स्क्वॉश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। और आज रक्षाबंधन के इस पर्व पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी बहनों की ओर से सभी भाइयों के लिए सदाबहार नगमे प्रोग्राम का ये पहला गीत। फिल्म छोटी बहन, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे शैलेंद्र का लिखा ये गाना। संगीतकार थे शंकर जयकिशन और फिल्म थी छोटी बहन। आइए अब सुने चंबल की कसम फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर के ही स्वर में। सायरुद्यानवी के बोल खयाम का संगीत है।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखिए, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
6: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय बॉम्बे टॉकीज 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: फूल बने अंगारे इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: अटक अटक झट पट पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली। गोरी गोरी ग्वाल नक छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलवेली। कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हई ये ने पकड़ी बाह और की अटखेली। भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा। भोली परी हरी बोली।

0: नवरंग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाज में। भरत व्यास के बोलते सी रामचंद्र का संगीत था। विविध भारती से यह कार्यक्रम सदाबहार नगमे।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

बहुत मुश्किल है दोस्तों ये समझ पाना। कई बार लोगों का मिलना सुहाना लगता है और उन्हीं से मिलते हुए आंखें चुराई जाती हैं। दरअसल ये मोहब्बत का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है, जब हम मिलना भी चाहते हैं और नहीं भी मिलना चाहते। ये अजीब सा दो राहा होता है। बहरहाल आपको हम बता दें, हीर राजा फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज़, कैफी आजमी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। विविध भारती से यह है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। और दोस्तों ये वो नगमे हैं जो हमारी सांसों में बसे हैं, जो हमारी जिंदगी के रास्तों पर हर वक्त साथ निभाते हैं। सदाबहार नगमे प्रोग्राम का सफर सुरीला हो, इसका विविध भारती बाकायदा ख्याल रखती है। चलिए अब अगला गाना सुनते हैं। इसमें भी कुछ ऐसी बात है जहां पर साथ निभाने की बात है, तो सुनते हैं सारंगा फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। भरत व्यास ने इसे बेहद खूबसूरती से लिखा है और धुन बनाई है सरदार मलिक ने। और गाना सुनते हुए जरा याद कीजिएगा कि सरदार मलिक के सुपुत्र हैं जो आज भी फिल्मी दुनिया में खूबसूरत संगीत दे रहे हैं। फिलहाल सुनिए।

सारंगा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में भरत व्यास के बोलते सरदार मलिक का संगीत था। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है हेलो सहेली, बस कुछ ही पलों में।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों, आपको मालूम है हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे जीवन में खुशियाँ किसी बहुत बड़े बदलाव से आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई छोटे छोटे से क्रियाकलाप जो हमारे आसपास ही होते हैं वो भी हमें खुश कर देते हैं। अब जैसे सावन का महीना है तो रिमझिम बरसती फुहारें ये हमें खुश कर देती हैं, और आ रहा है रक्षाबंधन का त्यौहार। इसी दौरान बहुत सारी बचपन की यादों में हम खो जाते हैं, और इन्हीं यादों में हमारे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तो हमारी सखियों की खुशी के कारण क्या हैं, जानते हैं उन्हीं से। बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में हमारी सभी सखियों का, सभी सहेलियों का। स्वीकार कीजिए आपकी दोस्त चंचल वर्मा का नमस्कार, और झटपट हमें कॉल लगाइए। तो ये लीजिए आज का पहला कॉल, सुनते हैं किन सखी ने हमें किया है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सखी, बताइए आपका नाम बताइए, और ये बताइए कि आप कहाँ से जुड़ी हैं हमारे साथ।
1: मैम जी, मेरा नाम दर्शना कुमारी है, हम पंजाब से डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर हरसे मानसर से बोल रहे हैं।
0: अच्छा जी, तो पंजाब का मौसम इस समय कैसा है?
1: गर्मी बहुत है मैडम जी, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है।
0: क्यों, बारिश नहीं है वहाँ पर?
1: नाम ही नहीं ले रही।
0: तो बारिश ना होने से जो उमस है और गर्मी है वो बहुत ज्यादा है?
1: बहुत ज्यादा है मैडम जी।
0: अच्छा, दक्षिणा जी अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या करती हैं।
1: मैं अपनी घर का काम भी करती हूँ और दुकान पे भी काम करती हूँ।
0: तो दुकान पर जो काम करती हैं वो किस तरह का काम होता है आपका?
1: मैडम जी, दुकान पे हम शूज बेचते हैं।
0: शूज बेचते हैं?
1: हाँ जी।
0: आपके अलावा कोई और भी होता है दुकान पर मदद के लिए, जैसे आपके बच्चे हैं या पति हैं?
1: हाँ जी, पति है हमारा, दो भी साथ ही रहता है।
0: अच्छा, और ये बताइए कि आज आपने फोन किया है तो अपनी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम सुनना चाहते हैं मैडम जी मेरा साया फिल्म का।
0: मेरा साया फिल्म का कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का मेरा साया फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते जी।
0: नमस्ते सखी, अपना नाम बताइए, आप कौन बात कर रही हैं?
1: मैं सरिता कुमारी हरियाणा से बोल रही हूँ,
0: हरियाणा में कौन से शहर में रहती हैं आप?
1: जिला हिसार, उकलाना मंडी। जी
0: अच्छा, बताइए आप क्या
1: मैम।
0: करती हैं?
1: जी मैम, हाउस वाइफ हूँ।
0: जी, तो दिन भर में
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-22233।
4: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
5: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
4: हाँ।
5: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
4: हाँ।
5: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
4: हाँ? पता नहीं।
5: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
6: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो, नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते। आप बताइए, आप कौन बोल रही हैं?
1: मैं दिया माँ मुन्ना बात कर रही हूँ मैडम, कर्नाटका से। मैं
0: कर्नाटका की कौन सी सिटी में आप रहती हैं?
1: बेलगाम की सिटी में रहती हूँ मैम।
0: अच्छा, बेलगाम। आपके शहर की कुछ खासियत बताएंगी हमें?
1: हमारे शहर में तो बहुत अच्छा है मैडम, बहुत बड़ी बड़ी मंदिरें हैं मैडम,
0: जी,
1: और बहुत देखने को भी बहुत अच्छा है मैडम जी।
0: और अगर वहाँ घूमने जाएं तो कौन सा मौसम सबसे अच्छा होता है?
1: मैडम बारिश का,
0: बारिश का, यानी कि अभी जो मौसम है ये सबसे अच्छा है
1: हाँ
0: बेलगाम घूमने के लिए।
1: जी मैडम, सबसे अच्छा है।
0: और आप क्या करती हैं?
1: मैं मैडम घर पे रहती हूँ, हाउस वाइफ हूँ।
0: और आज बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं रंग पिक्चर का सुनना चाहती हूँ मैडम, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं।
0: आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत, जो है रंग फिल्म से।
2: तुझे ना

0: अंतराल के बाद हम हाजिर हैं फिर से लेकर अपना कार्यक्रम हेलो सहेली और शुरू करते हैं सखियों से फोन कॉल्स का सिलसिला। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप बताइए कि आप कौन बात कर रही हैं और किस शहर से आप हमारे साथ जुड़ी हैं?
1: मैम, मैं जयपुर से बात कर रही हूँ।
0: जयपुर से?
1: और मेरा नाम कृष्णा सिंह। मैम,
0: कृष्णा सिंह। कृष्णा जी, आप क्या करती हैं?
1: मैम, मैं हाउसवाइफ हूँ
0: जी।
1: मैम, सुबह सुबह तो बस सबका घर वालों का नाश्ता करना, फिर दोपहर को बच्चों को स्कूल खिलाना, और बस यही सारे रूटीन में दिन निकल जाता है। बट मैं आपका शो जरूर सुनती हूँ।
0: अच्छा, ये बताइए कि रूटीन लाइफ हम जी रहे होते हैं तो कभी लगता है कि कुछ थोड़ा सा बदल लिया जाए जो हमें खुशी दे, या वो बदलाव हमें थोड़ी सी एनर्जी दे देता है, तो उस बदलाव के लिए आप क्या करती हैं?
1: मैम, मैं उस बदलाव के लिए कभी कभी खुद के लिए डांस प्रैक्टिस में मुझे बहुत शौक है मैम।
0: हाँ जी,
1: तो मैं वो करना पसंद करती हूँ।
0: वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। अपने को जो काम खुशी दे, वो थोड़ा सा बदलाव लाके जिंदगी में अगर हम कुछ कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। और नृत्य तो वैसे भी एक ऐसी विधा है जो सबके चेहरे पर खुशी ले आती है। बताइए आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: खूबसूरत है वो इतना,
0: रोग फिल्म का खूबसूरत है वो इतना।
1: जी मैम।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का रोग फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: हाँ जी बताइए, आप कौन बात कर रही हैं?
1: मैं पुणे से वंदना पाटिल बोल रही हूँ मैम।
0: जी वंदना पाटिल जी हमसे बात कर रही हैं, और वंदना जी
1: जी
0: हम जानना चाहेंगे कि आप क्या करती हैं।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ मैम।
0: जो एक दिनचर्या रहती है वो कई बार हमें बोर करती है, तो उससे हटने के लिए

0: आप क्या करती हैं, कुछ बदलाव लाती हैं अपनी जिंदगी में जो हटके करते हैं?
1: हाँ, मैं थोड़ा घर का काम भी कर लेती हूँ। बहू जॉब करती है तो घर में काम करती हूँ, बेटी भी जॉब पे जाती है, बेटा जाता है, तो घर में काम भी करके गाना भी सुनती रहती हूँ, काम भी करती रहती हूँ।
0: अच्छा, तो आपकी बहू और बेटी दोनों ही कामकाजी हैं लेकिन आप घर संभाल लेती हैं, इससे उन्हें बड़ा सहयोग मिलता है।
1: जी मैम,
0: तो ये बहुत अच्छा काम है और इस तरह से परिवार में तालमेल और संतुलन भी बना रहता है कि अगर
1: जी
0: एक स्त्री घर की काम के लिए बाहर गई है तो दूसरी स्त्री ने घर संभाल लिया है।
1: जी मैम,
0: वंदना जी, आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप जिस तरह से अपनी बहू बेटी दोनों को सहयोग कर रही हैं।
1: जी मैम, मेरी बहू बहुत अच्छी है मैम, बेटी भी अच्छी है, मेरा जो बेटा है वो भी अच्छा है।
0: देखिए, अगर हम खुद अच्छे होंगे तो सारे लोग हमारे साथ बहुत अच्छे रहते हैं। और आप अपनी बहू और बेटी को बिल्कुल समान नजरिए से देख रही हैं, बहू अगर काम कर रही है तो बेटी भी कर रही है, दोनों में कोई तुलना नहीं है कि आपने कोई भी बड़ा छोटा अच्छा बुरा, ये जब हम नहीं करते हैं ना तो घर में खुशियां अपने आप बनी रहती हैं।
1: जी मैम, और
0: अच्छा,
1: मैं सिंगल मदर हूँ, बच्चे मेरे छोटे थे तब से मेरे हस्बैंड गुजर गए हैं मैम।
0: तो ये बहुत बड़ी ताकत है आप उनकी कि आपने अकेले उनको संभाला है, बड़ा किया है और आज इस काबिल बनाया है कि वो घर से बाहर जाकर काम भी कर पा रही हैं आपकी बिटिया।
1: जी मैम,
0: तो बताइए, आज आपको कौन सा गीत सुनवाएं हम?
1: मैम रिम झिम बसे सावन, मंजिल जो फिल्म है ना उसका।
0: मंजिल फिल्म का गाना है रिमझिम गिरे सावन, ये आप सुनना चाहती हैं?
1: जी मैम,
0: तो आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: जी बताइए, आप कौन बात कर रही हैं?
1: जी मैं उत्तर प्रदेश से मीनू जायसवाल बात कर रही हूँ मैम।
0: तो उत्तर प्रदेश में आपने अपने शहर का नाम नहीं बताया।
1: जी मैम मैं यूपी सुल्तानपुर से बात कर रही हूँ मैम।
0: हाँ जी, सुल्तानपुर से बात कर रही हैं।
1: हाँ जी मैम, मेरा छोटा सा शहर है मैम। मैं ब्लाइंड हूँ मैम। जी मैम, और मैं बैचलर हूँ मैम।
0: अच्छा।
1: मैं बैचलर हो चुकी हूँ। जी मैम, मतलब आपके सारे प्रोग्राम्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मैम। और आपका प्रोग्राम एक सुरसंगम आता था इलाहाबाद से, आकाशवाणी इलाहाबाद से,
0: जी
1: तो मैम मैंने उसमें दो तीन रिकॉर्डिंग की भी थी, बट मेरा हो नहीं पाया मैम।
0: अच्छा, आपने जब आई थी रिकॉर्डिंग के लिए तो आपने क्या किया था? मतलब कोई कविता पाठ किया था, गाना गाया था?
1: मैंने अवधि लोकगीत गाए थे मैम।
0: तो आज हमें सुनाइए अवधि लोकगीत।
1: जी मैम।

0: मैंने यही गाया था जी।
1: ये कजरी है, बहुत सुंदर गाई आपने।
0: मैम
1: मुझे बताइए मीनू जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मैंने लैला मजनू का आसमां वाले तेरी दुनिया से भी घबरा गया।
1: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत, आसमां वाले तेरी दुनिया से जी घबरा गया।

0: सखियों अंतराल हुआ पूरा और फिर से हम जुड़ जाते हैं अपनी सखियों के साथ और सुनते हैं वो क्या कहना चाहती हैं। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, बताइए कौन सी सखी बात कर रही हैं?
1: मैं मालती बोल रही हूँ दीदी, झांसी से।
0: झांसी एक ऐतिहासिक शहर है, वहाँ से आप बात कर रही हैं।
1: हाँ दीदी,
0: बताइए आप क्या करती हैं मालती?
1: हाउसवाइफ हूँ दीदी
0: जी।
1: और छोटी सी दुकान खोली हूँ घर में, तो दुकान चलाती रहती हूँ परचूनी की।
0: तो आप तो एक वर्किंग महिला भी हो गई ना, कामकाजी महिला भी हो गई, घर के काम के साथ साथ आप ये दुकान भी संभालती हैं।
1: जी दीदी,
0: तो दुकान पर कितना वक्त आप दे पाती हैं?
1: दुकान पर वो तो घर में है दीदी, तो दुकान भी करती रहती हूँ, घर का भी करती रहती हूँ।
0: अच्छा, घर में ही दुकान कर रखी है इसलिए परेशानी ज्यादा होती नहीं घर को संभालने और दुकान संभालने में।
1: दीदी
0: अच्छा, बाकी का दिन आप जब रेडियो सुनती हैं तो कौन से प्रोग्राम है जो आपको पसंद आते हैं?
1: मुझे तो विविध भारती के सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर सेहतनामा बहुत अच्छा लगता है।
0: सेहतनामा अच्छा लगता है।
1: जी दीदी जी
0: इसमें सेहत से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां आपको मिलती हैं।
1: जी दीदी,
0: फिलहाल गानों की जो झनकार है वो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मुझे दीदी तिरंगा मूवी का गाना सुनना है, आप कहें तो थोड़ा गुनगुना के सुना दो।
0: बिल्कुल, हम सुनना चाहेंगे आपके मुंह से, आप अगर गुनगुना कर बताएंगी तो हमें ज्यादा खुशी होगी।
1: इसे समझो ना रेशम की डोर मैया, मेरी राखी मतलब है प्यार भैया।
0: आपको सुनवाते हैं तिरंगा फिल्म का गीत जिसे आपने अभी हमें गुनगुना कर सुनाया।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
4: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: तो कौन से शहर में रहना आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता था?
6: अच्छा तो मैडम मुझे चंडीगढ़ लगा था। चंडीगढ़ बहुत प्लानिंग सिटी है, बहुत साफ सुथरा सिटी है
5: जी।
6: बहुत अच्छा लगा था।
5: और आपके क्या क्या शौक हैं?
6: मुझे तो खाना बनाने का शौक है और गार्डनिंग करने का शौक है। मेरे घर में पूरे गार्डनिंग करती हूँ मैं, अच्छे से फूल लगाती हूँ बहुत अच्छे से। पूरे छत के बालकनी में आजकल वो गोल्डन टाइप का फूल लटकता है ना, पीला पीला दिखता है।
5: हाँ।
6: पूरा घर ढक गया है मेरा घर फूल से, सब कोई मेरे को पहचानते हैं, वो फूल वाली घर जाना है करके।
5: अरे वाह, ये तो आपने आपकी जो पहचान बना ली है अपनी बागवानी के शौक से, ये बहुत अच्छी है।
6: मैं आर्मी में हस्बैंड के साथ थी ना, तो मुझे वहाँ हम लोग का प्रोग्राम होता है, वेलफेयर से भी होता है ना
5: जी,
6: तो उसमें मैं कुकिंग करी थी तो मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था दानापुर में भी और चंडीगढ़ में भी।
5: जब आपको फर्स्ट प्राइज मिला यानी कि पहला पुरस्कार आपको मिला खाना बनाने के लिए, उस वक्त आपने कौन सा व्यंजन बनाया था?
6: ए, मावा का आता है, चंद्रकला बोलते हैं
5: जी। आपने हमारे कार्यक्रम में आज मिठास घोल दी है चंद्रकला के जरिए, तो अभी हम भी चाहते हैं कि संगीत की मिठास घुल जाए, तो कौन सा गीत सुनवाए आपको?
6: प्यासा सावन का मेघारे मेघारे का जाना है ना, उसको कर दे दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा।
5: आपको सुनवा रहे हैं प्यासा सावन फिल्म का आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: सखी अपना नाम बताइए, कौन बात कर रही हैं?
1: फातिमा मनियार,
0: फातिमा जी, कहाँ से कॉल लगाया
1: नासिक
0: है आपने?
1: महाराष्ट्र।
0: नासिक में आप रहती हैं?
1: हाँ
0: हाँ, तो बताइए आप क्या करती हैं फातिमा जी?
1: मैं टेलर का काम करती हूँ, कपड़े सिलती हूँ।
0: आजकल साड़ियों से बहुत तरह के कपड़े बनाए जाते हैं, इसमें
1: जी
0: प्लाजो भी
1: भाई
0: होते
1: जी,
0: हैं, कुर्ते होते हैं, गाउन होते हैं, और भी कई
1: जी
0: तरह
1: मैम,
0: की पोशाकें बनाई जाती हैं। क्या आपने वैसी कभी पोशाकें बनाई हैं?
1: जी बहन जी। सिर्फ
0: अच्छा बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: तुम मूवी का पहली पहली बार वो गाना सुनना है।
0: पहली पहली बार मोहब्बत की है
1: हाँ
0: आपको सुनवा रहे हैं, पहली पहली बार।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सहेली, अपना नाम बताइए।
1: नमस्ते जी, मेरा नाम है भगवती सोलंकी और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ।
0: दिल्ली हमारे देश की राजधानी, वहां से आपने कॉल लगाया है।
1: हाँ जी,
0: तो बताइए भगवती जी, आप क्या करती हैं, आपके शौक क्या क्या हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ और
0: जी
1: मेरे शौक तो बहुत है, बागवानी करना, म्यूजिक सुनना और थोड़ा भजन वगैरह गाना, मतलब हमेशा अपने आप को बिजी रखना।
0: बिल्कुल, अपने आप को जब हम व्यस्त रखते हैं तो बहुत सारी फिजूल की बातों से हम बचे रहते हैं, और कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, तो वो
1: हाँ
0: चीज़
1: जी,
0: कभी नहीं हो पाती है। अपनी जो
1: हाँ
0: व्यस्तताएं
1: जी,
0: हैं ये हमें कई बार खुश भी रखती हैं, जैसे आपका शौक है संगीत सुनना। विविध भारती के कौन से कार्यक्रम हैं जो आपको पसंद आते हैं? गीतों के बहुत सारे प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं।
1: हाँ जी। मेरे को तो जैसे सुबह से मेरा प्रोग्राम सुबह चालू हो जाता है, जैसे संगीत सरिता, महा रामायण आती है, फिर संगीत सरिता आती है, फिर भूले बिसरे गीत आते हैं, तो सुबह से प्रोग्राम रसोई में चला लेती हूँ, प्रोग्राम अपना और काम करती रहती हूँ। और 10 बजे के बाद फिर वो जो प्रोग्राम आने लगते हैं, 12 बजे आता है, फिर
0: जी
1: 1 बजे जो आजकल सुरीला चला दिया कर, वो प्रोग्राम भी बहुत ही बहुत अच्छा लगता है। मतलब सबको अपने अपने पसंद करना है कि आज कौन सा प्रोग्राम आना है, किस पे आधारित है।
0: और बहुत सारे
1: ये
0: श्रोता अपने संदेश हमें लिखकर भेजते हैं। आपने कभी संदेश लिखकर भेजे हैं?
1: हाँ, मैं तो लिखती हूँ, जैसे कई बार आप लोग क्वेश्चन करती है ना, तो
0: जी
1: क्वेश्चन का के आंसर भी लिख के भेजती हूँ, और जो अपने मन की जो भावना थोड़ी तो उसको भी लिख देती हूँ कभी कभी, कभी तो शामिल हो जाता, कभी मिस हो जाता, तो कोई नहीं।
0: कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? थोड़ा सा गुनगुना कर बताएंगी तो हमें और भी अच्छा लगेगा।
1: हाँ, जैसा कि मैं अपने पीहर से काफी दूर हूँ, मेरा पीहर जबलपुर में है और मैं दिल्ली में बैठी हूँ, तो
0: तो जब राखी का त्योहार आता है तब खास तौर पर मायके की बड़ी याद आती है।
1: बहुत बहुत मतलब सावन आते ही से समझे याद आ जाता पीहर तो, और
0: और
1: रक्षाबंधन तो बहुत मिस करती हूँ वहां पर जाना।

0: तो मैं तो चंबल की कसम मूवी का है, तो जैसे कि मैं अपने वहां से दूर हूँ तो मैं ये गाना सुनना चाहूंगी, मैं गुनगुना देती हूँ। चंदा रे भैया से कहना, भैया से कहना, बहना याद करे, ओ चंदा रे।
1: भगवती जी, आपको सुनवाते हैं चंबल की कसम फिल्म का आपकी पसंद का ये गीत।

0: इंतजार कर रही हैं कि उनका कॉल लग जाए हेलो सहेली कार्यक्रम में। वे निराश ना हो, अगली बार आपका कॉल जरूर हमसे जुड़ जाएगा। जिन सखियों ने आज हमसे बात की है, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने तक वो हमें कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी हमसे जुड़ने का मौका मिल सके। पूर्व श्रोताओं से हम अनुरोध करते हैं कि मंगलवार को हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वो कॉल ना करें, इससे लाइनें व्यस्त हो जाती हैं। सखियों, अब आपसे मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। हमारे सभी सुनने वालों को हम बता दें कि हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 400-24662, अन्य नंबर है 28670288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 400-24662। एक और नंबर है 28670288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से, विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं। दीजिए अपनी सखी चंचल वर्मा को इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: नमस्कार, गीतों भरी कहानी में आज प्रस्तुत है अनुपमा श्रीवास्तव की लिखी कहानी 11वां सेकंड। क्या आप बता सकते हैं कि सातवां आसमान क्या होता है? नहीं ना, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, यानी मैं भी नहीं बता सकती।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
4: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
5: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
4: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
5: पर प्रोजेक्ट

0: से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
0: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
3: बहुत अच्छा लगता है बहती नदी के किनारे बैठना, बहते पानी की आवाज सुनना। सोचो कहाँ कॉफी हाउस की किचकिच और कहाँ नदी की कलकल। तुम ही बताओ कहाँ सुकून मिलेगा
4: ये रात।

वाह, क्या सुकून मिल रहा है। आओ आकर देखो जरा इस रोमांटिक और पीसफुल माहौल को। उफ, एक तो हवा के संग ये बाल मुंह पर आ रहे हैं, ऊपर से इतनी चींटियां हैं यहां, पैर में काट लिया है वो अलग। और ये जो सामने पानी बह रहा है ना, इसे देख देख कर लग रहा है जैसे पानी नहीं, मेरा सब्र सुकून ही बहकर सीधे बंगाल की खाड़ी में समाता जा रहा है। ये सब सब उस महाशय की मेहरबानी है। अगली बार जब मासूम सी शक्ल बनाकर कहेगा ना, अरे प्लीज नदी किनारे मिलते हैं, तो मैं सीधे बोल दूंगी कि इतने ही मरे जा रहे हो तो नदी का वॉलपेपर लगा लो, पर मेरा दिमाग चाटने की सोचना भी मत। अब बहुत हुआ, बहुत सुन ली पानी की ये कल कल। अब अगर अगली 2 मिनट में इसके दर्शन नहीं हुए तो मैं सीधे ऑटो पकड़ लूंगी। और अगर कसम से आगे ये महाशय अभी आ जाएं, तो बोल दूंगी, लो भाई।

ये रहा तुम्हारा रोमानी किनारा, अब बैठो यहां और देखते रहो। चलो कोई नहीं, मैं मान गई, पर गलती मेरी ही है ना, मैं आखिर मान क्यों गई? अरे कॉफी हाउस में बैठी होती तो कम से कम एक कॉफी ही पी लेती, यहां तो मुंह सिए बैठी हूं। ठेले वाले से मूंगफली ली थी, वो भी वो शैतान बंदर छीन ले गया। भाई साहब, उस वक्त मेरी ऐसी चीख निकली कि आसपास के दो चार कौवे भी डर कर उड़ गए। अभी तक सांसें नॉर्मल नहीं हो पाई हैं, डर के मारे मेरा दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे बुलेट ट्रेन चल रही हो। पर इन महोदय का कहीं कोई अता पता नहीं है। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, पर मुझे लग रहा है कि मेरी सब्र का फल तो कब का पककर सड़ चुका है। और तो और, अब तो मुझे यह भी लग रहा है कि इस ब्रह्मांड में अगर कोई चीज अंतहीन है तो वो है इन महाशय का 2 मिनट।

हाँ भाई, मैं ही दुनिया की सबसे वेली इंसान हूं जिसके पास बस यही एक काम बचा है कि नदी किनारे इंतजार में कुढ़ते हुए सुकून नाम के तत्व की तलाश करूं। इस सुकून के चक्कर में बंदर मूंगफली ले गया, बाल मुंह में घुसे जा रहे हैं, चींटियां काट रही हैं और खून खौल रहा है। अगर केमिस्ट्री की भाषा में कहूं तो मेरी खीच इस वक्त खतरनाक एसिड बन चुकी है, और जैसे ही वो आएगा ना तो न्यूट्रलाइज यानी खत्म होने के बजाय सीधे ब्लास्ट होगा।

मुझे मालूम है, यही आदत है उसकी। तभी तो मैं सुकृत की बजाय सुकरात कहती हूं उसको। रवैया ही ऐसा है उसका। ज्ञान तो ऐसे बांटेगा जैसे सीधे यूनान से चला रहा हो, पर टाइम पर आने की अक्ल एक पैसे की नहीं है। सच बोल रही हूं, फोन में अगर एक कॉल लायक भी चार्जिंग होती ना तो अभी सुनाती। अरे तुम बस ये बताओ कि मैं ही फालतू हूं क्या? कहा था कि भाई आज नहीं संडे को मिल लेते हैं, आज मुझे जरूरी काम है, अपना लैपटॉप ठीक करवाना है। पर नहीं, लैपटॉप का क्या है, संडे को करा लेना ना प्लीज। उफ, जब ये सुकरात प्लीज कहता है ना तो न जाने क्या मंत्र फिरता है कि मैं मना नहीं कर पाती। पर लो, लूटो नरम दिल होने का मजा, करो इंतजार। सच पूछो तो इस हां कहने की आदत ने ही तो मेरी जिंदगी का रायता बना दिया है। मेरी ही मती मारी जाती है जो पिघल जाती हूं। पर अब और नहीं, मैं यहां जमीन की रजिस्ट्री कराने आई हूं क्या जो हिलूंगी नहीं? और ये सूरज देवता तो जैसे सीधे मेरे माथे पर ही अपना तवा रख कर बैठ गए हैं। अब कसम खाकर कह रही हूं, अगर 5 मिनट के अंदर नहीं आया ना तो वापस चली जाऊंगी सच में।

ये देखो, यहां मारे इंतजार में कुढ़ कुढ़ कर पूरे फेस की शाइनिंग चौपट हो गई, और ये महाशय बड़े टूरिस्ट बने मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं। बड़ी स्टाइल में आंखों पर काला चश्मा और कंधे पर बैग की जगह कैमरा टांगे। सुन रहे हैं आप लोग? दूर से ही उनका वो मंद्र सुर वाला प्लीज हवा में तैरता हुआ चला आ रहा है। पर इस बार मैं अपनी अक्ल पर ताला और कानों में उंगली डालने वाली हूं। आंखों पर काला चश्मा चढ़ाकर भाई साहब खुद को हॉलीवुड का कोई स्टार समझ रहे हैं। और यहां नदी किनारे मेरी हालत तो देखो, इन बिखरे बालों में किसी हॉरर फिल्म की हीरोइन लग रही हूं। मेरा मन कर रहा है कि उसके इस हॉलीवुड वाले स्वैग को इसी नदी के पानी में डुबो दूं। कैमरे का लेंस मुझ पर टिकाए अपनी सुकराती आवाज में सुर तो ऐसे लगा रहा है जैसे संगीत में पीएचडी कर रखी हो। देखो, बताई दे रही हूं, मेरा फोटो मत लो। मैंने अपने गुस्से का पूरा आसमान इस एक वाक्य में उड़ेल देना चाहा, पर लगा कि ठीक से उड़ेल नहीं पाई। ये सुकरात ऐसी बुद्ध मुस्कान फेंक रहा था कि मेरा सातवां आसमान ठीक उसी तरह से सिर के ऊपर से खिसक गया जैसे मुहावरों में पैरों के नीचे से जमीन सरक जाती है। उसका गाना सुर पकड़ चुका था।

आई एम सॉरी सिया, वो दरअसल मुझे ये कैमरा खरीदने की वजह से देर हो गई। जानती हो कितनी दुकानों पर मशक्कत करनी पड़ी तब जाकर मिला है ये मेरा ड्रीम पीस। ये कहते कहते उसने मुझे देखा, लेकिन तुमको इंतजार करना पड़ गया। आई एम रियली सॉरी, अचानक ही प्रोग्राम बन गया ना कैमरा खरीदने का। मेरा गुस्सा फूट पड़ा। क्यों, संडे को नहीं खरीद सकते थे ये? मुझसे तो बड़ी जल्दी कहा था कि संडे को बनवा लेना अपना लैपटॉप। वो मुस्कुरा दिया। हाँ कहा था, पर ये जरूरी था ना, और मेरा लैपटॉप फालतू था, क्यों है ना? नहीं तो किसने कहा फालतू था? देखो सिया, जिंदगी में ना कुछ भी फालतू नहीं होता, बस वक्त के किसी लम्हे में कुछ चीजें ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। उनके जरूरी हो जाने से बाकी चीजों का महत्व घटता थोड़े ही है। किसी को ऐसा लग जरूर सकता है, लेकिन ये बस देखने का फर्क है और कुछ भी नहीं। प्लीज, मैंने भिन-भिनाते हुए हाथ जोड़े, भगवान के वास्ते अब तुम अपनी फिलॉसफी की क्लास मत शुरू करो। अच्छा बाबा सॉरी, फिलॉसफी बंद। उसने ऐसे कहा जैसे वक्त की सारी हड़बड़ी वहीं ठहर गई हो। जेब से रुमाल निकालकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए उसने कहा, पहले चेहरा पोंछो, पसीने से भीगा हुआ है, फिर बच्चों जैसी मासूमियत से। शिकायत करते हुए लहजा बदला, अरे वो दुकानदार भी ना बस अपनी ही धुन में था। एक के बाद एक लेंस बदल बदल कर मेरी तसल्ली परख रहा था, और मेरी जिद बस इतनी सी थी कि आज जब हम इस नदी के किनारे बैठे तो हमारे पास इन गुजरते हुए लम्हों को हमेशा के लिए संजो लेने का कोई मुकम्मल जरिया हो। उसने पूरी सोहबत के साथ कैमरे का रुख मेरी तरफ किया। एक हल्की सी क्लिक की आवाज दरिया के सन्नाटे में गूंज गई, जिसे वक्त ने ठहर कर हमारी गवाही दे दी हो। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए अपना वो ड्रीम कैमरा धीरे से बगल के पत्थर पर रख दिया, जैसे कह रहा हो कि फिलहाल इस ब्रह्मांड में मुझसे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं। वो मेरे ठीक सामने घुटनों के बल बैठ गया, आंखों से वो काला चश्मा हटाया और सीधे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों की वो जानी पहचानी नरमी और वो मध्यम सा सुकराती अंदाज फिर से अपना असर दिखाने लगा था।

इस बीच मेरे मना करने के बावजूद वो मेरी कई तस्वीरें ले चुका था। ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? कोई मूड होता है फोटो वोटो का? अरे बाद में खिंचवाऊंगी किसी दिन। उसने कैमरे का स्क्रीन मेरी तरफ किया। ये देखो कैसा मुंह बना रखा है तुमने। मैंने उसे घूरा। सब तुम्हारी ही कृपा है। आधा घंटे इन बंदरों के बीच वेट करवाओगे तो मुंह नहीं बनेगा तो क्या होगा? बस यही गलत सूत्र तो हमने रट लिया है। इस बार उसने चश्मा हटाकर अपनी बुद्ध मुस्कान फेंकी। ये जरूरी नहीं कि मुंह ही बने, पर क्या करें, हमने इंतजार के पलों को ऐसे ही कुढ़ कुढ़ कर जीना सीखा है। मैं उसी के अंदाज में बोली, यथार्थ महानुभाव, किंतु आप हम सांसारिक जीवों से और क्या अपेक्षा करते हैं? जीने की। ये दो शब्द उसने ऐसे कहे जैसे किसी गीत की लाइन दोहराई हो। तो क्या मैं यहां मर रही थी? दिल पर हाथ रखकर बोलो, जिंदा थी? मैं हंस पड़ी। नहीं, बाय गॉड नहीं थी। अच्छा सुनो, कॉफी हाउस चले थोड़ी देर के लिए? उसने कहा, हाँ श्योर। मैं स्कूटी मोड़ने लगी तो उसने कहा, सुनो सिया। हाँ। पीछे देखो जरा। पीछे क्यों? क्योंकि आगे जाते हुए कभी कभी मुड़कर देख लेना चाहिए पीछे। जब उसने ये वाक्य कहा तब मेरी नजर उसके चेहरे पर नहीं थी, पर मुझे पता था कि उसकी बुद्ध मुस्कान अब पूरे चेहरे पर एक शांत भाव बनकर फैल गई होगी। मैंने हेलमेट हटाकर पीछे देखा और देखती रह गई।

0: यमुना की सांवली लहरों पर ढेरों रंगीन नावों के बीच।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: मैं हंसने

0: लगी। नहीं महाशय, जी तो रही थी पर इस जादू को नहीं, अपने गुस्से को। हाँ, उसने कहा और मैंने स्कूटी स्टार्ट कर ली। वैसे एक बात कहूँ सुकरात, इंतजार करना बड़ी चुभने वाली सजा है। ऐसा लगता है जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो और सीने पर कोई भारी पत्थर रख दिया हो, वो बोला। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त हम जिंदगी को जी नहीं रहे होते, बस उसे किसी के आने तक खर्च कर रहे होते हैं। हमारी नजर सिर्फ घड़ी की सुइयों पर होती है। अगर वो नजर सुइयों से हट जाए तो शायद इंतजार भी एक हिस्सा बन जाए जीने का। हवा अब मेरे बालों को पीछे की तरफ धकेल रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब क्या कर रहे हैं हम? वक्त खर्च कर रहे हैं या फिर जी रहे हैं? अब हम वक्त को साथ लेकर चल रहे हैं सिया, बिना किसी सुई की फिक्र किए। उसने अपना नया कैमरा सहेज कर कंधे पर टांगा और स्कूटी के पीछे वाली सीट पर बैठ गया। हवा अब भी चल रही थी, लेकिन अब वो मेरे बालों को उलझा नहीं रही थी, बल्कि ढलती हुई धूप की नमी को छूकर गुजर रही थी। स्कूटी आगे बढ़ गई, मगर पीछे दरिया के किनारे उस पथरीली बेंच पर धूप और गुस्से की वो दोपहर वहीं छूट गई थी। हम दोनों उस बहते हुए पानी से दूर जा रहे थे, लेकिन मेरे भीतर उस क्लिक की गूंज और उसकी आंखों का वो मध्यम सा ठहराव अभी तक साथ साथ चल रहा था, जैसे वक्त की किसी मुकम्मल किताब में हमारा ये लम्हा हमेशा के लिए दर्ज हो गया हो।
1: कहीं

सूर्यास्त से पहले के सिंदूरी रंग में लिपटा वो पूरा आलम पीछे छूटने लगा। एक दूसरे के पास पास खड़े सटकर बतियाते से लगते उन पुराने मंदिरों के रंगीन झुंड, घाट पर आंख बंद किए बैठे वो लोग, उंगलियों में फिरती हुई वो सुमरनिया, वो हंस गति से थिरकती हुई नावें, वो सांवला पानी, सब कुछ। जैसे ही स्कूटी मुड़ी, यमुना का नजारा नजरों से ओझल होने लगा, मानो उसी नम रुईदार सिंदूरी रंग ने उसे अपने भीतर समेट लिया हो। हम दोनों चुप थे और हमारी उस गुनगुनी खामोशी में केवल स्कूटी के पहियों का संगीत बज रहा था। उसने पूछा, पर हम कॉफी हाउस क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां की कॉफी बहुत बढ़िया होती है और वहां एक अदद डिस्चार्ज फोन को चार्ज भी किया जा सकता है। मालूम है तुमने ऐसे अर्जेंट नोटिस पर बुलाया कि लगा पता नहीं क्या मसला है, तो देखो फोन तक चार्ज नहीं कर पाई। हाँ तो उसमें क्या, कोस तो लिया ना मुझे पूरे आधे घंटे। तुमको कैसे पता मैंने तुम्हें कोसा? जवाब में वो मुस्कुरा दिया। कुछ ही पलों बाद कॉफी हाउस में हम कॉर्नर की टेबल पर जा बैठे। मैं जैसे ही बैग से अपना चार्जर निकालने लगी, उसने झट से छीन कर अपने बैग के हवाले कर दिया। अरे ये क्या, फोन डिस्चार्ज है मेरा, वो हंस दिया। मालूम है तो दो ना, उसने कहा। नहीं। अरे क्यों नहीं, जवाब में उसने मेरी कुर्सी के पीछे खड़े होकर एक और फोटो खींची और बोला, बस नहीं दूंगा अभी तो, कम से कम नहीं। मैं सोचने लगी कि ये बंदा भी ना मुझे कभी समझ में नहीं आने वाला, कभी एकदम से सुकरात टाइप व्यवहार करता है और कभी एकदम सलमान टाइप।

साल भर से जानती हूँ इसे। कॉलेज के सबसे अच्छे दोस्त हैं हम, पर कभी कभी लगता है कि मैं इस बंदे को कभी नहीं जान पाऊंगी। खैर, चार्जर हासिल करने के लिए मैंने एक और कोशिश की, इस बार रिक्वेस्ट वाले मोड में। दे दो भाई प्लीज। क्यों, मैंने झुंझलाकर कहा, क्या बचपना है ये, अब ये भी कोई सवाल हुआ क्यों? अरे कोई जरूरी मैसेज हुआ तो? क्या जरूरी मैसेज हुआ तो? अरे अगर कुछ घंटे गैजेट से दूर रहोगी तो पिछड़ी हुई नहीं कहलाओगी। इंटरनेट नाम का ये समंदर क्या हाथ लग गया, हम सही गलत, झूठ सच, असली नकली, सब कुछ डाइजेस्ट करने लग गए हैं। जानती हो मनोवैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? मैंने पलटकर पूछा, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम लोग गैजेट्स को गैजेट्स की तरह नहीं, इंसानों की तरह ट्रीट करने लगे हैं। असहज हो जाते हैं हम उनके बिना, अकेलापन महसूस करने लगते हैं, पर जब कोई पास में हो तो उसके होने को, उसके साथ के उन गुनगुने पलों को हम महसूस ही नहीं कर पाते। और जिंदगी के जादू से भरे कितने ही पलों को यूं ही बीत जाने देते हैं, यूं ही माने अनदेखा। मैंने थोड़ी पर हाथ रखकर उसे घूरा, अच्छा तो तुम्हें ये लगता है कि मुझे गैजेट्स का एडिक्शन है, मुझे लत है इनकी, मैं इनके बिना जी ही नहीं सकती, है ना? नहीं, वो मुस्कुराया, फिर वही बुद्ध मुस्कान, मुझे बस ये लगता है कि ये कुछ पल तुम इन गैजेट्स के साथ नहीं मेरे साथ जियो। मैंने चिढ़कर लापरवाही से कहा, क्यों, कुछ पलों बाद तुम मरने वाले हो क्या? नहीं, पर तुम्हें नहीं लगता कि मरने से बड़ा सवाल ये है कि हम जी रहे हैं या नहीं? जानती हो सिया, मैं कई बार सच में ये सोचता हूँ कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे छूट रहे हैं। मैंने हाथ जोड़े, तुम्हारा तो पता नहीं, पर इस वक्त तुम ना तो मुझे आगे बढ़ने दे रहे हो और ना ही पीछे। वो हंस दिया, धीमी सहज हंसी। अच्छा अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुमने इस प्याला भर कॉफी को जिया या नहीं? बिल्कुल जिया, घूंट घूंट जिया, मैंने कहा, और कॉफी हाउस में बज रहे गीत को संग संग गुनगुनाने लगी।

मैं हैरान थी। पता नहीं क्या हो गया था इस सुकरात को आज, कैसी पहेलियां सी बुझा रहा था। एक तो वहां बंदरों के बीच बैठकर गुस्से में उबलने से पहले ही मेरा दिमाग सेंटर से थोड़ा सरक गया था। उस पर ये दार्शनिक उसे पूरी तरह अपनी जगह से बेदखल करने पर उतारू था। मैं बोली, देखो वैसे भी तुम अक्सर सिर के ऊपर से निकल जाते हो, पर आज तो विशेष तौर पर पल्ले नहीं पड़ रहे हो। वो हंस पड़ा, तो जरूरत क्या है, मत समझो तुम ना, बस कुछ पल के लिए अपनी ये सारी समझदारियां किसी पोटली में बांधकर कहीं दूर पटक दो और अभी बस जियो। और सुनो, एक एक पल को जीना। फिर बोला, अच्छा जरा उधर तो देखो। अरे पीछे नहीं, आगे देखो। हम जहां बैठे थे वहां सामने एक बड़ा सा आईना था। उस आईने में हम थे, माने हमारे प्रतिबिंब। उसने कहा, देख रही हो, ये वर्तमान है, वो पल जिसमें हम तुम हैं। ये पल हमेशा ऐसे ही नहीं रहेगा सिया, लेकिन जानती हो, डूब कर जिया हुआ हर लम्हा कहीं नहीं जाता, वो हमारे अंदर ही कहीं छूट जाता है, कहीं बस जाता है।

हे सुकरात, हो क्या गया है तुम्हें? क्या हो गया है मुझे? उसने मेरा सवाल मुझ पर ही थोप दिया, ऐसे जैसे मैंने कोई बड़ा भारी इल्जाम लगा दिया हो, वो भी झूठा। वो बोला, फोन की वजह से परेशान तुम हो और पूछ मुझसे रही हो कि हो क्या गया है मुझे। मैंने भी कहा, मेरा चार्जर छीनकर खुद जाने क्या जिद लगाए पड़े हो और कह मुझसे रहे हो कि क्या हो गया है मुझे। इस बीच उसने लगातार कई क्लिक कर डाले। ये क्या किए जा रहे हो? गॉड पार्टिकल का परीक्षण कर रहा हूं। अरे यार, कैमरे से फोटो ही खींचूंगा ना। ऐसे नासमझ सवालों की तुमसे उम्मीद नहीं करता मैं। मैंने भी कहा, लेकिन मैं तो तुमसे ऐसी ही अजीबोगरीब हरकतों की उम्मीद करती हूं। क्या करूं, और कोई रास्ता नहीं है ना मेरे पास। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट वाले मोड में आई। अरे यार, क्यों सता रहे हो? लौटा भी दो मेरा चार्जर। अच्छा बाबा, ये लो। उसने चार्जर निकालकर मेरी ओर बढ़ाया, लेकिन मैं जैसे ही लेने को बढ़ी, झट से वापस बैग में ठूंस लिया। नहीं, अभी नहीं। वो लगातार बुद्धू मुस्कान फेंक रहा था। मेरी घूरती हुई आंखों में देखते हुए धीमे से बोला, प्लीज। लो, फिर वही मारक मंत्र। चिर को साइड में रखकर मैं मुस्कुरा दी। ये क्या सस्पेंस लगा रखा है सुकरात? उसने पूछा। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा ये सस्पेंस? उसने स्कूटी स्टार्ट कर दी। बोला, चलो बैठो। बैठोगी ना? और कोई ऑप्शन है मेरे पास? मैंने कहा। अच्छा भाई, इतना तो बता दो कि हम जा कहाँ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सच कहूं तो मुझे भी नहीं मालूम। मैंने कहा, क्या? पर क्यों? वो बोला, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जिंदगी को हर बार प्लान बनाकर दौड़ाया जाए। सिया, कई बार जिंदगी के सबसे अच्छे पल वो होते हैं जिनकी आहट हम सुन नहीं पाते, जो दिखाई ना दें। कभी कभी वही सबसे ज्यादा खूबसूरत होते हैं महसूस करने के लिए। उसने एक गहरी सांस ली। महसूस करो सिया, सांसों में घुलती ये हवा, आंखों में ठहरी ये शाम, और मेरे पास बैठी हुई ये तुम। मैंने कहा, तुम तो सच में बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हो। उसने चहक कर कहा, मैं चाहता हूँ कुछ पल के लिए तुम भी बच्ची बन जाओ। नहीं भाई, मुझे तो माफी करो तुम। पहले ही इतनी मुश्किल से तो बड़ी हुई हूँ डांट खा खा कर। अब इतिहास नहीं दोहराना चाहती। इस बात पर दोनों

शहर की परिधि से दूर उस हरे जंगल में धंसते हुए हम वहां चले जा रहे थे जहां ढलती शाम के बावजूद धरती का धानी रंग गहराया नहीं था।

उसने कदम के घने पेड़ों के बीच ले जाकर स्कूटी रोक दी, जहां और भी बहुत सारे पर्यटकों ने अपनी स्कूटी अपनी गाड़ियां पार्क की हुई थी और ढेर सारी फोटो ली और बोला, इन पेड़ों को गौर से देखो सिया, जिनके बीच से होकर हम गुजर रहे हैं। पहियों के इस संगीत को सुनो, जो हमारी रफ्तार के संग लय बदलते हुए बज रहा है। इन लोगों को, इन नजारों को, इन आंखों को, इन मुस्कानों को, इन उदासियों को, हर चीज को जी लो, जी लो, क्योंकि हर लम्हा बीत रहा है, कभी ना लौटने के लिए बीत रहा है। मिट्टी, खेत, धुआं और मूंगे जैसे रंग में खोया हुआ ये पूरा आलम, हम दोनों वहीं बैठ गए। लग रहा था जैसे धरती हरे रंग में घुल गई हो। कहने को आसपास और भी बहुत सारे लोग थे, पर उस ढलती शाम में साथ की धूप को इस तरह जीने वाले शायद हम ही थे। सुकरात धीमे से बोला, तो कैसा लगा? मैंने सामने देखा, जैसे न नीचे धरती हो न ऊपर आकाश, जैसे मैं, जैसे हम उस सांवलाती हुई सूरज की नारंगी रेखा में समा गए थे। मैंने कहा, जो दिखाई ना दे, कभी कभी वही सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है महसूस करने के लिए। वो मुस्कुराया, तो ये लो अपना चार्जर। साथ में स्कूटी की चाबी भी थी और उसका वो ड्रीम पीस, वो नया चमकता हुआ कैमरा, जिसके लिए कुछ ही घंटे पहले उसने शहर की कितनी ही दुकानें छानी थीं, वो अब उसके गले में नहीं बल्कि सामने पड़ी एक लकड़ी की बेंच पर रखा था। एक मिनट, तुम होश में तो हो? हे सुकरात, अपना नया कैमरा तुम यहां छोड़कर जा रहे हो? मुझे गाढ़ी हैरत में डाल वो दो घड़ी बस मुस्कुराता रहा, फिर बहुत हौले से बोला, यहां नहीं सिया, तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूं। जिंदगी का असली जादू मुट्ठी से फिसलकर जा रहे इस लम्हे में है सिया, मैं तो बस उसी लम्हे को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूं। ये कैमरा अब तुम्हारा हुआ, ये तुम्हें बार बार याद दिलाएगा कि जिंदगी के अदृश्य लेंस में हमारी हर सांस कैद हो रही है, इसलिए मुस्कुराती रहना सिया, और कभी कभी अपने लिए इस भागती दुनिया से ऐसे ठहरे हुए लम्हों को चुराती रहना। वो मुड़ा और धीमे कदमों से चलता हुआ लोगों की भीड़ में आंखों से ओझल होता गया। सिया के सामने कैमरा रखा था, हाथ में चार्जर और स्कूटी की चाबी। उसकी आंखों में नमी थी और होठों पर एक लंबी गहरी मुस्कान। वो हौले से बुदबुदाई, कैमरे की जरूरत उसे थी। दुनिया को कैद करने के लिए लेंस वो ढूंढ रहा था, पर सच पूछो तो वो मेरी आंखों में हमेशा के लिए जिंदगी का मुकम्मल फ्रेम उतार गया। सुना है लोग वक्त को मुट्ठी में कैद करने की कोशिश करते हैं, पर आज समझ आया कि जब हम टिक टिक करती घड़ियों के शोर से दूर बस इसी पल में आकर ठहर जाते हैं, तो हम वक्त के कैदी नहीं, खुद वक्त बन जाते हैं। थैंक यू सुकरात, मुझे वक्त के पीछे भागना नहीं, उसके संग जीना सिखाने के लिए।

गीतों भरी कहानी इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अनुपमा श्रीवास्तव की कहानी 11वां सेकंड। वाचक स्वर आरती श्रीवास्तव का था, संपादन सहयोग सौरभ धारू का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राघवेंद्र नेगी।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण FM 103.7 MHz पर। यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 5 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

सपनों को उड़ान देनी है तो हौसलों को जगाना होगा। मुश्किलें चाहे जितनी हो कदम आगे बढ़ाना होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना युवा कार्यक्रम युववाणी, जहां होती है युवाओं की बातें, सपनों की बातें और उन मुद्दों की बातें जो हमारी जिंदगी से सीधे जुड़े हैं। मैं हूं आपकी होस्ट नेहा नारायण सोनी और आज फिर हाजिर हूं एक नए विषय, नई सोच और नए जोश के साथ। तो तैयार हो जाइए कुछ नई बातें जानने के लिए, कुछ अच्छा सीखने के लिए और साथ साथ सुनने के लिए शानदार गाने भी। तो सबसे पहले बात करेंगे आज के खास दिन की, जो कि है रक्षाबंधन। दोस्तों, रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति और पारिवारिक परंपराओं से जुड़ा एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। हिंदू परिवार व्यवस्था में भाई बहन का रिश्ता केवल खून का रिश्ता नहीं बल्कि प्रेम, जिम्मेदारी, सम्मान और पारिवारिक संस्कारों का प्रतीक माना जाता है। राखी का ये छोटा सा धागा भाई बहन के बीच जीवन भर के स्नेह और विश्वास की याद दिलाता है। परंपरागत भारतीय परिवारों में भाई को परिवार की जिम्मेदारियों और बहन की सुरक्षा का महत्वपूर्ण दायित्व निभाने वाला माना जाता है। वहीं बहन को स्नेह, आशीर्वाद और परिवार को जोड़कर रखने में योगदान के लिए भी विशेष माना जाता है। रक्षाबंधन इसी पारिवारिक भावना

को मजबूत करने का एक अवसर है। इस दिन भाई बहन की कलाई पर या भाई यानी कि बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तिलक करती है और उसके सुख समृद्धि की कामना करती है, जबकि भाई बहन के सम्मान और सुख की रक्षा का संकल्प लेता है। इससे जुड़ी बातें हम और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं भाई बहन का ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन।

0: देखो।
1: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
2: दोस्तों, हम इस गाने से पहले बात कर रहे थे कि आज रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति और पारिवारिक परंपराओं से जुड़ा एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। हालांकि समय के साथ परिवारों की जीवन शैली में बदलाव आया है। संयुक्त परिवारों की जगह कई जगह छोटे परिवारों ने ले ली है और भाई बहन पढ़ाई तथा नौकरी के कारण अलग अलग शहरों में रहने लगे हैं। इसके बावजूद रक्षाबंधन रिश्तों को फिर से जोड़ने और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर देता है। आज भी भारतीय परिवारों में इस त्योहार की पारंपरिक भावना कायम है, लेकिन इसका अर्थ और व्यापक हुआ है। भाई बहन एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होने, परिवार के संस्कारों को आगे बढ़ाने और एक दूसरे के सम्मान की रक्षा करने का संकल्प ले सकते हैं। रक्षाबंधन हमें याद दिलाता है कि आधुनिक जीवन कितना भी बदल जाए, परिवार संस्कार और अपनों के प्रति जिम्मेदारी का महत्व कभी भी कम नहीं हो सकता। राखी का धागा इसी मजबूत पारिवारिक बंधन और पीढ़ियों से चली आ रही भारतीय परंपरा का प्रतीक है। दोस्तों, इस गाने के बाद हम बात करेंगे 25 अगस्त से 8 सितंबर तक होने वाले राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के बारे में, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

नमस्कार। संस्कार, संस्कृति और आधुनिक शिक्षा का अनूठा संगम, सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़, छात्र एवं छात्राओं दोनों के लिए वैदिक पढ़ाई का एकमात्र संस्थान, राजस्थान का पहला बालिका वेद विद्यालय भी यहीं संचालित होता है। छात्र छात्राओं के लिए पूरी

मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करना और दृष्टिहीनता से जूझ रहे लोगों के जीवन में रोशनी लाने के लिए प्रेरित करना है। नेत्रदान का अर्थ है मृत्यु के बाद आंखों के उपयोगी हिस्से विशेष रूप से कॉर्निया का दान करना। कॉर्निया से जुड़ी कुछ प्रकार की दृष्टि समस्याओं वाले जरूरतमंद लोगों को इससे दृष्टि वापस पाने में मदद मिल सकती है, इसलिए नेत्रदान को महादान कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में दान और सेवा को हमेशा ही विशेष महत्व दिया गया है। दोस्तों, अन्नदान, रक्तदान और अंगदान की तरह ही नेत्रदान भी समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी और मानवता की भावना को दर्शाता है। यह एक ऐसा संकल्प है जिसका लाभ किसी दूसरे व्यक्ति को लंबे समय तक मिल सकता है। तो आइए इस राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े पर संकल्प लें, हमारी आंखें किसी और की जिंदगी में रोशनी बने, मानवता की यह लौ हमेशा जलती रहे और देश की संस्कृति को जानने के लिए। दोस्तों, इस गाने के बाद हम बात करेंगे कि देश की संस्कृति को जानने के लिए युवा पर्यटन से कैसे जुड़ सकते हैं। तो उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: दोस्तों, अब बात करते हैं कि देश की संस्कृति को जानने के लिए युवा पर्यटन से जुड़े। ये बात हम कहते हैं क्योंकि भारत विविधताओं से भरा एक देश है। दोस्तों, यहाँ अलग अलग राज्यों की भाषा, पहनावा, खान पान और लोकगीत, लोक नृत्य, कला और परंपराएं हमारी समृद्ध संस्कृति की पहचान है। युवाओं के लिए पर्यटन केवल घूमने फिरने का माध्यम नहीं, बल्कि अपने देश को करीब से समझने और उससे जुड़ने का अवसर भी है। जब युवा किसी नए शहर या गांव की यात्रा करते हैं तो उन्हें वहां की ऐतिहासिक इमारतों, मंदिरों, किलों, संग्रहालयों और स्थानीय कला को देखने का मौका मिलता है। साथ ही स्थानीय लोगों से बातचीत करके वे उस क्षेत्र की परंपराओं और जीवन शैली को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। राजस्थान के लोक नृत्य और हस्तशिल्प से लेकर केरल की पारंपरिक कला और पूर्व उत्तर भारत की जनजातीय संस्कृति तक, हर क्षेत्र भारत की सांस्कृतिक तस्वीर का एक अलग रंग प्रस्तुत करता है। आज सोशल मीडिया के दौर में युवा अपनी यात्राओं के अनुभव दूसरों के साथ साझा करके देश के अलग अलग हिस्सों की संस्कृति और लोकप्रिय बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसीलिए युवाओं के लिए संदेश है, सिर्फ दुनिया को इंटरनेट पर ना देखें, भारत को अपनी आंखों से भी जानें। देश की यात्रा करें और उसकी संस्कृति को समझें और उसकी विविधता पर भी गर्व करें। दोस्तों, हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आइए उससे पहले सुनते हैं ये गीत।

0: सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, अब बात करते हैं कि बायोपिक और ऐतिहासिक फिल्मों का युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, आज के युवा इतिहास को केवल किताबों के पन्नों में ही नहीं बल्कि फिल्मों और डिजिटल माध्यमों के जरिए भी समझते हैं। किसी महान व्यक्ति का जीवन जब फिल्म के पर्दे पर दिखाई देता है तो वह सिर्फ कहानी नहीं रहता बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा बन जाता है। शोध भी बताता है कि भारतीय बायोपिक शिक्षा ऐतिहासिक चेतना, सहानुभूति और नागरिक जिम्मेदारी को बढ़ाने का माध्यम बन सकती है। भाग मिल्खा भाग से मेहनत और संघर्ष, मैरी कॉम से आत्मविश्वास और महिला सशक्तिकरण, दंगल से बेटियों के सपनों को उड़ान देने की प्रेरणा और सुपर 30 से शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने का संदेश मिलता है साथियों। इसी तरह द लेजेंड ऑफ भगत सिंह जैसी फिल्में युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन और देशभक्ति के इतिहास में से भावनात्मक रूप से जोड़ती है। ऐतिहासिक फिल्मों का एक बड़ा फायदा यह है कि वह इतिहास को जीवंत और रोचक बना देती है। जिन युवाओं को इतिहास की किताबें पढ़ना कठिन या उबाऊ लगता है, वह फिल्मों के दृश्य, पात्र और घटनाओं के माध्यम से इतिहास को आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि फिल्म आखिरकार एक रचनात्मक प्रस्तुति होती है। कहानी को रोचक बनाने

के लिए कई बार घटनाओं को बदल, सरल या नाटकीय बनाया जा सकता है। इसीलिए युवाओं को फिल्म को इतिहास का अंतिम सत्य न मानकर किताबों और प्रामाणिक स्रोतों से भी तथ्यों की पुष्टि भी करनी चाहिए। अंत में यही कहा जा सकता है कि फिल्में इतिहास को हमारे सामने ला सकती है, लेकिन इतिहास को सही समझने की जिम्मेदारी हमारी है। पर्दे से प्रेरणा लीजिए, लेकिन तथ्यों की जांच करना भी मत भूलिए। दोस्तों, यहाँ लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और सुनेंगे ये गीत।

दोस्तों ये गाने को आप एंजॉय करिए, लेकिन हमको तो घर जाना पड़ेगा। मैं नेहा नारायण सोनी लेती हूँ आपसे विदा, मुलाकात होगी जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे महिला जगत।

बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं, वो चाहे दूर भी हो तो गम नहीं। अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं, पर बहन भाई का प्यार कभी कम नहीं। जी हाँ, नमस्कार, आदाब सखियों, मैं रईसा महिला जगत कार्यक्रम में आप सभी का दिली खैर मकदम करती हूँ। प्यारी सखियों, हमारा देश अनेक रिश्तों के बंधनों से बंधा हुआ है, जिसमें से एक पवित्र रिश्ता भाई और बहन का भी है, जो प्रेम की एक ऐसी अटूट डोर से बंधा है जिसे चाहकर भी कभी तोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए सखियों, इस पावन पर्व पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सखियों, रक्षाबंधन के दिन राखी का विशेष महत्व होता है। वैसे तो राखी कच्चे धागों से बंधी है, पर जब रक्षाबंधन पर्व के दिन भाई के दाहिने कलाई में बंधती है तो वह बहन का रक्षा सूत्र बन जाती है, जिसमें बहन अपने भाइयों की दीर्घायु की कामना करती हैं और भाई भी जीवन भर अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले रक्षाबंधन के पर्व को राखी का त्यौहार भी कहते हैं। सच कहें तो सखियों, ये पर्व भारत की संस्कृति की खूबसूरती है। तो सखियों, इस संबंध में हम आपसे

0: और भी चर्चा करेंगे, पर अभी लेंगे शॉर्ट ब्रेक।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
4: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
0: ब्रेक के बाद महिला जगत प्रोग्राम में आपका स्वागत है। प्यारी सखियों, रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का त्यौहार है। ये सिर्फ एक धागा नहीं, एक वचन है। आज के समय में ये रक्षा सिर्फ मुश्किल से बचाने की नहीं, बल्कि सम्मान और साथ देने की भी है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण की उंगली सुदर्शन चक्र से कट गई, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगलियों पर बांध दिया था। उसी का कर्ज चुकाने के लिए श्री कृष्ण ने चीरहरण के समय द्रौपदी की रक्षा की। तभी से ये त्यौहार रक्षा के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। आज रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन तक सीमित नहीं रहा, अब राखी देश के सैनिकों को, पुलिस वालों को और उन सभी को बांधी जाती है जो हमारी रक्षा करते हैं। रक्षाबंधन हमें सिखाता है कि रिश्ते खून से नहीं, प्यार और भरोसे से बनते हैं। यह त्यौहार हमें याद दिलाता है कि एक बहन का होना किस्मत की बात है। किसी ने भाई बहन के इस त्यौहार पर खूब ही कहा है कि तेरी रक्षा मैं करूंगी, मेरी रक्षा तुम करना, तेरे साथ मैं चलूंगी और मेरे साथ तुम चलना। राखी का ये बंधन प्यारा, इस बंधन को बांधे रखना, टूटे ना रिश्तों का धागा, मजबूत अपना इरादा रखना। जब मैं तुमसे रूठ जाऊं तो तुम मुझे मनाना, जब जब मैं रोऊं तुम मुझे हंसाना, मेरे भैया दूर ना जाना, मुझसे तुम राखी बनवाना। तो इस प्रकार से सखियों, राखी का पर्व वाकई में बहुत ही खास त्यौहार है। तो चलिए सुनते हैं अब इसी पर आधारित बंधन फिल्म का ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू की आवाज़ में बंधन फिल्म का ये गीत। प्यारी सखियों, संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक भाषा है। इसे देव भाषा और सभी भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। इसी के महत्व को समझाने और युवाओं को संस्कृत से जोड़ने के लिए हर साल विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। सखियों, विश्व संस्कृत दिवस हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा का दिन इसलिए चुना गया सखियों क्योंकि इसी दिन हमारे ऋषि मुनि वेदों का अध्ययन शुरू करते थे और इसी दिन रक्षाबंधन भी होता है। और पहली बार ये दिन 1969 में मनाया गया था। इस साल 2026 में ये दिन आज 28 अगस्त को मनाया जा रहा है। इस संबंध में सखियों हम आपसे और भी बातें करेंगे, अभी लेंगे ब्रेक।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
0: सखियों, अगर हम संस्कृत दिवस के महत्व की बात करें तो संस्कृत एक भाषा नहीं, हमारी संस्कृति है। हमारे चार वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, भगवद गीता सब संस्कृत में ही लिखे गए।

हैं। एक बात आपको बताए सखियों, नासा के वैज्ञानिकों ने भी माना है कि कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा संस्कृत है। आज के समय में लोग अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं और अपनी इस अमूल्य भाषा को भूल रहे हैं। ये दिवस हमें याद दिलाता है कि अपनी जड़ों को मत भूलो। संस्कृत में जो कहा जाता है वही लिखा जाता है। इसका व्याकरण सबसे शुद्ध है। इसमें हर शब्द का वैज्ञानिक कारण है। कहा भी जाता है कि संस्कृति संस्कृत पर ही आधारित है। इसी प्रकार सखियों, हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि हमारे पास संस्कृत जैसी धरोहर है। संस्कृत के कुछ प्रसिद्ध श्लोक हैं जो अपने आप में पूर्ण हैं, जैसे वसुदेव कुटुम्बकम, यानी पूरी धरती एक परिवार है। सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही हमेशा जीत होती है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। और विद्या ददाति विनियम, यानी विद्या से विनम्रता आती है। तो इस तरीके से सखियों, संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए हमारा ये भी कर्तव्य है कि हम संस्कृत के एक दो श्लोक ही सही पर रोज बोलें, अपने जीवन में अपनाएं। संस्कृत भाषा खत्म नहीं होगी, ये तो अमर है। बस जरूरत है इसे फिर से जीवित करने की। तो इस प्रकार से सखियों, ये चर्चा हुई संस्कृत दिवस के बारे में। अब सुनते हैं ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे वीर जारा फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है उदित नारायण ने। प्यारी सखियों, मानसून शुरू होते ही बाल झड़ने की समस्या सबसे आम है। हर साल कई लोग देखते हैं कि उनके बाल सामान्य से ज़्यादा झड़ रहे हैं और वो सोचने लगते हैं कि ये सिर्फ मौसम का बदलाव है या किसी अंदरूनी समस्या का संकेत। चिंता करने से पहले जान लें कि मानसून में बाल झड़ना आम बात है और ज्यादातर मामलों में समस्या की असली वजह समझने के बाद इसे नियंत्रित किया जा सकता है। बात आती है सखियों कि इस मौसम में क्या बाल झड़ने के बाद दोबारा उग सकते हैं? जी हाँ, आपके बाल झड़ना मौसमी बदलावों से जुड़ा है, तो मानसून खत्म होने के बाद यह आमतौर पर अपने आप ठीक भी हो जाता है और कुछ महीनों में नए बाल प्राकृतिक रूप से उगने लग जाते हैं। अब बात आती है सखियों कि मानसून के दौरान बालों का झड़ना कैसे कम करें, तो निश्चित रूप से कुछ नियमित आदतें बालों का झड़ना कम करने में काफी मददगार साबित हो सकती हैं। जानेंगे ये खास बातें पर इस ब्रेक के बाद।
1: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
0: सखियों, ब्रेक से पहले हमने बात की थी कि बारिश के मौसम में आखिर हम किन आदतों को अपनाएं जिससे अपने बालों को झड़ने से रोक सकते हैं। तो बरसात के मौसम में वास्तव में क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले अपनी खोपड़ी को साफ और सूखा रखें। पसीना, नमी और रोज़मर्रा के प्रदूषकों को हटाने के लिए अपने बालों को नियमित रूप से धोएं। अपने सिर को लंबे समय तक नम ना रहने दें, क्योंकि नम सिर फंगल इन्फेक्शन और रूसी को बढ़ावा देती है। अगर आप बारिश में भीग जाते हैं तो जितना जल्दी हो सके अपने बालों को साफ पानी से धो लें। अपने बालों को अच्छे से सुखा लें। अंडे, दालें, दूध और मेवे जैसे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें, क्योंकि प्रोटीन स्वस्थ बालों का मूलभूत घटक है। अपने शरीर में आयरन और विटामिन डी के स्तर पर ध्यान दें, क्योंकि इनमें से किसी की भी कमी अक्सर बालों के झड़ने में वृद्धि के रूप में सामने आती है। मानसून के दौरान अपने संपूर्ण पोषण को बनाए रखने के लिए मौसमी फलों और सब्जियों को अपने आहार में शामिल करें। बालों की देखभाल भी सौम्य तरीकों से करें, जैसे कठोर और सल्फेट युक्त उत्पादों की बजाय अपने सिर की त्वचा के प्रकार के अनुकूल हल्के शैम्पू

शैम्पू का प्रयोग करें। इस मौसम में बालों को रंगने, सीधा करने या पर्म करने जैसे रासायनिक उपचारों से बचें। अपने सिर की त्वचा पर हल्के तेल से मालिश करें और सबसे बड़ी बात सखियों, तनाव को नियंत्रित करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, बाहर के खाने को अवॉइड करें। बस सिर्फ इन उपायों को अपनाकर आप मानसून में झड़ते बालों की समस्या से छुटकारा पा सकती हैं। अब कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।

आवरण शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, परि परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है कि चारों तरफ का आवरण यानी घेरा, मतलब जो चीज हमें चारों तरफ से घेरे हुई है वही पर्यावरण है। जैसे हवा, पानी, पेड़ पौधे, जमीन, पहाड़, जानवर, ये सब मिलकर हमारा पर्यावरण बनाते हैं। पर्यावरण के बिना जीवन संभव नहीं है। सखियों, पर्यावरण का बहुत ही महत्व है। हम सांस लेने के लिए हवा हमें पर्यावरण से ही लेनी पड़ती है, पीने के लिए पानी, खाने के लिए अनाज भी हमें पर्यावरण ही देता है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और धरती को हरा भरा रखते हैं। अगर पर्यावरण स्वस्थ रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। इसलिए सखियों, पर्यावरण की देखभाल जरूर करें। और इसी के साथ सखियों, अब समय हो गया है आपको गुड बाय कहने का, लेकिन जाते जाते इतना जरूर कहेंगे कि चंदन की लकड़ी और फूलों का हार, अगस्त का महीना और सावन की फुहार, भाई की कलाई पर बहन का प्यार, मुबारक हो आपको फिर से रक्षाबंधन का त्योहार। इसी के साथ दीजिए इजाजत अपने सखी रईसा को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला जगत। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6 बज रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 538 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल नदी के किनारों और बस्तियों में जीवित बचे लोगों और बाढ़ में बह गए शवों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भोटे कोशी नदी के उद्गम स्थल के पास बाढ़ के मलबे से बनी झील और तिब्बत के एक बांध के टूटने की खबर ने एक बार फिर बाढ़ की आशंका को बढ़ा दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ त्रासदी के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में काम कर रहे 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित इलाकों से बचाया गया है। उन्होंने कहा कि चीन की तरफ फंसे 96 भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से जमीन के रास्ते नेपाल पहुंच गए हैं और उन्हें वहां से निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। भारत ने बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 47 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष बनाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की जिन्हें नेपाल से बचाया गया। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। सिक्किम सरकार नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। सरकार वहां फंसे सिक्किम निवासियों की सुरक्षा और कुशल क्षेम सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठा रही है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है। उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए

0: सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी अब कम होने लगी हैं। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पाक्षिक चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी और उम्मीद है कि इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी का उत्पादन होगा। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। एशविल में श्रीमती सीतारामन की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार आज देशभर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम का आज ओस्लो के अस्पताल में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की शुरुआत में नॉर्वे की यात्रा के दौरान राजा हेराल्ड पंचम से अपनी मुलाकात को याद किया। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार आज रात PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकश से मुकाबला करेंगे। कल रात सेमीफाइनल में सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया था। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल को FM 103.7 MHz पर। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है छोटी बहन। गीत लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
4: फिल्म संगीत का अगला गीत आपके लिए सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में, फिल्म का नाम है रेशम की डोरी। गीत लिखा है इंदिवर ने और संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत आपके लिए लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम है अनपढ़। इस गीत को लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने और संगीत से सजाया है मदन मोहन ने।

0: आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
2: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमे चैनल है, FM 103.7 MHz पर। शाम के 6:20 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम माटी के स्वर। इस कार्यक्रम में सबसे पहले ये राखी के त्योहार से संबंधित ये लोक गीत।

0: नमस्कार। संस्कार, संस्कृति और आधुनिक शिक्षा का अनूठा संगम, सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़, छात्र एवं छात्राओं दोनों के लिए वैदिक पढ़ाई का एकमात्र संस्थान, राजस्थान का पहला बालिका वेद विद्यालय भी यहीं संचालित होता है। छात्र छात्राओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित पृथक पृथक छात्रावास की उत्तम सुविधा है। प्रवेश प्रारंभ है, संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: माटी के स्वर कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं चंपा मेथी की आवाज में ये लोक भजन।

पूजन दिनो बाबे घोड़ लो तो दूध पिवाने गाए लीलो घोड़ा नव लखोन मोती जड़ी लगा केसरियो बाबो तुरे बिना तो तुरे तार हजार

अभी आप सुन रहे थे चंपा मेथी की आवाज़ में ये लोक भजन। इसी के साथ हमारा आज का माटी के स्वर कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 MHz पर। शाम के 6:30 हो रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद होगी जिले की चिट्ठी, तत्पश्चात आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, देश में चीनी का पर्याप्त स्टॉक, उचित मूल्य पर चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना ने लोगों के लिए बैंकिंग पहुंच को आसान बनाया, अब तक 59 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए। राज्य में इस मॉनसून सीजन में 21 जिलों में सामान्य बरसात, राजधानी जयपुर सहित 17 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा, और प्रदेश भर में रक्षाबंधन के पावन पर्व की रौनक और उल्लास।

समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी जरूरी उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि सरकार देश भर में चीनी की कीमतों और स्टॉक पर कड़ी नजर रखे हुए है। खुदरा चीनी की कीमतें अब कम होने लगी हैं। मंत्रालय ने घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और आपूर्ति में कृत्रिम कमी को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पाक्षिक चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी का उत्पादन होने की उम्मीद है। चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी रोक के बेचने की अनुमति होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 सालों में जन धन योजना का परिवर्तनकारी प्रभाव रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सक्षम बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। इसने लाखों लोगों, खासतौर पर समाज के पिछड़े वर्ग को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं का फायदा उठाने और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में मदद की है। इस योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले जा चुके हैं। साथ ही इन खातों में करीब 3,17,000 करोड़ रुपए की राशि जमा है। खोले गए कुल बैंक खातों में से आधे से अधिक खाते महिलाओं के हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने साल

0: 2014 में आज ही के दिन जन धन योजना की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि योजना लोगों के लिए बैंकिंग पहुंच को आसान बना रही है।
1: प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। ये स्थिति हमें बदलनी है। देश की आर्थिक संसाधन गरीब के काम आए इसकी शुरुआत यहीं से होती है। यही तो है जो खिड़की खोलता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो अकाउंट खोलेगा उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा और डेबिट कार्ड के साथ हर गरीब परिवार को 1,00,000 रुपया का बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा ताकि उसके जीवन में कोई संकट आया तो उसके परिवारजनों को 1,00,000 रुपये का बीमा मिल सकता है।
0: वित्त मंत्रालय के अनुसार PMJDY के तहत 78% बैंक खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में खोले गए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना से जीरो बैलेंस बैंक खाते की सुविधा मिलती है, साथ ही 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर भी होता है। सेंट्रल बैंक के कार्यकारी निदेशक महेंद्र दोहरे ने बताया कि बिना किसी बिचौलिए के सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि DBT होना इस योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
2: सभी जो खाता धारक है उनके साथ एक जो जुड़ाव हुआ है, चाहे वो क्रेडिट लिंकेज हो या डिजिटल ट्रांजेक्शन हो UPI के थ्रू, या फिर जो सबसे बड़ी उपलब्धि इसमें ये भी हुई जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, जो पैसे लाभार्थी को उनके खाते में डायरेक्ट आ जाते हैं, बीच में कोई बिचौलिया या मिडिल मैन पहले की तरह नहीं रहता है, ये इसकी स्कीम की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। पूरे पैसे लाभार्थी को मिले, पैसे का सही इस्तेमाल से सेविंग किया, इन्वेस्टमेंट किया और उस खाते में ट्रांजेक्शन के बेसिस पे उनको भारत सरकार की जो सुविधाएं हैं, चाहे वो मुद्रा स्कीम्स है, PM विश्वकर्मा है, PM स्वनिधि है, उनका लाभ लेने तक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की और लोगों को खाते से आगे बढ़कर एक फाइनेंशियल एम्पावरमेंट का मिशन दिया।
0: प्रधानमंत्री श्री मोदी कल 2 दिन की उज्बेकिस्तान यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जी योयेव के बुलावे पर ताशकंद का दौरा करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए बातचीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 30 अगस्त को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में इस मॉनसून सीजन में अब तक सामान्य से 16% कम पानी बरसा है। अजमेर, बीकानेर, बूंदी, सीकर, चूरू, जोधपुर और कोटा सहित 21 जिलों में सामान्य बरसात हुई है। वहीं जयपुर, जैसलमेर, सवाई माधोपुर, टोंक और उदयपुर सहित 17 जिले सामान्य से कम बारिश वाले हैं। भरतपुर, डीग और फलौदी में ही सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। कोटा और बांसवाड़ा क्षेत्र के जलाशयों में सबसे अधिक पानी है। यहाँ 92% से 93% जल स्रोतों में पानी की आवक हुई है। वहीं प्रदेश भर के 693 छोटे बड़े बांधों में से 439 आंशिक रूप से भरे हैं और 55 बांध लबालब हैं। इस बीच अधिकतर स्थानों पर मानसूनी गतिविधियां फिलहाल एक सप्ताह के लिए धीमी पड़ गई हैं। हालांकि कल उदयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बरसात हो सकती है। बारिश की गतिविधियों में 4 सितंबर से फिर से तेजी आने के आसार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि मॉनसून की रफ्तार सुस्त होने से गर्मी और उमस का असर बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि श्रीगंगानगर में बीते 3-4 दिनों से दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है।
3: वर्तमान में राज्य के अधिकांश भागों में दक्षिण पश्चिमी शुष्क हवाएं प्रभावी है। वहीं मानसून ट्रफ लाइन भी अपने सामान्य अवस्था से उत्तर की ओर से होकर गुजर रही है। राज्य के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह कमजोर मानसून परिस्थितियां रहने की संभावना है, यानी ज्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा। वहीं पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में आगामी दो तीन दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी होगी। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों

0: भी अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद सितंबर के प्रथम सप्ताह में पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में एक और नया बारिश का दौर शुरू होने की संभावना।
1: प्रदेश में एक राज्य एक चुनाव के तहत अगले महीने होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए सरगर्मियां बढ़ गई हैं। भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य दलों में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन चल रहा है। प्रत्याशी चयन को लेकर बैठकों का दौर जारी है। जल्द ही प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगने और सूची जारी होने की उम्मीद है। इसके अलावा भारत आदिवासी पार्टी, RLP, BSP, आप और RLD भी अपने प्रभाव वाले स्थानों पर उम्मीदवार खड़े कर मुकाबलों को त्रिकोणीय बनाने में जुटी हैं। ऐसे में नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन तक गहमा गहमी बनी रहेगी। इस बीच इन चुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू हुई। 309 निकायों के 10,245 वार्डो में कल पहले दिन उम्मीदवारों की ओर से 1,055 नाम निर्देशन पत्र भरे गए। चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थियों के पास अब नामांकन दाखिल करने के लिए सिर्फ 2 दिन शनिवार और सोमवार का समय है। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्मिक चुनाव तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। विभिन्न प्रकोष्ठ चुनाव प्रक्रिया को व्यवस्थित और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आयोग ने 2 चरणों में होने वाले इन चुनावों के लिए संबंधित क्षेत्रों में मतदान वाले दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। प्रदेश भर में आज रक्षाबंधन के पावन पर्व का उल्लास छाया हुआ है। भाई बहन के स्नेह के प्रतीक इस पर्व पर बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी सुख समृद्धि और लंबी उम्र की कामना की। वहीं भाइयों ने बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हुए उन्हें उपहार दिए।

0: श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाए जाने वाले इस पर्व के लिए हर उम्र के लोगों में उत्साह देखा गया। बहनों ने भाइयों के तिलक लगाकर मुंह मीठा कराया। शेखावाटी अंचल में देश की रक्षा में शहीद हुए भाइयों की प्रतिमा पर राखी बांधने की परंपरा है। हर साल बड़ी संख्या में महिलाएं शहीदों की प्रतिमाओं को राखी बांधकर नमन करती हैं। इस बार भी चूरू, झुंझुनू और सीकर में कई प्रतिमा स्थलों पर भावुक करने वाले ये दृश्य देखे गए। वहीं कई बहनें कारागार में बंदियों को राखी बांधने पहुंची और भाइयों के प्रति अपने स्नेह और प्रेम को जीवंत किया। उधर श्रीगंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर में स्कूली छात्राओं, महिलाओं और सामाजिक संगठनों की ओर से अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों की कलाई पर राखी बांधी गई। राजस्थान पुलिस ने भी रक्षाबंधन के पर्व पर हर महिला और हर परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी को अपनी प्राथमिकता बताया। आदिवासी अंचलों में भी रक्षाबंधन पर्व की खासी रौनक दिखाई गई दी। सिरोही जिले के पर्वतीय पर्यटन स्थल आबूराज में सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ी। गुजरात सहित अन्य राज्यों से आए पर्यटकों से बाजारों में चहल पहल बनी हुई है। प्रदेश भर में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी काफी भीड़ देखी गई। बड़ी संख्या में महिलाएं राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा का लाभ ले रही हैं। इस बीच सावन के पवित्र महीने के अंतिम दिन आज शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भक्तों ने भगवान शिव का अभिषेक कर सुख शांति की कामना की। उधर हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी मेले की आज ध्वजारोहण के साथ विधिवत शुरुआत हुई। श्रावण मास की पूर्णिमा को संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर विभिन्न संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई पीढ़ी से संस्कृत भाषा के संवर्धन में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया है। उन्होंने संस्कृत को भारतीय ज्ञान परंपरा और विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा, देश में चीनी का पर्याप्त स्टॉक, उचित मूल्य पर चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना ने लोगों के लिए बैंकिंग पहुंच को आसान बनाया। अब तक 59 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए। राज्य में इस मॉनसून सीजन में 21 जिलों में सामान्य बरसात। राजधानी जयपुर सहित 17 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा। और प्रदेश भर में रक्षाबंधन के पावन पर्व की रौनक और उल्लास। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से सिरोही जिले की चिट्ठी सुनिए। इसे भेजा है साकेत गोयल ने। अरावली की पहाड़ियों में बसे सिरोही जिले में बीते दिनों धार्मिक आयोजन

0: जनों, स्वतंत्रता दिवस, नशा मुक्ति और सामाजिक जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम हुए। मॉनसून की बरसात के कारण जिले के ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में हरियाली की चादर छाई हुई है। वहीं माउंट आबू में बारिश के बाद पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है। नगर निकाय चुनाव को लेकर भी प्रशासनिक तैयारियां आगे बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की हाल ही में शुरुआत की। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय शांतिवन के डायमंड हॉल और पिंडवाड़ा के माधव विश्वविद्यालय में किया गया। प्रधानमंत्री ने आध्यात्मिक संगठनों से अभियान से जुड़ने और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए काम करने का आह्वान किया। जिले में भी युवाओं को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जिले के धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों में गुरुजनों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोगों ने गुरुजनों का आशीर्वाद लिया। मंदिरों और आश्रमों में भी श्रद्धालुओं की आवाजाही रही। इसके बाद सावन माह के दौरान जिले के शिव मंदिरों में पूजा अर्चना और अभिषेक किए गए। सावन के सोमवार को सिरोही, आबू रोड, पिंडवाड़ा, शिवगंज और माउंट आबू सहित विभिन्न क्षेत्रों के मंदिरों में श्रद्धालु पहुंचे। हरियाली तीज के अवसर पर महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में कार्यक्रमों में भाग लिया। कई स्थानों पर झूले लगाए गए और लोक गीतों के साथ तीज मनाई गई। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह सिरोही के अरविंद पवेलियन में हुआ। राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया। वहीं हर घर तिरंगा अभियान के तहत भी जिले में कई गतिविधियां हुई। सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर तिरंगा फहराया गया। तिरंगा रैलियों और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को राष्ट्रध्वज के सम्मान और नागरिक दायित्वों की जानकारी दी गई। मॉनसून से अरावली की पहाड़ियों और ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाली छा गई है। खेतों में खरीफ फसलों की बढ़वार भी दिखाई दे रही है। बारिश के बाद माउंट आबू में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ी है। नक्की झील, गुरु शिखर और सनसेट पॉइंट सहित विभिन्न स्थानों पर पर्यटक पहुंच रहे हैं। पहाड़ियों पर बादल, बारिश के बाद बहते झरने और हरियाली पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। पर्यटकों की आवाजाही से होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी और अन्य पर्यटन गतिविधियों से जुड़े कारोबार में भी काम बढ़ा है। जिले में सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। शिक्षण संस्थानों और सामाजिक संगठनों की ओर से पौधरोपण, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता और नशा मुक्ति से जुड़े कार्यक्रम हुए। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक किया गया। शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए रोजगार, कौशल विकास, स्वास्थ्य और सामाजिक जिम्मेदारियों से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। युवाओं को अपनी शिक्षा और कौशल के साथ सामाजिक कार्यों में भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया। माउंट आबू में आयोजित दादी प्रकाशमणि अंतर्राष्ट्रीय हाफ मैराथन में देश विदेश के धावकों ने भाग लिया। आयोजन के माध्यम से खेल, स्वास्थ्य और फिटनेस का संदेश दिया गया। पहाड़ी क्षेत्र में आयोजित इस मैराथन से माउंट आबू की पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिला। इधर जिले में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जारी हैं। मतदाता सूचियों, मतदान केंद्रों और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है। राजनीतिक दलों और संभावित उम्मीदवारों की सक्रियता बढ़ने लगी है और चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आज जिले भर में रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दिन भर बाजारों में राखियों और मिठाइयों की दुकान पर लोगों की भीड़ देखी गई। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और भाइयों ने बहनों को उपहार दिए। पर्व को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की ओर से बाजारों और प्रमुख मार्गों पर यातायात और सुरक्षा की व्यवस्था की गई। सिरोही जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्र सरकार कहो देश में शक्कर रो पर्याप्त स्टॉक वाजिब दाम मथची मुहैया करावन।

0: राखी रमकर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में थी मोटी तादाद में लोग नजर आया। राजस्थान रोडवेज री बसा में मुफ्त सफर रासु बितारो मोटी तादाद में महिलाओं फायदो उठा रही है। इन बीच सावण महीना रा आखिरी दिन आज भगत भोलेनाथ रो अभिषेक कर सुख शांति री कामना कर रहा है। दूजी कानी हनुमानगढ़ जिला रो नामी गोगा मेड़ी मेड़ो झंडो चढ़ावण री रीत सागे आज शुरू थियो। आज सावणी पुन्यु ने संस्कृत दिवस ही मनाई चियो। ई मौके न्यारा न्यारा संस्थान में सांस्कृतिक कार्यक्रम राखी चिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नवी पीढ़ी संस्कृत भाषा ने बधावो देवण री अरज कीनी। वह संस्कृत ने भारत री ज्ञान परंपरा और विरासत रो खास हिस्सो बतायो। हॉकी रा जादूगर कहा जावन वाला मेजर ध्यानचंद री जयंती काल राष्ट्रीय खेल दिवस रा तौर मनाई जावेला। देश में खेल संस्कृति ने बधावो देवन सरू आज तीन दिन रो अभियान शुरू करी चियो। राष्ट्रीय खेल दिवस री थीम खेलेगा भारत जीतेगा भारत राखी ची है। आखिर में खास समाचार एक और फिर सुन ली रहो। केंद्र सरकार कहो देश में शक्कर रो पर्याप्त स्टॉक वाजिब दाम माथा चीनी मुहैया करावन सारू सगला जरूरी जतन कर्या चाहता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना रा तहत हाल ताई 59 करोड़ उम्बत्ता बैंक खाता खोली चिया। राज्य में चौमासारी मौजूदा रुत में हाल ताई 21 जिला में सामान्य बरसात। राजधानी जयपुर समेत 17 जिला में सामान्य कम पानी बरसियो। और प्रदेश में राखी रे मौके रौनक और उमाव। इसागे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: FM बिंड 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल को। शाम के 7 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: खेती बाड़ी कार्यक्रम सुनिया से भयाने बयाने और सुनाड़ा किसान भयाने घना हेत कोडूं राम राम। आज संपत भाई की और हूँ और देखो मार्गानी हल्का हल्का मुस्कुरा दिया भाई सोम भाई। तो आज आप आऊँ भी कहता करा बात करा आप सगला बेटर। तो सोम भाई घना घना राम राम।
1: राम राम संपत भाई, आपने घना घना मोकला मोकला राम राम। आज बड़ा एकदम यान ताज़ा लाग रिया और चेहरा पर बड़ी यान चमक लाग रही है, काई बात है?
0: अजी चमक तो उन्हीं बस आज तो की मोटो तैयार है।
1: ओ
0: मैं देखो थांग कड़ाई मत कितनी राग जान बंजुड़ी है
1: ऐसा
0: कोने तेरी बड़ी है।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब आप रेदा को फोन दो ईश्वर चमक दे जन सांद सिल्क है जी। काई बात है।
0: आज बयान को सगलों जो बढ़िया तैयार हुआ है जगाना पर रक्षाबंधन कहवा और रक्षाबंधन को आज त्यौहार है। तो भयाने और सगड़ा भयाने घणान घणा हेत कोडूं राम राम फेरूं रक्षाबंधन का।
1: बिल्कुल सा हैंग बेना ने आज ई प्रोग्राम शु ई चौपाल रे पंच आपा रे ई मंच शु आपा हैंग जीती भी अपनी बहन नड़िया है बाया है नैनकड़िया है मोटी आपने जकी बुढ़ी जकी है बाया कई है जकी पोता पोतिया वाली है मन हैंगा ना आपा प्रणाम करा हा राम राम का हा और कहवा हे बाया
0: तो देखो कितो मतलब एक भावनात्मक संबंध हुए अंके बेटियां को या बेना को भाया के साथ बेटियां को बाप के साथ कितो भावनात्मक संबंध हुए जको मतलब एक रूं खड़ा हुए जान की बात।
1: देखो संपत भाई के रिश्ते रे मायने आप बात कराना तो सैसु पवित्र जो रिश्तो है नी वो बहन भाया रो जाए
0: बहन भाया
1: क्योंकि सब सब आप कट ही जाता रो अब जान संबोधन नु अपन ठा पड़ जाएगी जी जकी बाई ने आपकी सुरक्षा की दृष्टि अगर कोई सामे मोटियार दिख रही हो या कोई मिनक है तो बिन से पहली बात कही भाई जी या भाई
0: ना, भाई
1: वो
0: ना,
1: शब्द

0: कंहिं ताईं बि इहा हिकदमि इहा महसूसु हुई की भई मैं एक अहिड़ी सुरक्षा रा प्रकोटा मां आई क्योंकि ई संबोधन में इतनी ताकत है। जीशु काई बडेरा है जका अपना ई सेसु पवित्र रिश्ता रो लेर जो को त्योहार है जो आदि काल सो त्योहार चाल तो आयो है
1: घणा वर्षों घणा साल
0: भगवान श्री कृष्ण री बाता करा हा जी टाइम है जो को हैंग भाई बना ध्यान ही जे के जद आंगली लागी ही और उन टाइम है जो को द्रौपदी आप रे जो को ओढ़नी ही चीर फाड़ परी रा बांध दी हाथों हाथ ही भगवान की ओग बहन मोको आए जन मैं थारी पासी कथा सब ने ध्यान ही है भगवान जद खुद भी निश्रिष्ट निभायो और आपा बात करा संपत भाई आपनो नागौर जिलो और नाडीर माते है जो गुजरिया बैठी जो कांगे तो भाई हा जकी तो आपरे बिन मोसा देवी हंसई हंसरा आपरे घरांगी पर बा एकली बैठ बैठी लाण रोवे
1: रोवे
0: भाई मारे कोई भाई कोनी बटू बे निकलता मोटालडा जद मन कने पूरो राजा साहब रो खजानो ले बे तो दरबार बट जाव्या
1: हां दरबार देव ने जाव्या
0: हां कैसा जमा करा रवा तो रिपियो बांगन किरणो रिपिया देवड़ा अबे साबिन बाइन दे रोऊं ता देखी
1: दिया भाव आई
0: क्यों क्यों भाई रोवे क्यों काई बात है भाई मैं रोऊं थन काई लेन देनो क्यों तो ही भाई बेटी की जात है बताए दे थार बताण में काई लागे
1: मांगे मुंडो भाई शब्द मिलियो थार
0: भाई निकल गो तन के भाई बाई कह दियो जन मारे भाई कोनी क्यों ठीक है और मारे टाबर हुईड़ा है घर में यार सबका है जगह भाई मायरा भरी जाए पर हूँ कहीं करूँ बेरा अटायुड़ी हूँ तो इन वास्ते ही के अब मांगे तो मायर आना को नहीं नाडी है थोड़ी दार पर माए जानते रहे और कहे जन के भाई ठम
1: दरबारी
0: भी बात ने ले इकरकार का तो थोड़ा सा भुआतनी जी अतोरी पियो और पछ क्यों के कट काम ले लियो रहे में तो एक भाई हीर जकर दिया चलो वो काम ते हूँ कर दियो तो आज नाम उगोसा वो बहन भाई रिश्ता बात आप नागोर ई जकी कथा रे माध्यम से है जो एक और पवित्रता आगे बढ़ावे है और एक नाम रखे सवाल
1: नाम रखे देखो भी त्यार ने आज आप मनायो बयान है जता भी भाई बहन आपस में प्रेम संबंध है मैं उम्मीद करा कि भाई आगे प्रेम ज्यादा से ज्यादा थाके बढ़तो रहे और अब थोड़ी सी आज आप बात करा जकी साग सब्जियां हुए तो थोड़ो चर्चा को आज को विषय है सोमबई आमणो के सब्जियां माते थोड़ी चर्चा करा तो सब्जियां आप बार जकी चौमा साढ़े तीसरा लई है और प्योर देसी बेदे को जकी गुआर फली है चाहे टिंगसी है चाहे लोया है चाहे काकड़ी है चाहे काचरो है जितने भी प्रकार की सब्जियां हैं तो ए तो बार चल रही है पिंड साथ अबार अम्पा अगर देखा ना तो हाल अम्पा के इनको जो को व्यावसायिक उत्पादन शुरू को नहीं हो घर बरता उपामा
0: किसान हाल ती कहीं अपा जगह हानि संपत भाई आपा हो कि आप भी ही ढर्रामा ते चला कि साई इतना दीजिए और मैं भी भूखा ना रहूं
1: साधु ने भूखा जाए की बात
0: बहुत अच्छी बात है लेकिन हमें कहीं है कि समय थोड़ो बदल रही है जिन सारू थोड़ो सो कहीं है कि आगू च होज परो आपा ने आपनो जखो भी काम है खेती बाड़ी में चाहे आपा किसानी काम तो करा जो कराई हाँ बिन सारू सब्जी वाली बात आ बड़ी फूट रही करियो तो सब्जी में भी एक ज्ञान बीच वालों जो काल आया करे भी अपन भावा भी हाँ लेकिन पानी की कमी रहे कई जगह अपन तो चौमासो ही मिले ठीक है सब्जियां रामायण ने संपत भाई की जैसे एक चीज आ देखी जाए हमारे खेत में बावड़ी अपा गड़बड़ता हुआ काम हो जाए लेकिन क्यों ना अपा अपना खेतरो कुछ हिस्सो भी सब्जी ने दे पर अच्छो मुनाफा उत्पादन कमा सका
1: दूसरी चीज देखो सोम भाई सब बड़ी चीज आए कि चौमासा जकी ये सब्जियां है ये कोई बिना दुआएं हुए की वे बिना खाद की हुए तो एक तो अंग मान ने बा हुए कि भाई पूरी तरह से जैविक है जे आपनो पेट में जी मान लियो बार जकी जैविक सब्जियां चार महीना आपा खावा चाहे तोरू है टिंडा है जकी भी सब्जियां है बे आपा खेतों में जमार खावा भाई गुआर पड़ी पिलावा और भी आपा खावा लेकिन अगर आपा को दो पीछे भी अजी और लोगों ने जैविक सब्जी भी पूछ जी दोनों खावा
0: आर्थिक युग है
1: तो आपा इंक माइन थोड़ी सी इनको व्यावसायिक उत्पादन शुरू करा तो आपा नहीं लागण चाहिए कि भाई आपा की दो पीछे भी कमा लिया और भाई अंतर छोकी सब्जी भी पूगा
0: बिल्कुल क्योंकि सब्जी जो को बाजार में लावा हाँ जका कई आप देखा कि कितनी दवाइयां छाट छाट रो उत्पादन कर आप पूगती करे कई भाई जैविक भी करे लेकिन जका दवाई छाटी जकी सब्जियां

0: फूल गोभी है, बीन है, टमाटर है, सरसों है, खीरा, भिंडा, लौकी, करेला, ए भी आप सब्जियां बाहर है बाहर सका क्यों मुंडा के सियाड़ा सीजन आए ना भी सीजन में आपने फसल दे दे
1: सही बात
0: है। एंड हम का विचार है
1: मैं विचार कहीं एक ठीक किया
0: गाउंतर गिरियो एक एंड गाउंतर तू कोई पड़ा राम जी हतई करी तो बहन तक पूक्ति करा
1: आओ लीरा उषा
2: आज बया घूमता घूमता देखो आएगा एडेक के आग लेपाल डे एक रामदेव जी खेल दी है बिक्सारे है आज घुना भी है गणिसार की बकरिया और मन लगे ए भाई जी जो वहां बारह मासा मा करिया आऊ पूरा परिचय करा कहीं सा कहीं नाम है आपको
3: मारो नाम प्रहलाद राम है साहब
2: प्रहलाद राम जी गाँव ओडे
3: गाँव तो इन्ना ना है कांकड़ के मायने बकरिया ले रखे गाँव में इस साल बरसात इन्ना नाम कम ही थोड़ी
2: गाँव आपको इन्ना ना है
3: हाँ गाँव प्रोपर इन्ना ना
2: तो बकरी वालो धंधो को खुद को ये
3: हाँ खुद को ये सा
2: कती बकरियां है बार
3: बकरियां बार 125 बकरियां हैं जो एनएलएम पशुपालन विभाग योजना नहीं वो बार एक 105 बकरी को लोन भी हो जो भी हिसाब दो साल होगा काम करता
2: तो बच इन या थे सालों साल ही जाना पड़ेगा
3: हाँ देखो अभी बरसात कम बराबर होती रहे जब की दिक्कत को निकट नहीं जाना पड़े इस साल थोड़ी गाँव में बरसात कम ही जरा डे आएगा बीड़ा खरीद लिया
2: खेता में बीड़ा
3: घास बढ़िया हो चरण है जरा आएगा व्यवस्था होगी सकली
2: तो रहना पड़े खुद नहीं
3: हाँ खुद नहीं रहना पड़े सा
2: कितना आदमी वोट है
3: अरे तीन आदमी रहे दो चराउन वाला एक मैं खुद संभालू अरे साथ ही
2: तो पहला जी ओ बकरी पालन धंधो है जो आपकी दिमाग मायर किया सोचो
3: ओ देखो आज की टाइम में सोचो कहीं खेती है ना जी पशुपालन के बिना खेती अधूरी है सा क्योंकि खाद पूस नहीं हुई खेती में तो खेती में कोई फायदा नहीं रहे बारू ले रहा खाद किसान ने के बहुत महंगो पड़े तो खेती के वास्ते साथ अगर पशुपालन हुई तो गाड़ी किसान की पार हुई
2: देखो पशुपालन तो आप देखो भैंसियां भी है गायां भी है और भी घना धंधा है ओ थांग बकरी पालन नालो थांग दिमाग में क्या आयो और भाई कोई करनी चाहे तो बिन फेरस्तो बताओ
3: नहीं नहीं बिके वास्ते बहुत बढ़िया है बकरी पालन को गाय भैंस और में भी ठीक है पर आज की तारीख के मायने सब बढ़िया प्रॉफिट वालो काम है जो बकरी पालन क्यों बकरी पालन अगर खुद की हिम्मत है तो कटे चरा ले रहा जाओ अगर चारों घर में नहीं है तो वहाँ भूखी नहीं रहे मायने प्रॉफिट बढ़िया
2: तो बकरी पालन लोन लून लियो क्यों संपर्क करियो कहीं
3: वो तो देखो दो तीन साल पहले की सरकारी योजना ही पशुपालन विभाग की मैं फोन पर ही देख दुकार पतो करियो जार मैनेजर साहब बात करियो बैंक में मैंने दो तीन बार में फाइनल कह दियो कि चलो लोन दे दे आपने पशुपालन विभाग में आर संपर्क करियो जन्म बे मैंने आगे आगे बता दियो डॉक्यूमेंट पूरा कर दियो और मैं फाइल लगा दी 100 बकरी और 5 बकरा तो बस साल भर के मायने कंप्लीट होगी साहब बार मारे अब लास्ट सब्सिडी है 5 लाख रुपया कल वेरिफिकेशन हुई अब आज 8-10 दिन के मायने
2: हाँ तो पहला जी आज की सब्सिडी थे बात करी
3: हाँ
2: तो था पूरा लोन का तो सेंक्शन हुई हो
3: वो 18 लाख हुई हो जान डीपीआर बनी 24 लाख की
2: डीपीआर का भाई अंग्रेजी में
3: प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनिया करे भाई इतो लाख को प्रोजेक्ट में काम शुरू हुई 10 लाख रुपया लाख जब भी कमाए 24 लाख की हुई जगह मानो 6 लाख रुपया किसान

0: देखो मैं अट लोकल के माय नहीं बकरियां खरीदी जटू थोड़ी भाव मिल गई और विशेष कर थोड़ा नस्ल को ध्यान रखना जरूरी है। नस्ल में कहीं बढ़िया नस्ल की अगर बकरी है ना तो भी कोई जानवर बढ़िया हो भाव के मायने बहुत ज्यादा फर्क रही है। एक तो देसी नस्ल की जो की बकरी खरीदा भी मैं जानवर की रेट को मिले और बढ़िया नस्ल की है ना जान आपने सदाबहार है नागौर के मायने सिरोही नस्ल जबकि एक हैदराबादी नस्ल है और वह भी रेट भी की भाव में बढ़िया मिले बट थोड़ी सी बात है कभी बीमारी और ज्यादा आवे
1: आप बंदे कम रंजे है ना।
0: कम रंजे एक वास्ते ना जो सिरोही नस्ल है जो सदाबहार है बिको वहां सेवा पानी करे तो वह बढ़िया
1: सिरोही नस्ल सब बढ़िया है
0: हाँ सब बढ़िया सिरोही नस्ल है
1: जो कि देसी है आप भी ठीक है।
0: अभी ठीक है पर देसी की थोड़ी ग्रोथ कम हुए वजन वजन कम है सिरोही नस्ल की थोड़ी कहीं चमक भी रहे वजन बैठे सगड़ो ठीक है।
1: तो बाहर था जो बीड़ो लीड़ो वो कत्ता भी गाय कहीं
0: ओटे 50 बीघा एक है टोटल 90 बीघा जमीन वो बीड़ो लीड़ो ऐसा
1: अच्छा 90 बीघा हुआ रामदेव खेलडी का ना
0: हाँ
1: दे आगे है ना।
0: हाँ
1: हाँ। तो रामदेव जी खेलडी के आसपास के आज की जिम्मे थाने कुछ बताइए किए हैं संपर्क हुए था
0: हमारे बटे साडू ऐसा झाड़ली गांव में बे पत्तों के लिए की होता बढ़िया जमीन में जो बकरियां चरण वास्ते बढ़िया है पता है किशन जी बेनीवाल को आज संपर्क कर योजना है माने बीड़ो दे दिए अरे उनके वास्ते
1: देना पड़ेगा
0: हाँ रुपया देना पड़े सा
1: हाँ
0: रिपेयर देर भी सगली व्यवस्था बढ़िया होगी सर पानी की है रूण के वास्ते लाइट के और
1: सारी व्यवस्था मिल गई
0: व्यवस्था बढ़िया होगी सर
1: आगे का फायदा हुई
0: आके फायदा देखो आगे एक तो खाद भी जाई और बीड़ा का भी रिपेयर तो दिया तो मैं कम ही ना दिया 500 रुपया बीघा का लिया करे कम तो भी मैं तो आने कम ही दिया सर थोड़ा घना ले लिया
1: बड़ा जी अब एक बात मैं मना बताऊ की बकरिया की देखभाल है देखभाल का करना पड़े विषय
0: विशेष आई चीज है सर देखभाल है ना खुद धनी है ना अब ज्यादातर बकरी पालन तो लोग करे लोग सुने कि बकरी पालन में बढ़िया प्रॉफिट है जो लोग इन्वेस्ट करने वास्ते हिसाब बकरी फार्म लगाए पचपन खुद ने फुर्सत कौन रहे थोड़ा दिन में 2 साल साल भर के महीने 4 साल में बकरी पालन फेल हो जाए क्योंकि आदमी छोड़ देवे कि चलो थे वो काम कर ले जो
1: खुद ने पड़े
0: खुद नहीं रहे जरा वो काम वे आदमी वे थोड़ा आप फॉर्मेलिटी करे ध्यान कर खुद ने थोड़ा शौक मैंने
1: जो की बकरी है इनको टीकाकरण वगैरह हुए
0: हाँ बिल्कुल टीकाकरण वे 3-4 टीका जो विशेष है वे टाइम टाइम लगाना पड़े बस दूजो विषय ध्यान रखने को पेट में कीड़ा हुआ जो मैं पेट की कीड़ा मार जो की दवाई दे देवा ने टाइम टाइम थोड़ा हर 3 महीने में दवाई देवा तो और बढ़िया रहे एक टीकाकरण हो जाओ विशेष ना निरोगी रहे
1: पड़ा जी आ तो वही बात आगे देखभाल की अब की बात के जैसे आप बकरिया हुआ या मान लो बकरा है छोटा बच्चा है बड़ा बच्चा बेचन की और की मंडी को वास्ते अपन गाय संपर्क करना पड़े कट करना पड़े
0: देखो तो जट जान हाल फिलहाल तो मैंने 2 साल होगा जो खुद व्यापारी आ ढूंढ ले कट कहीं व्यापारी घूमता फिरता ही रहे और ज्यादा जगह अगर माल हो जावे ना बकरा और ज्यादा थोक में है तो आजकल तो किसान भी थोड़ा होशियार होगा जो मंडी में ले जा रही बेच दे कई किसान भाई जगह एनएलएम 500 बकरी का लगीड़ा ना कई अहमदाबाद मंडी तक लेगा कई करें जान मकराना मंडी अजमेर मंडी है बटे ले जा रही बेच दे हमारे तो फिलहाल अट्टी बिक जावे
1: तो साल में कितना रुपया बकरा बिक जाए
0: साल के मायने बकरा बिक जावे देखो हमारे हाल में करीब 1 लाख रुपया का बकरा बेच दिया फिलहाल 1.5 साल में
1: अच्छा और बकरियां भी बड़े जकी बड़े ही है
0: हाँ बकरा भी कहने जो कहूँ तो जान आदमी आप राका ने जकी तिनका निकल जाए
1: हाँ खर्चा निकल जाए हाँ, हाँ।
0: खर्चा भी निकल जाए और प्लस बकरियां बड़े जकी वो प्रॉफिट है और खेत के मायने खाद हो जाओ वो प्रॉफिट है और खुद को रोजगार ऐसा
1: वो बड़ा मोटी चीज है
0: वो सब मोटी चीज है कटे मोन बारे नहीं जाना पड़े घर को घर में
1: तो पेड़ा जी बहुत ही बढ़िया धंधो थे बकरियों और बहुत अच्छा धंधो है कई भाई सहन और करनी चाहिए तो आप संपर्क कर ले आप इतनी अच्छी जानकारी दी आपने बहुत बहुत धन्यवाद राम राम सा
0: राम राम राम सा राम।
2: प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही है, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं, तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर है 240-168 और नागौर का एसडी कोड है 015-82। और हाँ, आपको

0: यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: तो सोम भाई देखो के बातें करी आप बड़ा भाई उम्र हतई की काम की ही
0: बड़ी जोर की ही बिल्कुल किसान भाइयों वास्ते बड़ी ही उपयोगी जानकारी ही।
1: हाँ।
0: बड़ी अच्छी बातें करी आप संपत भाई।
1: हाँ, रोजगार की बातें देखो बड़ी अच्छी करी के भाई मैं है ना खुद रोजगार करूँ प्लस दो जना ने और रोजगार दूँ बहुत बड़ी चीज है।
0: सही बात
1: कि भाई आज आदमी थोड़ी शौक अगर सरकारी की योजना में आवे मैं योजनाओं फायदा लेवे और फायदा ले प्रो सरकार कोई भी वो चाहे सरकार आ चाहे कि भाई लोग है जगह सरकारी नौकरियां अंदर नहीं दौड़ आपको व्यवसाय करे तो ये जगह खेती का अपंग आसपास का जगह धंधा है ना ये हम पर चला परा और लोगों ने रोजगार भी दे सका ना पर रोजगार कर सका आप।
0: बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात बताई है कि रोजगार सारू जो है कि प्रयास आदमी हर तरह रो करतो रहे लेकिन आपने जी की परंपरागत खेती अपना चाल रही है मेरे साथ तेरा जगह रोजगार जिता ही चाहिए तो भले पशुपालन संबंधित अभियान बकरी वाली बात अबारा बताओ था और मेरे साथ साथ दूध दुग्ध उत्पादन की बात आ जाए खाद उत्पादन वेरी हो कितनी सारी चीजें मेरे साथ जुड़ी हुई है अच्छो रोजगार मिले जो अबारा थोड़ी देर पहले कहता ही जा कि एक रसाते दो आदमी और मिले तो ये अच्छी बात और कहीं हो सके।
1: तो और बाप ये एक एक अपन जी खेती है आज आज बने आप 50 साल पहले देख लियो खेती के साथ हमेशा पशुपालन जुड़ी रही है दूध जुड़ रही है ते बताओ जी खाद वाली चीजें हैं ये जुड़ रही है। अब आपको अगर आप थोड़े शौक व्यवसाय उत्पादन के हिसाब चला चाल जमाना तो यूं आप रोजगार ही प्राप्त कर लें और कई बयान और रोजगार दे भी सका।
0: सही बात तो बडेरा तो इतना होशियार है अपना के भाई खेत में जगह रहे तब बाहर जाने की जरूरत ही को नहीं सगली चीज बन बटे मिल जाती है तो अच्छो व्यवस्था कर गया बे तो आने वाली जगह अपने नई पीढ़ी है तो बन खेती की तरफ रुख करनो चाहिए और आपने खेती ने जितना भी नवाचार हो रहा है सरकार करनी हो जितनी भी सुविधाएं दी जा रही है वीर साथ साथ जगह अपना बडेरा परंपरागत रूप में खेती कर रही है और मन पूछ पर भी अपन नवाचार कर सका और वो आपनो सुझाव आगे सरकार तक भी पुगा सके
1: बड़ी
0: भी व्यवस्था है ताकि हर एक किसान ने भी चीज को फायदा
1: मिल जाए। तो अब बयान कोई गीत तो सुना जाए
0: बात तो घनी कर ली तो
1: भाई आज कोई गीत कौन सुना तो बयान सुना माओ गीत
0: ले रहा हूँ।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेतीबाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही हैं, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं। तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर हैं 240-168 और नागौर का SD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
3: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: समोस्वर में ओ आपा बाबा को भजन सुनियो और सोम भाई अब मैं बताओ थाने के मैं बारा वो चौपाल रास्ता में देखियो कई खेत में धान रा मोड़ा पड़ गया है।
5: बरसात मोड़ी है सब भाई, बड़ी चिंता रो विषय है।
4: थोड़ी जरूरत है खेतांग मां जगह कई ठाला जगह जगह मोड़ा पड़ी रहा जब मनी बेम आयो मिगी बेड़ा बरसात।

0: तो कमीर भैया अपने हाथ की भी चीज को नहीं।
1: हर करा हाँ राम जी प्रार्थना करा हाँ कि भाई हुई
0: बादू पड़ियो मुंडा
1: हाल बादू पड़ियो मुंडा
0: वो लो दिखाएं
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हरी कर सका पाँव हो रहा पका कर सका बण भाई चौपाल वालों घड़गली तो टका टक टका टक आगे पे
1: हाँ तो ही किसान भाइया ने एक सलाह देनी चाहवा हाँ
0: हाँ बताओ देखो बढ़ने वाली बात आप सीधी सीधी सट बात है के खेती पाती वीणती चौपाल
1: टेम पूरो तो आपरा संपत भाई और सोम भाई करा राम राम राम राम राम राम।

अभी आप सुन रहे थे खेतीबाड़ी कार्यक्रम FM 103.7 MHz पर। यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमे चैनल। शाम के 7:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का प्यार भरा नमस्कार
0: और अजीत का भी प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता उन लोगों का इंतजार करती है जो कठिन परिश्रम करते हैं। मुश्किलें आसान हो जाती हैं जब मुश्किल से ज्यादा मेहनत पर ध्यान देने लगते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इतने खूबसूरत विचार को भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी। लिखते हैं,
2: उमंग टीम को पल पल बंदगी करते हैं। विमलेश मैडम जी और अजीत साहिब जी जय जोहार। बंदगी जी, जुलाई वाले सप्ताह में गजब का 16 आना लघु कथा प्रसंग सुनाया। गौतम बुद्ध की शरण पाकर अंगुलीमाल डाकू का संत बनना, महात्मा गांधी का मित व्ययता प्रसंग, सुभाष चंद्र बोस के देश प्रेम, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम, इन सभी संत महापुरुषों का प्रसंग हमें बहुत शिक्षाप्रद और प्रेरणा दिया। इसी तरह नई नई जानकारी मिलती रहे, दिल से धन्यवाद साहेब।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। लिखते हैं, आजकल मैं उमंग कार्यक्रमों को नहीं सुन पा रहा हूँ, क्या आप मुझे आकाशवाणी के ऐसे केंद्रों की जानकारी दे सकते हैं जो सुबह 7 बजे से पहले या शाम को 7 बजे के बाद उमंग कार्यक्रम का प्रसारण करते हों? मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जरूर बताइएगा।
2: योगेश जी, हम प्रयास करेंगे पता करने की, क्योंकि सभी प्रसारण केंद्रों ने अपनी और छात्रों की सुविधा के अनुसार प्रसारण समय तय कर रखा है। हमारी सलाह होगी कि आप इंस्टाग्राम ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें और CIT NCERT को फॉलो करें। प्रतिदिन के कार्यक्रमों के लिंक आपको वहां मिल जाएंगे, क्लिक कीजिए और किसी भी समय कार्यक्रम सुनिए।
0: जी, अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल दिवांगन जी का।
2: रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, संतोष श्रीवास और कृष्ण कुमार यादव।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबके संदेशों के लिए। आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी ज्ञान यात्रा में, यानी ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
2: जी,
0: तो विमलेश जी शुरुआत की जाए। हमारा कल का विषय था जहाँ बारिश भी रुकना भूल जाती है।
2: जी,
0: तो हमारा आज का विषय क्या होगा?
2: अजीत जी, हमारा आज का विषय होगा जहाँ सूरज भी परीक्षा लेता है।
0: वाह, जहाँ सूरज भी परीक्षा लेता है।
2: आज हम बात करेंगे राजस्थान के कुछ ऐसे गांवों की जहाँ गर्मी केवल मौसम नहीं बल्कि जीवन का एक हिस्सा है।
0: जी हाँ श्रोताओं,

0: न कीजिए। आसमान बिल्कुल साफ है, सूरज सिर के ठीक ऊपर है, हवा चल रही है लेकिन वह ठंडी नहीं है, बहुत गर्म है। धरती इतनी तप रही है कि दोपहर में बाहर निकलना भी किसी परीक्षा से कम नहीं है।
1: हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके की, जहां फलौदी और उसके आसपास के गांवों में गर्मियों के दिनों में तापमान बेहद ऊंचा पहुंच जाता है, 50 से 52 डिग्री सेल्सियस।
0: जी हाँ श्रोताओ, आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ का मौसम कैसा होता होगा। श्रोताओ, यहाँ की सुबह हमारी सुबह से बहुत अलग होती है।
1: जी हाँ श्रोताओ, जब दिल्ली या किसी दूसरे शहर में लोग सुबह की ठंडी हवा का आनंद लेते हैं, राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में गर्मी सवेरे ही शुरू हो जाती है और लोग जानते हैं कि दिन चढ़ने के साथ गर्मी लगातार बढ़ती चली जाएगी।
0: इसे श्रोताओ, बहुत से काम वहाँ सुबह ही जल्दी निपटा लिए जाते हैं, जैसे पशुओं को चारा देना हो, पानी भरना हो, खेत या घर या कोई जरूरी काम हो।
1: जी
0: यहाँ लोग पूरी कोशिश करते हैं कि ये काम सूरज के तेज होने से पहले पूरे हो जाएं।
1: बिल्कुल अजीत जी, क्योंकि वहाँ केवल ये सवाल नहीं होता कि आज कितना काम करना है, सवाल ये भी होता है कि काम किस समय करना है।
0: जी हाँ, तो विमलेश जी जरा दोपहर की बात भी तो कीजिए।
1: यहाँ दोपहर में गर्मी इतनी बढ़ सकती है कि बाहर का काम कम करना ही समझदारी होती है, इसलिए गांव में पुराने समय से ही लोग गर्मी से बचने के लिए अपने पारंपरिक तरीके विकसित करते आए हैं।
0: जैसे मोटे दीवारों वाले घर,
1: जी
0: छायादार आंगन, हवादार कमरे
1: जी
0: और खिड़कियों पर पर्दे। वे कोशिश करते हैं कि उन्हें किसी तरह से दीवारों या पेड़ों की छाया मिल जाए,
1: जी
0: क्योंकि रेगिस्तान में छाया केवल आराम ही नहीं देती, वो जीवन का सहारा है।
1: श्रोताओं, यहाँ एक और बड़ी चुनौती है, वो है पानी। सच है, जहाँ बारिश कम हो और गर्मी बहुत अधिक हो, वहाँ पानी की हर बूंद की कीमत समझ में आती है।
0: जी हाँ श्रोताओं, राजस्थान के ग्रामीण जीवन में कुएं, टांके, तालाब और पारंपरिक जल संरक्षण की प्राचीन व्यवस्थाएं सदियों से महत्वपूर्ण रही हैं।
1: जी
0: यहाँ के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आज बचाया हुआ पानी आने वाले दिनों में काम आएगा।
1: यही कारण है श्रोताओं कि यहाँ के रेगिस्तान में रहने वाले लोगों ने पानी को केवल उपयोग की वस्तु नहीं माना, बल्कि उसे संपत्ति और जिम्मेदारी की तरह देखा। तो अजीत जी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्यों न हम प्रकृति से यही पाठ सीख लें।
0: जी हाँ विमलेश जी, आपने ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी। और अब बात करते हैं वहाँ के भोजन की। गर्मी और शुष्क वातावरण के कारण राजस्थान का पारंपरिक भोजन भी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विकसित हुआ है।
1: जी
0: वैसे विमलेश जी, क्या खाते हैं वहाँ के लोग?
1: अजीत जी, वहाँ बाजरा, ज्वार जैसे मोटे अनाज, दालें, सब्जियां और लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थ भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, इसलिए तो बाजरे की रोटी, दाल और स्थानीय सब्जियां राजस्थान के प्रसिद्ध भोजन का हिस्सा हैं।
1: लेकिन अजीत जी, फिर वही बात जो हमने पिछले कार्यक्रम में कही थी, राजस्थान के इन गांवों की जिंदगी केवल गर्मी और पानी की कहानी नहीं है।
0: यहाँ की सबसे बड़ी खूबी है लोगों की सहनशीलता और अनुकूलन की क्षमता,
1: जी
0: यानी स्वयं को वहाँ के वातावरण में ढालने की क्षमता।
1: रेगिस्तान ने लोगों को सिखाया है कि जो कुछ हम बदल नहीं सकते, उसे स्वीकार करके जीवन में प्रसन्न रहना चाहिए।
0: जी
1: कई बार प्रकृति को समझना और उसके अनुसार जीवन बनाना ही बुद्धिमानी है।
0: जी हाँ श्रोताओ, जरा सोचिए, हम शहर में गर्मी कुछ डिग्री बढ़ते ही परेशान हो जाते हैं। एयर कंडीशनर चाहिए, कूलर चाहिए, ठंडा पानी चाहिए।
1: लेकिन राजस्थान के गांवों में न जाने कितनी पीढ़ियों ने सीमित साधनों में जीवन को आगे बढ़ाया है। उन्होंने मिट्टी, पत्थर, हवा, छाया और पानी जैसे प्राकृतिक साधनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, और शायद यही हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है।
0: क्या सीख विमलेश जी?
1: यही कि जीवन हमेशा हमारी सुविधा के अनुसार नहीं चलता।
0: जी
1: जीवन में भी तो मौसम बदलते हैं, कभी गर्मी आएगी तो कभी बारिश बहुत ज्यादा होगी, तो कभी सूखा पड़ेगा, कभी रास्ते कठिन होंगे। लेकिन इंसान की असली ताकत इस बात में है कि वो बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को कैसे ढालता है।
0: तो आप सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है तीन बुद्धिमान।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है।
0: तीन बुद्धिमान।
2: बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में किसी निर्धन व्यक्ति के तीन पुत्र थे, विक्रम, प्रताप

0: और धीरेंद्र। एक दिन उसने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहने लगा,
1: मेरे पुत्रों।
2: जी पिताजी।
1: देखो, अब मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है
3: पिताजी।
1: क्या पता कब लोग सुधार जाऊं।
3: पिताजी ऐसा ना कहिए, अभी आपका जीवन बहुत लंबा है।
1: नहीं विक्रम बेटे, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे पास ना धन है और ना सोना चांदी। तुम लोगों को कुछ और ही करना होगा।
2: लेकिन पिताजी, हम क्या कर सकते हैं? ना खेत हैं और ना कोई दूसरा काम।
3: जी
1: पुत्र, तुम लोगों को दूसरे तरीके से धन अर्जित करना होगा।
3: लेकिन कैसा तरीका पिताजी?
1: बेटा धीरेंद्र, देखो धन दौलत जैसी चीजें स्थाई नहीं हैं। आज हैं तो कल नहीं।
3: जी।
1: लेकिन एक ऐसी चीज है जिससे बढ़कर दुनिया का कोई धन नहीं हो सकता, और वो है बुद्धिमत्ता।
2: जी पिताजी।
1: हर वस्तु और स्थिति को ठीक ठीक समझने का प्रयास करो।
2: जी पिताजी,
3: हम प्रयास करेंगे।
0: समय बीता और कुछ समय बाद पिता चल बसे। सभी बेटे एक दिन मिलकर बैठे और विचार किया।
4: हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं।
2: हाँ तुम ठीक कहते हो भैया, तो क्यों ना हम एक काम करें।
5: भला वो क्या?
4: चलो घूम फिर कर जगत देखें, कुछ ज्ञान प्राप्त करें। पिताजी कहते थे ना कि घूमने फिरने से भी जब हम चीजों को स्थितियों को देखते हैं तो ज्ञान बढ़ता है।
2: हाँ ये ठीक रहेगा भैया।
0: तीनों भाई चल दिए। लंबी यात्रा थी। खाने पीने का सामान जब समाप्त हो गया तो उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले गांव के खेतों में मेहनत मजदूरी की। रास्ते में वे जो कुछ भी देखते बड़े ध्यान से उसका अवलोकन करते और निष्कर्ष निकालते। चलते चलते वे अंत में किसी नगर के पास पहुंचे। नगर के पास एक मैदान था जिसकी मिट्टी रेतीली थी। सबसे बड़ा भाई चलते चलते रुक गया। उसने ध्यान से मिट्टी को देखा और बोला,
4: भाई प्रताप, मुझे लगता है कि यहाँ से कोई ऊंट गुजरा है।
6: जी भैया, और वो भी बड़ा वाला ऊंट। पैर के चिन्हों से तो यही लगता है। क्यों भाई धीरेंद्र?
5: जी भैया, आप ठीक कह रहे हैं।
4: मुझे लगता है कि ऊंट के साथ एक महिला और एक बच्चा था।
0: वे बातचीत कर ही रहे थे कि एक घुड़सवार उनके पास आकर रुका।
4: महाशय, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं?
6: हाँ, आपका ऊंट खो गया है ना?
5: हाँ, मेरा ऊंट खो गया है।
7: हमें सब पता है महाशय, आपका ऊंट एक आंख से देख नहीं पाता है ना?
5: हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता?
4: महाशय, हमें तो ये भी पता है कि उस ऊंट के साथ एक महिला और एक बच्चा भी था।
5: है?
4: आप सीधा उत्तर दिशा की ओर जाएं, आपको वहाँ ऊंट मिल जाएगा।
5: ऊंट मिल जाएगा? अरे ऊंट तुम लोगों के ही पास है।
2: नहीं नहीं,
5: अरे
2: नहीं,
5: उसे कहाँ छिपा के रखा है?
2: अरे महाशय, हमने तो ऊंट का मुंह तक नहीं देखा।
5: ऊंट का मुंह तक नहीं देखा?
4: नहीं
5: तो तुम्हें उसके बारे में सारी बातें पता कैसे चली?
4: वो
5: देखो, मेरा ऊंट मुझे लौटाओ।
4: लेकिन
5: अरे, अरे, अरे तुम लोग ठग मालूम होते हो।
4: क्या?
5: मैं कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हूँ।
4: क्या कह?
0: भाइयों ने बहुत समझाया लेकिन वो घुड़सवार सुनने को तैयार ही नहीं था।
5: मुझे कुछ नहीं सुनना।
2: लेकिन महाशय, हमारी बात सुन ले महाशय।
5: ये निकाली मैंने अपनी तलवार, आप चलो मेरे आगे आगे चलो चलो चलो।
0: इसी बीच उसका भाई भी आ गया। घुड़सवार ने अपने भाई को ऊंट ढूंढने के लिए भेज

0: दिया और तलवार के बल पर उन्हें राजा के पास ले गया।
1: अब तुम सब राजा के पास चलो,
2: चलो
1: काट के रख दूंगा। चलो
3: दुहाई है महाराज, इन लोगों ने मेरा ऊंट चुराया है, मुझे न्याय चाहिए महाराज।
4: राजन, हम चोर नहीं है, हमने तो ऊंट का मुंह तक नहीं देखा।
5: तुम्हें कैसे पता कि ऊंट इन लोगों ने ही चुराया है? ये तो कहते हैं कि इन्होंने ऊंट को देखा तक नहीं।
3: महाराज, यदि ये कहते हैं कि इन्होंने ऊंट को देखा तक नहीं, तो ऊंट के बारे में मुझे इन्होंने सब कुछ बता कैसे दिया?
5: तुम लोगों को कुछ कहना है?
6: राजन, हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि कुछ भी अपनी दृष्टि से चूकने नहीं देते। हमने परिवेश को समझने में बहुत समय लगाया है, इसलिए बिना देखे ही हमने सब कुछ बता दिया।
5: अच्छा, तो ये बात है
6: जी।
5: हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेते हैं। द्वारपाल
2: जी। महाराज।
0: राजा ने अपने द्वारपालों को बुलाया और उनके कान में कुछ फुसफुसाकर कहा। थोड़ी ही देर में द्वारपाल एक पेटी लेकर आए और उसे राजा के सामने रख दी।
5: अब बताओ कि इस पेटी में क्या रखा है?
7: महाराज, इस पेटी में कोई गोल वस्तु है, अनार है।
8: और महाराज, वो अनार कच्चा है।
0: जब पेटी खोली गई तो उस पेटी में सचमुच कच्चा अनार रखा था। बात बिल्कुल सही थी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन मंगवाए और लगा उनकी आवभगत करने।
9: खाइए खाइए, लीजिए।
10: महाराज, धन्यवाद।
0: फिर पूछा,
5: तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि पेटी में अनार है?
6: महाराज, जब वे पेटी रख रहे थे तो अंदर से किसी चीज के लुढ़कने की आवाज आई। हम समझ गए कि ये कोई गोल वस्तु है।
8: और महाराज, हमने ध्यान दिया कि द्वारपाल किधर जा रहे हैं। वे आपके राज उद्यान की ओर जा रहे थे, जहाँ अनार के बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं।
4: और महाराज, अभी अनार पकने का समय ही नहीं आया, तो हमने जान लिया कि अनार कच्चा है।
5: वाह, बहुत खूब।
0: राजा बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसकी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। उसने फिर पूछा,
5: तो अब ये बताओ कि तुमने ऊंट के बारे में बिना देखे कैसे जान लिया?
8: महाराज, वहाँ पर मिट्टी भुरभुरी थी। हमने ऊंट के पद चिन्हों से जान लिया कि ऊंट बड़ा है।
5: क्या बात है?
6: महाराज, उस मिट्टी पर जूतों के निशान थे। ये जूते महिला के थे और साथ ही साथ छोटे छोटे पैरों के निशान भी थे।
5: अच्छा,
6: इससे हमने जान लिया कि महिला के साथ कोई बच्चा भी है।
5: जी, बहुत खूब। लेकिन तुमने ये कैसे जाना कि ऊंट एक आंख से ही देख पाता है?
4: राजन, इसका पता लगाना तो बहुत ही आसान था। सड़क की दाहिनी ओर की घास तो ऊंट ने चरी थी, लेकिन बाईं ओर की घास जो कि त्यों थी।
5: उत्तम, अति उत्तम। वाह, तुम लोगों की बुद्धि श्रेष्ठ है।
8: धन्यवाद महाराज।
6: जी महाराज, शुक्रिया महाराज।
5: मैं सचमुच चकित हूँ।
6: जी महाराज।
0: फिर क्या था, राजा ने तीनों भाइयों को अपने दरबार में रख लिया और उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया।
11: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम तीन बुद्धिमान। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। और अब सुनते हैं कार्यक्रम सरला ठकराल, भारत की पहली महिला पायलट।

0: सफलता की बुलंदियों को सभी छूना चाहते हैं, कामयाबी सभी हासिल करना चाहते हैं,
1: लेकिन कामयाबी उन्हीं के कदमों को चूमती है जो दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम के साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं।
0: आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो अपनी लगन और कार्यनिष्ठा से लाखों करोड़ों लोगों की और विशेषकर महिलाओं की प्रेरणा स्रोत बन गईं।
1: वे हैं सरला ठकराल, जिन्हें सन 1936 में मात्र 22 वर्ष की आयु में भारत की पहली महिला पायलट यानी विमान चालक बनने का श्रेय प्राप्त है।
0: भारतीय उड्डयन के इतिहास की बात करें तो अनेक महिलाएं हैं जिनका नाम उल्लेखनीय है, लेकिन वो प्रथम महिला कौन है जिन्होंने सबसे पहले इन सब के लिए मार्ग बनाने की शुरुआत की? जी हां, उनका नाम है सरला ठकराल। उनका जन्म 8 अगस्त सन 1914 को दिल्ली में हुआ था। तब भारत में ब्रिटिश राज था। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह लाहौर निवासी श्री पीडी शर्मा से हुआ। विवाह के बाद वो अपने पति के साथ लाहौर चली गईं। सरला के परिवार की एक बात बहुत दिलचस्प थी और वो ये कि उनके परिवार में 9 लोग ऐसे थे जिनका संबंध सीधा उड्डयन से था। पति भी अक्सर सरला को प्रोत्साहित करते। सरला को प्रशिक्षण दिलाने का बीड़ा उठाया उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी ने। एक दिन की बात है,
2: सरला, सरला बेटी।
3: अरे बाबूजी, आप
4: कहाँ खोई हो बेटी?
3: आप
4: जरा मैं भी तो जानूं कि क्या सोच रही है मेरी बेटी।
3: जी, मैं सोच रही थी कि मैं भी खाली समय में कुछ कर लेती।
4: बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं बेटा। एक बात कहूँ?
3: जी
4: बेटा, मैंने अक्सर देखा है जब भी हम हवाई जहाज की उड़ान की पायलटों की बात करते हैं तो तुम बड़े शौक से सुनती हो।
3: जी बाबूजी, मुझे ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है।
4: तो फिर देर किस बात की, लाहौर फ्लाइंग क्लब के प्रमुख मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं।
3: अच्छा,
4: मैं उनसे कल ही बात करूंगा।
3: पर
4: मुझे लगता है तुम्हें वहाँ से पायलट बनने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए।
3: लेकिन बाबूजी, मैं धन्यवाद बाबूजी।
4: ये बात हुई ना बेटा। वेरी नाइस बेटा।
0: साथियों, दूसरे ही दिन श्री शर्मा सरला को फ्लाइंग क्लब ले गए। इसके लिए एक परीक्षा देनी होती थी। सरला शुरू से ही पढ़ाई में कुशाग्र बुद्धि थी। उन्होंने तैयारी की और वे प्रथम प्रयास में ही सफल हो गईं। मेडिकल जांच व अन्य औपचारिकताओं के बाद उनका दाखिला लाहौर फ्लाइंग क्लब में हो गया। और अब शुरू हुआ उनका प्रशिक्षण। आज प्रशिक्षण का पहला दिन था।
5: साथियों, मैं आप सबका लाहौर फ्लाइंग क्लब में डेप्यूटी चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की हैसियत से स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सबको बधाई देता हूं पायलट बनने की ट्रेनिंग में चुने जाने के लिए।
6: धन्यवाद सर।
5: देखिए, कुछ मायनों में हमारा ये सत्र पिछले सभी सत्रों से बहुत अलग है। क्या आप बता सकते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ?
7: सर, मुझे तो सब कुछ वैसा ही लग रहा है।
5: सब कुछ वैसा तो नहीं है, कुछ तो नया है।
8: सर, मैं बताऊं सर।
5: हाँ, कहो।
8: सर, मुझे लगता है पहली बार पायलट की ट्रेनिंग के लिए हमारे बीच एक महिला मित्र हैं।
5: बहुत खूब, पर तुम्हें कैसे पता कि ऐसा पहली बार हुआ है?
8: पिछले सप्ताह एक समाचार पत्र में छपा था।
5: बहुत अच्छे, वेरी वेल ऑब्जर्व। देखिए, पायलट बनने की पहली शर्त है आसपास की बातों का गहराई से अवलोकन करना।
3: हाँ, जी सर। सही बात।
5: एक पायलट को हमेशा सजग रहना होता है। अच्छा, अब बताओ कि और कौन कौन सी खूबियां एक पायलट में हो।

0: होनी चाहिए?
1: सर मैं बताऊं?
0: हाँ हाँ सरला तुम बताओ।
1: सर मुझे लगता है कि एक पायलट में सकारात्मक दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है। उसमें लगातार सीखने की इच्छा होनी चाहिए और उच्च दबाव या तनाव में भी अच्छी तरह से काम कर पाने की काबिलियत होनी चाहिए।
0: बहुत अच्छे सरला।
1: धन्यवाद सर।
0: तो साथियों, तकनीकी ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन ये व्यक्तिगत खूबियाँ यदि आप में हैं, तो बेशक एक दिन आप बेहतरीन पायलट बनेंगे। इस ट्रेनिंग के दौरान मैं आप सब से यही उम्मीद करूंगा। ऑल द बेस्ट।
2: थैंक यू सर।
3: प्रशिक्षण शुरू हुआ। इसमें सफलता उन्हीं को मिलती है जिनमें कठोर परिश्रम, कार्य के प्रति समर्पण और एकाग्रता होती है। साथियों, पायलट बनने के लिए ए श्रेणी का उड्डयन लाइसेंस प्राप्त करना होता था और इसके लिए उन्हें 1000 घंटे की उड़ान पूरा करना जरूरी था। और आखिर वो दिन आ गया जब उन्होंने 1000 घंटों की उड़ान बिना व्यवधान के पूरी की।
4: जिस दिन उनके प्रशिक्षण की आखिरी उड़ान थी, उस दिन उनका पूरा परिवार, मित्रगण, पत्रकार और भी कई गणमान्य लोग हवाई अड्डे पर मौजूद थे।
3: मीडिया के लिए एक महिला द्वारा प्रशिक्षण पूरा करना खासा दिलचस्पी का विषय था। उड़ान शुरू हुई।
5: 1000 घंटों की ट्रेनिंग पूरी होना मजाक नहीं होता।
1: I'm so excited.
5: पहली महिला पायलट बनना हम देखेंगे अपनी आंखों से।

0: लैंडिंग फी।
1: कमाल,
2: थैंक यू।
3: बहुत धन्यवाद, थैंक यू,
2: धन्यवाद।
3: आप कितने अच्छे तरीके से चले गए, अमेजिंग।
4: जब वो अपने जिप्सी मौत विमान से उतरकर लाउंज में आई तो लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया।
5: दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने साड़ी पहनकर ये उड़ान भरी थी और उन दिनों वे 4 वर्ष की एक बेटी की माँ भी थीं।
4: इस प्रशिक्षण के बाद उन्हें वायुयान उड़ाने का 1 क्लास लाइसेंस प्रदान किया गया। समाचार पत्रों ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में जनता को बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
5: वायुयान उड़ाने का लाइसेंस प्राप्त करने के बाद उनका अगला लक्ष्य था विमान उड़ाने का व्यावसायिक या कमर्शियल लाइसेंस प्राप्त करना। लेकिन इसी बीच उनके जीवन में एक दुखद घटना घटी।
4: सन 1939 में उनके पति श्री शर्मा का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। उन्होंने जोधपुर आने का निर्णय लिया और कमर्शियल लाइसेंस के लिए वे प्रयास करती रहीं। अंततः उन्हें लाइसेंस मिल गया और अब वे लंबी दूरी की व्यावसायिक उड़ानों के लिए तैयार थीं। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और सभी नागरिक उड़ानें रद्द कर दी गईं। लेकिन हिम्मत की धनी सरला ने हार नहीं मानी और मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लेकर ललित कला और पेंटिंग की क्लास में दाखिला

0: किया और ललित कलाओं की अन्य विधाओं का उन्होंने गहरा अध्ययन किया।
1: उन्होंने वस्त्रों और आभूषणों के एक से एक डिजाइन बनाए और उनका पेटेंट लिया।
0: सुप्रसिद्ध अखबार द ट्रिब्यून को साक्षात्कार देते हुए उन्होंने कहा था,
2: मुझे लगता है कि हमारे पास लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ और विकल्प भी हमेशा होने चाहिए। जब मैंने वस्त्रों और आभूषणों का डिजाइन तैयार किया तो उस समय की लगभग सभी प्रसिद्ध महिलाओं को यह डिजाइन बहुत पसंद आए। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि एक बहुत बड़ा कुटीर उद्योग खड़ा हो गया जिसने बहुत सी महिलाओं को 20 वर्ष तक सम्मानजनक रोजगार दिया।
0: अपने जीवन में सफलता के कई आयामों को छूने वाली सरला ठकराल का 15 मार्च 2008 को दिल्ली में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आकाश में पुरुषों के वर्चस्व को तोड़ने वाली भारत की इस प्रथम महिला पायलट का जीवन साहस और आत्मविश्वास का एक अनूठा उदाहरण है जो महिलाओं के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
3: तो अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है, तो मुझे यानी अजीत को
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: उमंग, उमंग,
6: उमंग। अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फिल्मी कव्वालियां। तो सर्वप्रथम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी, बलबीर और साथियों की आवाज में ये कव्वाली फिल्म हंसते जख्म से।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से फिल्मी कव्वालियाँ। अगली कव्वाली पेश है आपके लिए फिल्म द बर्निंग ट्रेन से। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल और आप सुन रहे हैं फिल्मी कव्वालियाँ। लीजिए अगली कव्वाली पेश है आपके लिए आशा भोंसले, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में। फिल्म का नाम है कर्मयोगी।

मजाल तुम मुझसे करे सवाल, तेरी छुट्टी करा दूं, तेरा तख्ता उड़ा दूं, अरे बे मौत ना मर तो अपनी ही फिक्र कर, बुरा हर काम मेरा कयामत नाम मेरा, मैं चुटकी से मचल दूं, मैं जूते से कुचल दूं, जुल्म से मेरा रिश्ता मौत का मैं फरिश्ता, मौत का मैं फरिश्ता, नहीं कोई मेरा सानी तू मांगे गाना पानी, हो काला नाग हूँ मैं तो जलती आग हूँ मैं, मिटा कर खाक कर दूं, जला कर राख कर दूं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से फिल्मी कव्वालियाँ। श्रोताओं, अगली कव्वाली आपके लिए फिल्म हम किसी से कम नहीं फिल्म से है, जिसमें आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी, आशा भोंसले और साथियों की।

इसी कव्वाली के साथ हमारी फिल्मी कव्वालियों का ही प्रोग्राम यहीं खत्म होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल को एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं गाने नए जमाने के। सबसे पहले आपको जो गीत सुनवा रहे हैं उसको गाया है आतिफ असलम ने। फिल्म का नाम है बागी 2।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू से। आवाजें हैं आतिफ असलम, अल्तमाश फरीदी और आशीष की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से प्रोग्राम गाने नए जमाने के। दोस्तों, अगला गाना आपके लिए है फिल्म रेड से। आवाज़ राहत फ़तेह अली खान की है। इस गीत को लिखा है मनोज मुंतशिर ने और संगीत से सजाया तनिष्क बागची ने।

इसी गीत के साथ गाने नए जमाने के प्रोग्राम यहीं खत्म होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल को एफ एम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 हो रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के वेलवन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकश से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से कोई संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाकों से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
1: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
0: इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस उड़ान में डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रेकी टीम के 11 सदस्य भी शामिल हैं। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिम चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भोटे कोशी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण त्रिशूली क्षेत्र के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का आदेश दिया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की और हर संभव सहायता देने की पेशकश की।
2: They told me about exactly what happened to them, how the floods came.
3: उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ असल में क्या हुआ था और बाढ़ कैसे आई थी। वे बहुत आभारी हैं, खासकर नेपाल सेना के, जिन्होंने उस बेहद मुश्किल जगह से निकालने के लिए इतना बड़ा प्रयास किया। इसलिए अभी हमारा प्रयास लोगों की राहत और बचाव कार्यों में नेपाल की मदद करने का है। आज सुबह ही मैंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की है। हमने उन्हें कई तरह की सहायता की पेशकश भी की है।
2: We have given them range of support offers.
0: सिक्किम सरकार नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार वहां फंसे सिक्किम निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठा रही है।
4: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांगोले ने सिक्किम के 8 निवासियों से फोन पर बात की। जानकारी मिली है कि सभी 8 लोग सुरक्षित हैं। फंसे हुए सिक्किम के निवासियों के लिए सिक्किम सरकार ने कल नेपाल फ्लैश फ्लड टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स को स्थिति से प्रभावित सिक्किम के नागरिकों के लिए आवश्यक सहायता के समग्र समन्वय, निगरानी और सुविधा प्रदान करने के

0: जिम्मेवारी सौंपी गई है। टास्क फोर्स भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय बनाए हुए है और संबंधित सिक्किम निवासियों तथा उनका परिवारों के साथ भी लगातार संपर्क में है। मोइनाक चटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
5: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं।
6: पाक्षिक कोटा के अंतर्गत चीनी मिलों को आवंटित मात्रा से कम 40% चीनी पहले सप्ताह में और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। मंत्रालय के अनुसार नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। अक्टूबर महीने के दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन होने की उम्मीद है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की भी अनुमति दी है, जिससे नए सीजन का उत्पादन जल्द से जल्द घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी का उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की उम्मीद है, जिससे घरेलू खपत के लिए चीनी की अतिरिक्त आपूर्ति में पर्याप्त वृद्धि होगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल ये झूठा प्रचार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार किसानों के हितों के खिलाफ समझौते कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कृषि मंत्री ने विशेष रूप से पंजाब सरकार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू न करने के लिए जिम्मेदार ठहराया।
7: भारत सरकार ने योजना बनाई किसानों की आमदनी बढ़ाने की, आय बढ़ाने की, हम पंजाब में भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी भ्रष्ट सरकार के कारण हमारी कोशिशें सफल नहीं हो रही। पंजाब के कृषि के लिए एक नया रोड मैप टॉप के साइंटिस्टों की टीम बनाएगी। हम पंजाब की कृषि की दशा बदलेंगे, दिशा बदलेंगे और किसान की हालत बदलेंगे।
1: परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्चस्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर 1800 180 चार सात

0: 4-7 के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव ईमेल एग्जाम रिफॉर्म्स टास्क फोर्स @dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: परीक्षा के संचालन, सुरक्षा, जवाबदेही और संस्थागत व्यवस्थाओं के अलावा परीक्षा में अनुचित साधनों का पता लगाने, रोकथाम करने और उनके समाधान सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों के बारे में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। कार्यबल संस्थागत प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने, परीक्षा की निष्पक्षता, उपयुक्त तकनीकों को लागू करने और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने के उपायों की जाँच कर रहा है। इसका उद्देश्य मजबूत, सुरक्षित, पारदर्शी, न्यायसंगत और भविष्य के लिए तैयार सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली विकसित करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं के सुगम संचालन और प्रशासन से संबंधित व्यापक सुधारों की जांच के लिए प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकणी की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उत्तर कुंजी UGCNET.NTA.NIC.IN पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इस महीने 60 नवजात शिशुओं की मौत की खबर पर जारी किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के सरकारी स्कूल में पिछले 2 वर्षों से 6 से 8 कक्षा के विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन नहीं परोसे जाने के मामले में मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने संज्ञान लेते हुए 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधियों में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। हालांकि इस अवधि में विकास की गति जून के संशोधित स्तर से कम रही। एक रिपोर्ट।
3: जून में IIP वृद्धि दर 7.3% से बढ़कर 8.8% पहुंच गई थी, जो यह भी संकेत देती है कि जुलाई तिमाही में प्रवेश करने वाली औद्योगिक गति शुरू में अनुमान से अधिक मजबूत रही। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार IIP सूचकांक में सबसे अधिक महत्व रखने वाले विनिर्माण क्षेत्र में जुलाई में 7.3% की वृद्धि हुई, जबकि बिजली और गैस की आपूर्ति में 8.7% की वृद्धि दर्ज हुई। जल आपूर्ति, सीवरेज और अपिष्ट प्रबंधन में 7.4% की वृद्धि हुई। हालांकि खनन क्षेत्र पिछले महीने 0.9% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए पिछड़ गया। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एशविल में श्रीमती सीतारमण की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा आज पारंपरिक छड़ी मुबारक की रस्मों के साथ संपन्न हो गई। ये यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। इस वर्ष 4,80,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। भारत के विल्वन सेंथिल कुमार आज रात बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकश से खेलेंगे। सेमीफाइनल में कल सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया था। नॉर्वे के सम्राट हेराल्ड पंचम का आज ओस्लो में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की शुरुआत में नॉर्वे की यात्रा के दौरान सम्राट हेराल्ड पंचम से अपनी मुलाकात को याद किया। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हुई। कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की

0: बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के वेलवन संथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकच से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। रात्रि के 9 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। इसमें सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं यह गजल गुलाम अली की आवाज़ में।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आप सुन रहे हैं सुगम संगीत, लीजिए सुनिए गुलाम अली की आवाज में ये अगली गजल।